0: किरण नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन। खूबसूरत है नहीं है डिपेंड आपके मूड के ऊपर। जी हाँ, अगर आपको इस तरह का वेदर पसंद है तो ऑफ कोर्स इट इज खूबसूरत। या फिर किनो मोस्टली लोगों को सनी भी पसंद है तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये खूबसूरत नहीं है। बट अगेन व्हाट माय पॉइंट इज, ये परसेप्शन टू परसेप्शन भी रहता है, लाइक यू नो व्हाट यू सी एंड व्हाट यू इमेजिन। जो है सो है, उसमें ही खुश रहिए, यही बात तो मैं कहने वाला हूँ, कहना चाहता हूँ। बढ़िया, सभी से लेके 3 बजे तक यहाँ पे हूँ, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे गपशप। होमसिक रेमेडीज के लिए आप आज कॉल करिए। मैं फोन लाइन ऑन करने वाला हूँ इस इन बढ़िया गानों के बाद। सबसे पहले सुनते हैं हमारे सूफी और यू नो एक तरह से एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत ही फेवरेट सिंगर है। इस बार मिस हुआ मेरे से, मैं उनका देख नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट, बट यस डेफिनेटली सुनते हैं दिल तो बच्चा है जी, राहत फतेह अली खान की आवाज में। आप बने रहिए और होमसिक रेमेडीज के लिए मैसेज भी भेजिएगा और कॉल के लिए मैं फोन लाइन भी ऑन करने वाला हूँ इन दो गानों के बाद। तो पहले तो ये एंजॉय करिए, मिलते हैं इन दो गानों के बाद। कॉफी पीता हूँ यार, कॉफी का मन कर रहा है मेरा।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। कैसे हैं आप सभी? वीकेंड आपका कैसा रहा आप मुझे बताइए 5599 पे बढ़िया से कॉल के लिए 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए और बताइए कोई ऐसी चीज जो इस मौसम में आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और यहां पे वो आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है, बताइए मुझे। मेरे हिसाब से पता है क्या है, मुझे तो अभी सब कुछ मिल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफी लोग रिलेट भी करेंगे, वंस दे हैव देयर फैमिली देयर पेरेंट्स ओवर हियर तो बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, नॉट जस्ट योर्स बट ऑफ कोर्स इन लॉज अगर वो भी हैं तो भी अमेजिंग यार, जो चाहे वो बन रहा है, जो सोचते हो कि यार काश ये भी खाने को मिल जाए वो सब मिलता है। सो यार इट इज अमेजिंग फीलिंग यार। वैसे आपका फादर्स डे कैसा रहा? जल्दी से फोन उठाइए 0800-004-866 पे आप मेरे साथ शेयर करिए आपके फादर्स डे की सेलिब्रेशन जो है वो किस तरह से हुई। आई बी वेटिंग एक्चुअली, आई नीड टू नो कि कैसी फीलिंग रही आपकी। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था सो बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ है इहान के साथ। एक मतलब अलग ही फीलिंग है, लाइक कांट एक्सप्रेस इन वर्ड बट इट हैज बीन, आई मीन आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम। और उसकी क्यूटनेस, उसका यू नो सुबह उठ के उठाना अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली नॉट, तो वो बिल्कुल भी चुपता नहीं, यू नो वी थोड़ा सा लगता है कि क्या यार सोने दे यार, बट नो आई वॉन्ट टू प्ले एज वेल। उसके साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं एंड देन यार वी जस्ट प्ले अराउंड। सो पहला फादर्स डे था, अलग ही फीलिंग थी। को इंसिडेंट देखिए, इस बार मेरे भी फादर थे सो बेसिकली 3 generation वॉज देयर एट द सेम टाइम ओवर हियर। बहुत ही बढ़िया लगा यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऑब्वियसली बताऊँ तो मैं शायद शब्दों में बता नहीं पाऊंगा बट अलग ही फीलिंग थी। आप बताइए 0800-004-866 पे कॉल करिए यार। अभी तक तो कॉल्स आ जाना चाहिए यार, कॉल्स आ जाना चाहिए। फादर्स डे हुआ यार, फादर्स डे गुजरा है जिसके लिए हम यहाँ पे कंपटीशन कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स नाम भी आपको पता पड़ गया होगा कि कौन कौन जीते हैं। सो जल्दी से फोन उठ करिए 0800-004-866 पे। एक का मैसेज आया है, माई फादर्स डे वॉज वेरी स्पेशल बट वॉज नॉट एबल, वेट लेट मी जस्ट ओपन इट, आधे पढ़ में आ रहा है। ओ यप, ओ नो, दो मैसेज मैंने पता नहीं एकदम मिक्सअप हो गए बट ही इज सेइंग लाइक माई फादर्स डे हैज़ बीन अमेजिंग, व्हाट अ डे सेलिब्रेशन, इट वॉज अ बिट ऑफ सरप्राइज फ्रॉम माई वाइफ हु प्रिपेयर्ड फॉर लाइक माई थ्री टुगेदर विद माई 3 years old सन, दैट्स सो कूल, एंड ही प्रिपेयर्ड वन स्केच फॉर मी, डजंट लुक लाइक मी बट आई लव इट, दैट्स सो क्यूट, दैट्स सो क्यूट। आप भी कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए आपकी सेलिब्रेशन की कहानी मेरे साथ यहाँ पे। ऑफ कोर्स लिसनर्स भी सुनना चाहेंगे। एक और मैसेज आया, वो कहते हैं आई कुडंट सेलिब्रेट दिस बिकॉज आई एम स्टक इन मेलबर्न। स्टक क्यों भाई, क्या हो गया? मतलब ऑल इज ओके और नॉट? Hopefully, yeah, he will just gonna reply and yeah. But I feel maybe हो सकता है किसी काम की वजह से ये फंस गए हो ऐसा कुछ। But यार अभी तो call आ जाने चाहिए इतने यार। एक message आया है homesick के लिए, ये कह रहे हैं yesterday I drove to new market to quickly grab a $15 butter chicken takeaway. I parked in a loading zone for literally 4 minutes, leaving my hazard lights on. When I walked back out. An AT parking warden was already sticking on an $80 fine on my windshield. Back home, hazard light means I will be back in 2 minutes. And everyone understood. In India, my family parked night outside my street stall without a second thought. Here I paid $80 for $15 meal sitting in my car looking at that ticket while it rained. Just made me feel so frustrated, broke and homesick. How do we survive Auckland's merciless parking? अरे भाई साहब इतना दुख दर्द। मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ कुछ गलत नहीं किया यार, मतलब मेरा ही अभी मेरे को पता नहीं वैसे लिमिटेशन क्या होती है हैजर्ड लाइट, मतलब जहाँ पे लोडिंग जोन होता है आई थिंक यू कैन नॉट पार्क मोर देन टू मिनट्स राइट। आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी उस तरह की गाड़ी चलाई नहीं जिसपे पीछे हुक हो और देन आई पार्क्ड ऑन द लोडिंग जोन. बट ब्रो दिस इज व्हाट इट्स नीडेड. इंडिया में भी होता है, वो बात अलग है कि वहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता है. नॉट ऑल बट या मेजॉरिटी लोग फॉलो नहीं करते हैं. इस वजह से लाइक वहाँ पे एकदम फ्री हैंड यू कैन डू एनीथिंग और इसी वजह से ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा होता है फॉर सर्टेन सिटीज, नॉट एवरीवेयर. बट यस यहाँ पे तो यार यहाँ क्या, आप कहीं और भी जाओगे वहाँ पे भी होगा. लाइक यू नो जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट यू नो रोड एंड ट्रैफिक्स आर सो सेफ एंड यू नो फॉलोइंग द रूल्स. बट हाँ इसमें तो यार मैं क्या बोलूँ, लाइक आई वुड से एज फार एज आई नो, आई डोंट नो इफ अनलेस अगर वहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा लिखा हुआ है कि 5 मिनट तक की पार्किंग कर सकते हैं तो यू कैन. इफ यू थिंक दैट आपने पार्किंग सही की लेकिन गलत टिकट लगाया तो आप एक बार क्लेम कर सकते हो. आई एम बिकॉज ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पे अगर कोई है तो जवाब दे सकता है उस बारे में. बट मुझे लगता है कि हाँ अगर लिमिट लिखी है और अगर आपने एक्सीड किया है तो डेफिनेटली यार खाना तो महंगा पड़ा आपको, है ना. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का.
1: Your attention please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money. Vacation.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
6: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
9: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
12: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
13: Non-stop Bollywood.
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
13: हम playing Bollywood's biggest hits.
15: Lunchbox with Ketan.
16: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
15: हम.
3: ऑफिस शाउट आउट।
0: ऑफिस शाउट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे ये रहे दो मैसेजेस जो मुझे मिले हैं यार, लेकिन फादर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए आप अगर मुझे कॉल करते तो वुड हैव बीन वेरी वेरी ग्रेट। बट ये रहे मैसेज, ये बात है। पहला मैसेज है डैनियल का। इन द ऑफिस टुडे आई पिक्ड अप सम चिकन कत्सू फॉर लंच। यार ये मैंने ट्राई किया यार, बहुत ही यमी लगता है यार, बहुत ही यमी। मतलब मैं कहाँ था, एक मॉल है ओनेहंगा में, आई थिंक रेस्टोरेंट राइट, वहाँ में गया था। तो वहाँ पे जाके आई वाज लाइक, मैंने वहाँ पे ट्राई किया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया, अमेजिंग। एंड उसके बाद यस, एक और मैसेज आया है कविता का। वो कहती हैं वर्किंग फ्रॉम होम टुडे एंड मम मेड फिश करी एंड रोटी फॉर लंच, दैट्स व्हाट आई ब्रॉट। That's so cool, yeah. That's so sweet. But thank you so much, yaar. Thank you so much for sending the message. Aap bas bane rahiye because ye jo latest gana hai, ye bahut hi pyara hai. Mama, mama, shuka. Ye suniye aap aur hum leke aayenge aur bhi taata khabrein. Waise New Zealand mein aaj ke din kya hua tha? Any guesses? Any guesses? Aap sabhi ke? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सुबह भी बताया जाता है, बट ये उसके बारे में बात होगी बहुत जल्द। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बस बने रहिए और मैं देख लेता हूँ। वैसे जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि आज के दिन क्या हुआ था, बेसिकली दो चीज हुई थी। एक तो हुआ था वॉन टेम्पस्काई, उनकी डेथ हुई थी, उन्हें मारा गया था। टे नूटू ओ टे मानू, ये एक फाइट हुई थी इन 1868, करीबन ऑलमोस्ट 200 साल पहले। एंड उसके बाद स्प्रिंग बुक्स प्ले न्यूजीलैंड माओरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये दोनों बातों हैं, उनमें से कोई एक मस्त सी खबर लेके आऊंगा मैं आप सभी के लिए। बने रहिए, एंजॉय करिए गाना।
16: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. And बहुत ही खूबसूरत weather है. मैं तो कहूँगा कि एकदम proper पकोड़े और चाय वाला है. चाय से याद आया. आज तो मुझे डांट सुननी पड़ी यार. वो इसलिए अपनी मम्मी की तरफ से, because मम्मी ने ना सुबह 8 बजे usually चाय बना दी है. पापा और इनको चाहिए होता है. तो उन्होंने चाय बना ली. एंड देन चाय के बाद मैं उठा और उठते ही मैं इहान के साथ खेलने लग गया. एंड देन ऑफकोर्स थोड़े टाइम बाद मम्मी बोली, भाई चाय ठंडी हो रही, चाय तो पी ले. उसके बाद मैंने फिर से कहा, ठीक है एक बार वापस गर्म कर लो, मैं फिर से पीता हूँ. उसके बाद फिर से गर्म हुई, मम्मी ने डेस्क पे रखा. मैं इहान को तब तक छोड़ चुका था इस किंडी और वापस आया, मैं फिर भूल गया. और फिर मम्मी ने कहा, मैं अब तेरे लिए चाय नहीं बनाने वाली कल से. मैंने कहा, अरे यार मैं अभी पी लेता हूँ. फिर ऐसे फटफट करके पिया मैंने. अरे क्या मतलब, ऐसा नहीं कि मैं अवॉइड करता हूँ, बट भूल गया था, एक कोइंसिडेंस हो गया था. बट एनीवेज, आपके साथ हुआ ऐसा कभी कुछ ऐसा फन मेंटर आपकी फैमिली के साथ, तो मुझे बताइए आप 5599 पे. बस ये अभी 1921 की बात है, ये हिस्ट्री ऑफ नजरंग की बात कर रहा हूँ, जब साउथ अफ्रीका की फेमस रग्बी टीम स्प्रिंगबोक्स ने पहली बार न्यूजीलैंड माओरी टीम के अगेंस्ट मैच खेला. ये मैच नेपियर में हुआ था. स्प्रिंगबोक्स ने स्प्रिंगबोक्स ने मैच 9-8 से जीता. लेकिन इस इवेंट की इंपॉर्टेंस सिर्फ रग्बी तक लिमिटेड नहीं थी. उस टाइम रेस और डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में मेजर इश्यूज थे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइट न्यूजीलैंड स्पेक्टेटर्स माओरी टीम को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा था. साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने इस सपोर्ट को क्रिटिसाइज भी किया, जो दिखाता है कि स्पोर्ट्स और रेशियल एट्रीब्यूट्स कितने क्लोजली कनेक्टेड थे. ये मैच बाद में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका स्पोर्टिंग रिलेशन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है. लेटर 1981 में स्प्रिंगबोक टूर के टाइम रेस और काफ़ी उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड में ह्यूज प्रोटेस्ट भी हुआ. सो ओवरऑल 1921 का मैच सिर्फ एक रग्बी गेम नहीं था. इट शोज हाउ स्पोर्ट्स, रेस और पॉलिटिक्स वर कनेक्टेड. एंड दैट्स वेयर यू सी टुडे द रग्बी, हाउ जॉइंट इट इज. एंड वी आर, आई वुड से दैट वी आर द किंग, राइट? Am I?

0: Mega Finance and Spindle Home, Zeal Group, Perfect Panel Beaters and Paint Limited, Court Polish Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें. नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगांव में ब्रांड न्यू हैवेल 86 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगांव. हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
3: अब हमारा क्या होगा?
0: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
2: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और यहाँ पे हम बात करेंगे लेटेस्ट खबर की। लेटेस्ट खबर काफ़ी ताज़ा है और काफ़ी जानदार भी है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ मैसेजेस आए हैं उन पर भी हम थोड़ी नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। वेल यस, एक लेबर एंड नेशनल पुलिंग कोलैप्स बोथ अंडर 30 इन न्यू सर्वे, ये बात आई है बाहर। एक रिसेंट टैक्सपेयर यूनियन खुरिया पोल में न्यूजीलैंड के टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल और लेबर हैं, दोनों की सपोर्टिंग 30% से नीचे चली गई है। नेशनल 29% पर आ गई है, जो प्रीवियस पोल से 2 पॉइंट्स डाउन है। मीनवाइल लेबर 25.9% पर है, 1.9 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। वेल, इसका मतलब यह है कि वोटर्स का सपोर्ट ट्रेडिशनल मेजर पार्टीज से वीकन हो रहा है। स्मॉलर पार्टीज के लिए भी कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली इलेक्शंस के क्लोज आने के साथ। ओवरऑल पोल ये सजेस्ट करता है कि न्यूजीलैंड का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफ़ी अनसर्टन है। लेबर और नेशनल दोनों को वोटर्स का कॉन्फिडेंस रिगेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग और क्लियर पॉलिसीज की जरूरत है। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो दोनों मेजर पार्टीज अंडर प्रेशर हैं और इलेक्शन रेस अभी वाइड ओपन लग रही है। तो ये थी नजर, ये थी खबर अभी की लेटेस्ट, लेकिन आप बने रहिए बिकॉज नेक्स्ट आर में बिटवीन 1 to 2 यू विल हियर द बोर्डिंग कॉल, जो आपको मौका देगा 2 रिटर्न फ्लाइट टिकट टू वनुआतू एंड प्लस $1000 जीतने के मौके, जहां पे आप स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से, आप बस बने रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आके आपको बताता हूँ।
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: लंचबॉक्स विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, कभी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 50% चांस है बारिश के, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला, ओवरऑल दिन ऐसा ही रहने वाला है और कभी कभी सूरज भी दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन 6:06 पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: किरण, नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, मेरा नाम केतन है और आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और मैं 12 बजे से यहाँ पे था और 3 बजे तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद सैंडी जुड़ेगी। बताएंगे सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो, वरना अगर आपने मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। गाने चलाएंगे यहाँ पे, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे, सार में वैसे बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। थोड़ी देर में ना आपको कभी भी 1 से 2 के बीच कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जिसकी ऑब्वियसली आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि बोर्डिंग कॉल जो है वो अनाउंस होगी और इस बोर्डिंग कॉल से उसका क्यू जो है वो अनाउंस होगा और उसके थ्रू आपको मौका मिलेगा 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस और साथ में $1,000 स्पेंडिंग मनी भी मिल रही है, यानी कि परफेक्ट मौका है आपके पास इतने भागा दौड़ी वाली लाइफ से थोड़ा सा एस्केप करना और पहुंच जाना एक ऐसे आइलैंड में जहां पे मस्त एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय। वेल यस, जैसे ही आप क्यू सुनेंगे उसके बाद आपके पास ठीक 1 आवर होगा टू पुट योर सेल्फ इन टू रोवा ऐप और उसमें बोर्ड नाउ कोड जो है वो डालना पड़ेगा। अगर बोर्ड नाउ नहीं डालोगे तो आप सबमिट नहीं करोगे, लाइक उसमें नहीं जाओगे कंपटीशन में। सो व्हाट यू नीड टू डू इज रोवा ऐप ऑन करिए और जैसे क्यू सुने फट से वो डाल दीजिए। अगर आपको नहीं मिलती है लिंक या ऐसा कुछ तो डोंट वरी, आप हमें सिर्फ BC लिखे और 5599 पे भेज दीजिए, बिकॉज उसके जरिए लिंक जो मिलेगी वो डायरेक्टली आपको वहीं पहुँचाएगी। सो यस, हम अ बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysolomons.co.com, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक। एक चीज पढ़ लेता हूं यहां पे मैं, ध्यान से सुनिएगा आप। इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस। पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक आउट हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 for free and confidential mental health support. 0800-862-342. Well, आप बस बने रहिए lunch time rent line के लिए। आप बस बने रहिए because यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीज हुई होगी जो आपको सचमुच कुछ इरिटेट किया हो या ऐसा कुछ। बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: या रॉक एंड रोल। Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Hum.
3: 3, 2, 1, rush!
4: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. cbp.co.nz/rewardsrush.
5: For 75 years, Fiji Airways has connected Fiji to the world and brought the world closer to home. So right now, they're celebrating with a special 75th anniversary sale. Fly to Fiji one way from $305, LA and San Fran from $675, Vancouver from $875, and Hong Kong, Singapore or Japan one way from $675. Only for a limited time. Book now at fijiairways.com.
6: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
7: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
8: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion, aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se kahin zyada zaruri hai ki aapke assets theft aur natural disaster se protected rahe. Jab aap apne valuables Commonwealth Vault ko entrust karte hain, to aapko milta hai peace of mind. Ye jante hue ki wo safe, secure aur protected rahenge. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: Lunchbox with Ketan.
13: मुझे पसंद है लड़का.
12: हम. Lunchtime Rant Line.
14: वेलकम बैक. लंच टाइम रेंट लाइन पे बात करते हैं. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे और शेयर कर सकते हैं कुछ अगर ऐसी चीज हुई हो जो आप सचमुच बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए हो. वेल, ये रही बातें. मैं एक चीज लेके आया हूँ यहाँ पे. वेल, एक मैसेज मिला है मुझे. लेट मी जस्ट गो थ्रू इट अगेन. कहाँ गया ये रहा. नाइस. मीरा ये कहती है, माय रेंट इज अबाउट पीपल हु बोरो योर थिंग्स एंड देन फॉरगेट टू रिटर्न देम. आई लेंट माय कलीग्स माय अम्ब्रेला लास्ट वीक एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट बैक. नाउ आई एम वन चेकिंग द वेदर बिफोर लीविंग होम. यार ये चीज तो होती ही है यार, होती है. पता है क्या, मैंने ये किसी को सजेस्ट किया था. उसने पहले बहुत ही फनी उसको लगा, लेकिन यू नो बट उसने ट्राई किया और फिर उसे सच में इतना ज्यादा चले गया कि वो देती है, देते हैं, लेकिन उसे फिर से टाइम टू टाइम मिलने भी लगा. सो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि जो भी आप चीज आप देना उसमें आप लिख दीजिए. मीरा, मीरा जी आप लिख दीजिए वहां पे दिस यू नो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी है जो भी चीज़ आप दे रहे हैं बिलोंग्स टू मीरा. ऐसा जैसे स्कूल में क्या करते हैं बच्चों का होता ना कि टिफिन पे नाम लिख दे सो दैट ये मिस आउट नहीं हो जाए, वो चीज़. सो दैट ऑल्सो यू ट्राई. अगर वो काम कर जाता है तो यू नेवर नो यार, मतलब है ना. मुझे लगता है मुझे पेटेंट लेना पड़ेगा इस पर, राइट, कि ये सजेशन मेरी तरफ से आया, किसी और की तरफ से नहीं. बट ये एक बार ट्राई करिए मीरा जी और बताइएगा ये काम करता है कि नहीं करता. और इफ़ यू कंफर्टेबल और नॉट ये भी बताइए. 5599 नंबर. बट इस कॉल होता तो बहुत ही मजा आता, बट दैट्स फाइन. एक और मैसेज आया है, वो कहते हैं, रोहन फ्रॉम मनुकाओ, माय रेंट इज अबाउट पीपल हु टेक फॉर एवर to reply to a simple message but somehow have time to post stories all day. ये तो मैंने एक किसी ने मैसेज भी किया था लास्ट वीक, मैंने उनको कहा भी था, इट इज़ नॉट अबाउट हार्श रियलिटी है बट इट इज़ मोर अबाउट प्रायरिटी या फिर वॉन्ट टू इग्नोर और नॉट, दैट इज़ व्हाट इट इज़. बट कुछ लोग जेन्युइनली बिजी भी होते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली बिजी भी होते हैं, बट वही है, मे बी हो सकता है उनको फिल्टर करना आता हो और दे नो कि भाई अगर इसकी तरफ से मैसेज आया है आई विल टेक अ टाइम. एक होता ना, अच्छा इसको एक अच्छी तरीके से और फ्रेज करते हैं, बेसिकली किसी ने अगर मैसेज किया है और उनको पता है कि अगर इसने मैसेज किया है तो मुझे पता है किस तरह का होगा, सो वंस आई गेट फ्री फ्रॉम माय रेगुलर काम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद में आई विल रिप्लाई. सो व्हाट विल हैपन इज कि उन्होंने इग्नोर भी नहीं कर रहा है बट ही नोज दैट हाउ टू टेक केयर और यू नो रिप्लाई. अनलेस अगर कोई बिजनेस रिप्लाई होता तो डेफिनेटली कुड हैव बीन डिफरेंट, और इतना अर्जेंट होता शायद कॉल ही कर लेते हैं, राइट? बट व्हाट डू यू थिंक?
13: लंच के मंच पे, लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. यहाँ पे हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट बात का, लेटेस्ट टॉपिक जो कि लाइफ से रिलेटेड है. एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ओल्डर एडल्ट्स के लिए मील्स के बीच बहुत लॉन्ग गैप्स रखना शायद हेल्दी नहीं हो सकता. रिसर्चर्स ने स्वीडन में 60 इयर्स और उससे ज़्यादा एज के अराउंड 3000 पीपल को स्टडी किया. उन्होंने देखा कि जो लोग मील्स के बीच ज़्यादा टाइम गैप लेते हैं उनमें क्रोनिक डिजीज डेवलप होने का रिस्क हो जाता है, स्पेशली 78 इयर्स के ओल्डर पीपल के कंपेयर में. हम जनरली फास्टिंग 70 ईयर्स के ओल्डर पीपल में ज़्यादा होता है, नॉट कंपैरेटिवली बट ज़्यादा होता है. हम जनरली फास्टिंग को वेट लॉस और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल समझते हैं, लेकिन एजिंग के साथ बॉडी को इनफ कैलोरीज, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली मसल्स को मेंटेन करने के लिए. हाउएवर रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है कि लॉन्ग गैप्स डायरेक्टली डिजीजेस कॉज करते हैं. ये सिर्फ एक एसोसिएशन है. जी हाँ, अभी ये सवाल काफ़ी आता है. मैं खुद अपने मॉम डैड को कह के थक गया हूँ कि भाई इस उम्र में फास्टिंग रखना इज़ नॉट गुड. हमें ज़रूरत है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या कोई खा सकते हैं, बट वो ऑलरेडी दाल रोटी खाते हैं या फिर बेसिक सा खाना खाते हैं. दे डोंट फील लाइक गोइंग आउट एंड ईटिंग पिज्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब उनको नहीं चलता है, बट स्टिल दे वॉन्ट टू कीप फास्टिंग. बट आई थिंक ये आर्टिकल काफ़ी रिलेटेबल है और मैं ये उनको फॉरवर्ड करने वाला हूँ. एंड आई फील लाइक अगर आपके भी घर में है कोई ऐसा इस उम्र के आसपास तो उन्हें कहिए कि खाना टाइम पे खाइए, अच्छा खाइए, डोंट अवॉइड ईटिंग. ये वैसे सभी के लिए लागू होना चाहिए बट कंपेयर अगर करें तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है नॉट टू डू फास्टिंग. दैट्स व्हाट आई आल्सो फील.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
4: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
5: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
4: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
6: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
8: लंच के मंच पे।
9: वेलकम बैक। एक मूवी की बात लेके, मूवी नहीं एक्चुअली एल्बम का गाना, एल्बम की बात है ये बॉलीवुड से, उस पर थोड़ी बता दे। बट आपने ये गाना डेफिनेटली सुना होगा, थोड़ी सी दो लिफ्ट करा दे, ये गाना आपने सुना ही होगा। वेल, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा इस खबर के बाद। बहुत ही पॉपुलर हुआ था, इनफैक्ट आई थिंक आई वॉज जस्ट 7 or 8 ईयर्स ओल्ड जब ये गाना आया था, जिसमें वो भी गाना था ना, कभी तो नजर मिलाओ। ये पता नहीं सेम जॉनर का, लाइक सेम एल्बम का था या नहीं था, बट आई एक्चुअली एंजॉयड। वन रीजन वॉज कि बॉलीवुड को ऐसा मेरे ख्याल से इतना सही इनकी आवाज़ थी, एकदम हटके आवाज़ थी, और सबसे पहचान इनकी हो गई थी इनकी वेट की वजह से। ये ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे उनकी वेट को देख के। लेकिन यू जस्ट सी लाइक हाउ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ही ब्रॉट इन टू हिज डेली लाइफ। और आज की तारीख में देखिए ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, बट ही वॉज एक्चुअली 150+ ड्यूरिंग दोस टाइम। बट ये मैजिक अभी बरकरार है। आए थे यहाँ पे, हमने सुना और बहुत ही बढ़िया इनका शो गया था। बट यस, मैं बात कर रहा हूँ अदनान सामी, जिनकी खबर मैं लेके आया हूँ एक पॉपुलर सॉन्ग लिफ्ट करा दे की। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि जब ये सॉन्ग बना था, उनका रिकॉर्ड लेवल इसे डाउन मार्केट समझता था, लगता था कि ये अदनान की इमेज के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा कहा गया था। अदनान ने सॉन्ग को रिलीज करवाने के लिए 6 महीने तक फाइट की। फाइनली वीडियो शूट हुआ, वो भी ऑलमोस्ट 0 बजट में। मुंबई के स्ट्रीट पर संडे मॉर्निंग को शूटिंग की गई बिना प्रॉपर परमिशन के। अदनान बताते हैं कि वो कार से बाहर आते, थोड़ा डांस करते और फिर क्विकली नेक्स्ट लोकेशन पर चले जाते। बेसिकली एक गुरिल्ला स्टाइल शूट था। लेकिन जब सॉन्ग रिलीज हुआ तो वो बहुत बड़ा हिट बना। जो सॉन्ग इनिशियली लेबल को पसंद नहीं था, वही बाद में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लेबल इसका रिमिक्स भी बनाना चाहते थे। यही कहते हैं कि कहानी, यू डोंट जस्ट स्टिक विथ लोग क्या बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये, अगर आपको खुद को भरोसा है तो जस्ट गो फॉर इट।
8: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

नमस्कार नमस्ते वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। इस आर में बहुत सारी बातें होने वाली। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कीप लिसनिंग एंड जॉइनिंग मी। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच। 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: What a song, धड़क धड़क, उदित नारायण, सुनिधि चौहान की आवाज में। वैसे शॉकिंग पता क्या है, ये गाना मैंने इतनी बार सुन लिया है लेकिन मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी है। वैसे यहाँ कौन है जो सेम चीज में, ऑब्वियसली यू नो दे कंसिडर देमसेल्फ इन द सेम कैटेगरी दैट दे हैव सीन दिस फिल्म, सॉरी सीन लाइक हर्ड दिस सॉन्ग मेनी मेनी टाइम एंड दे नो दिस कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया फिल्म थी लेकिन फिल्म नहीं देखी है। ऐसे अगर आपके पास कोई और भी हो तो मुझे बताइए 5599 पे। आज एक्टिविटी थोड़ी कम लग रही है, मुझे लग रहा है मंडे जो है मंडे थोड़ा प्रॉपर मंडे नहीं हुआ है लोगों का। दे आर स्टिल इनटू लाइक यार क्या वीकेंड था, बढ़िया था, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, नाउ दिस हैज बीन गॉन। बट कोई बात नहीं, यू स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिए बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट खबर पता है क्या है, इफ यू ट्राई योर लक इनटू लॉटो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। गिस्बर्न के एक लकी रेसिडेंट ने 28.5 मिलियन लॉटो जैकपॉट जीत लिया है। ड्रम डन डन डन डन डन डन, बहुत ही गंदा था बट कोई बात नहीं। ये न्यूजीलैंड के बिगेस्ट लॉटो विन्स में से एक है। विनिंग टिकट गिस्बर्न के एक लोकल स्टोर से खरीदा गया था। विनर को 28 मिलियन डॉलर पावरबॉल से मिला, प्लस 250,000 लॉटो फर्स्ट डिविजन का प्राइस भी मिला। अब इतने सारे पैसे, 28.5 मिलियन डॉलर, हे भगवान कितना होता है यार भाई, क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब इतने सारे पैसे के साथ विनर के पास बहुत ऑप्शन है, वो गिस्बर्न में सेवरल एक्सपेंसिव हाउसिंग खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल और दूसरे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। और ये सब कॉस्ट इस विन से लोकल कम्युनिटी भी काफी एक्साइटेड है। स्टोर ओनर्स के लिए भी ये एक बहुत ही ह्यूज मूवमेंट था, स्पेशली बिकॉज स्मॉल लोकल शॉप ने इतना बड़ा विनिंग टिकट सेल किया। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या लगता है ये 28.5 मिलियन डॉलर में क्या करेंगे, ये बताइए मुझे आप 5599 पे। मतलब मैं इतना खुश हो रहा था, जस्ट इमेजिन यार, ये मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ कि अगर मेरे को ये मैं जीतता हूँ तो पता नहीं क्या होगा। लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे। We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me. Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation. Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Let's go. Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
1: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
2: At Bunnings, you'll find our aisles and shelves are packed full of rewards. That's because you can now earn Bunnings rewards in every aisle, whether you're just popping in or stocking up for a project. Earn 1 point for every $1 spent at Bunnings and get $5 to spend in-store for every 500 points earned. Download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today. Bunnings Warehouse.
3: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
4: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111.
6: Indelible Homes, your building expert.

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: Well, इसको स्किप तो नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स खबर लेके आया हूँ. न्यूजीलैंड मोटर स्पोर्ट्स के लिए वीकेंड जो है काफी एक्साइटिंग रहा था. अगर आप देखते हैं तो आपको पता ही होगा मैं बात कर रहा हूँ स्कॉट मैक्लफ्लिन का. उन्होंने इंडीकार सीजन के फाइनल रेस में लगुना सीस्का कैलिफोर्निया में शानदार विन अचीव की है. उन्होंने रेस पोल पोजीशन से स्टार्ट की और ऑलमोस्ट पूरी रेस में लीड मेंटेन की. ये उनकी 2024 के बाद फर्स्ट विक्ट्री थी और इस विन के साथ उनकी 25th रेस विनलेस स्ट्रीक जो है वो एंड हो चुकी है. लेकिन रेस का सबसे इमोशनल पार्ट था स्कॉट डिक्सन का फेवल. डिक्सन ने चिप गैनेसी रेसिंग के साथ 25 ईयर्स स्पेंड किए हैं और इस टीम के साथ उन्होंने 6 चैंपियनशिप और 58 रेस विन की है. डिक्सन ने अपने फाइनल गैनेसी रेस 17 प्लेस पर फिनिश की थी. अब नेक्स्ट सीजन वो एरो मैक्लेरन के लिए रेस करेंगे. वाह व्हाट अ कमबैक यार, व्हाट अ कमबैक डिक्सन. पूरे 35 नो विनिंग के साथ उन्होंने ये एंड किया है जीत के और ऑलमोस्ट 2 साल तक वो जीत से दूर रहे और उनकी जो लास्ट थी वो भी 17 रैंक रही है इन द रेस. बट सो गुड यार, सो गुड. आपने वैसे कभी देखा है यहाँ पे लाइक इन न्यूजीलैंड और एनीवेयर इन द वर्ल्ड इस तरह की रेस? F1 मैंने यहाँ पे F1 देखी है और एक ट्रक रेसिंग भी देखी इनवकागल में. हाँ जी, तो वो बहुत ही बढ़िया थी, वो बहुत ही. लेकिन बाइक की अभी तक मैंने देखी. आई वॉन्ट टू सी इट यार.
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Well, अभी एशिया कप भी चल रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल मैच हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसमें इंडिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया है 68 बॉल्स रहते हुए। 55 पे ऑल आउट किया था पहले पाकिस्तान को 18.1 ओवर में, और इंडिया ने मात्र 8.4 में ये मैच जीत लिया है। हालांकि उन्होंने 3 विकेट भी गंवाए थे, फिर भी ये मैच जीत लिया है। और मेरे ख्याल से पहली टीम बन चुकी है, नहीं एक्चुअली दूसरी टीम बन चुकी है इस एशिया कप में सारे मैच जीतने वाली। जी हाँ, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पड़ाव क्या है। बट ये अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो इंडिया इज ऑन टॉप, पाकिस्तान इज ऑन सेकंड। बी ग्रुप में अगर देखें तो श्रीलंका इज ऑन टॉप एंड बांग्लादेश इज ऑन सेकंड। वैसे आज तारीख है 7, सो लेट्स सी कौन से मैचेस आप एंजॉय कर सकते हैं। आज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका हुआ था, वो भी हो चुका है, यानी कि ऑफकोर्स श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत लिया है। और कल होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग, लेट्स सी क्या होता है। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम
1: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार,
2: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो।
3: अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J.Crew.
5: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
6: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
7: Non-stop Bollywood.
8: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
7: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
7: इसके पीछे
8: हम
7: Tech Talk.
0: चलिए बात करते हैं अभी एक नया टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं ये, लेकिन आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। तो ये बेसिकली फाइनेंस जर्नलिस्ट फ्रांसिस कुक ने रिसेंटली वॉर्न किया है कि उनका एक AI डीप फेक वीडियो ऑनलाइन शेयर हो रहा है। अगर आप तक पहुंच चुका है एंड होपफुली आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया हो उस पर, बिकॉज वीडियो में AI की हेल्प से उनका फेस और वॉइस कॉपी किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांसिस ANZ के एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रही है, बट फ्रांसिस ने क्लेरिफाई किया कि वीडियो में वो नहीं है और ANZ का भी इस वीडियो से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वैसे ये इंसिडेंट दिखाता है कि AI डीपफेक्स कितने रियलिस्टिक हो सकते हैं। स्कैमर्स फेमस या ट्रस्टेड पीपल का फेस और वॉइस यूज करके फेक इन्वेस्टमेंट ऑफर्स क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑफर देखकर इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज इंफॉर्मेशन को ऑफिशियल सोर्सेज से चेक करो और अननोन लिंक्स पर पर्सनल डिटेल्स या मनी शेयर मत करो। ओवरऑल AI टेक्नोलॉजी यूजफुल है, बट डीप फेक के केसेस में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक्चुअली भी मैं कहता हूं दैट व्हाई यू नीड टू लर्न AI, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है ऐसा कुछ है, और या फिर अगर आपको लग रहा हो कि यार भाई मुझे अब करके क्या करना है, आई नो नाउ आई एम रिटायर्ड, बट एक्चुअली AI से अगर आप रूबरू हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि AI कितना खतरनाक हो सकता है विद यू नोइंग और विदाउट। तो इसीलिए AI को जितना आप समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना दोस्ती करोगे, जितना एक तरह से पढ़ाई है ये, बट उतना यू नो ट्रबल वाली नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हो जाएगी थोड़ी बहुत, और जहाँ पे एकदम से रिएक्ट करें वहाँ पे आपको पता होगा भाई ये AI हो सकता है या नहीं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग सो कन्फ्यूज राइट नाउ। तो आपका काम यहाँ पे ये है टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड टू गेट इनटू दिस AI वर्ल्ड बिफोर AI टेक्स ओवर टू यू।
10: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: वेल एक बहुत ही बढ़िया खबर लेके आया हूँ ऑल द फीजी कीर्तन लवर्स के लिए। फीजी कीर्तन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में जो आपको सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम फीजी कीर्तन संग्रह ऑकलैंड के टैलेंटेड आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार है। तारीख जो है वो है 25 सितंबर, नोट डाउन कर लीजिए। वेन्यू जो है वो वैदिक सेंटर पापेटोटो है। एंड यस, अगर आप फीजी कीर्तन रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप KR लिखें और 5599 पे भेज दीजिए। एंड यस, ऑटो रिप्लाई पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी आपको, लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि रजिस्ट्रेशन करना रिकॉर्डिंग स्पॉट कंफर्म नहीं करता है, सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी। सिलेक्टेड आर्टिस्ट से रिकॉर्डिंग कंफर्मेशन के लिए हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 सितंबर को क्लोज हो जाएगी, यानी कि आज से ऑलमोस्ट एक हफ्ता। टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई। तो आइए मिलकर फीजी कीर्तन की आवाज को ऑकलैंड से दुनिया तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करते हैं। बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपका जो दिन है समय है बहुत ही बढ़िया रहा हो। आप बस बने रहिए, बहुत सारी खबरें लेके आएंगी। अभी सैंडी भी जुड़ने वाली बहुत ही जल्द कॉफी ब्रेक और उसमें उनका साथ देंगे ड्राइव शो में। तब तक के लिए मैं निकलता हूं एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार. सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
7: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
8: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है.
7: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज.
9: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
11: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
10: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
12: First home buyer बनना है या investment property लेनी है तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
13: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A union is describing job cuts at Wellington City Council as a short-sighted waste of talent and institutional knowledge. PSA says a decision made today will see a net reduction of 47 jobs across three departments. The council has been approached for comment. There's renewed hope as Pharmac takes a second look at the meningitis vaccination program. The Meningitis Foundation wants more funding for adolescents. Board member Barry Donaldson says bipartisan support also wouldn't hurt.
15: We don't want this to become a political issue, but we do want all parties to come together on this and actually put something up as an election policy this year.
14: Product labelling in New Zealand is moving into the digital era. Revamped standards aim to make things easier for exporters and importers. Over-the-counter medicines labelling will also be aligned with Australia's, a move Retail New Zealand's Carolyn Young is welcoming.
16: Having the same labelling requirement for non-prescription medicines that are regularly used will make it a lot easier and more cost-effective.
14: The strong smell of gas that evacuated an office building in Christchurch today has been chalked up to sewage maintenance work. The Durham Street site has been declared safe to re-enter. To sport after 25 years, Kiwi motorsport great Sir Scott Dixon has raced for the Chip Ganassi Racing Team for the last time. He was 17th in today's IndyCar race in California. Motorsport with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty. And in basketball, the new Breakers season gets underway on Sunday week. There are pre-season headouts this week. Southeast Melbourne tomorrow night and Melbourne United on Thursday night.
7: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 6:06 पर.
7: Coffee break with Sandy.
17: 3:02 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है कॉफी ब्रेक में. सो कैसे हैं आप और आपका आज का डे कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? एंड आपका वीकेंड कैसा गया है? इट वॉज प्रीटी गुड वेदर अगर वीकेंड की ओर देखा जाए. आज का वेदर थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ है लेकिन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क ऑलरेडी महसूस हो रहा है. लाइक बिट वार्म टेम्परेचर एक्चुअली में फील हो रहा है. चाहे बाहर थोड़ा विंडी है आज का, थोड़ा रेनी है, जगह जगह पे फ्लडिंग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो सब तो मेरे को लगता है कि वेरी नॉर्मल न्यूजीलैंड के लिए भी हो चुका है. सो एनीवे आपका वीकेंड कैसा गया? व्हाट डिड यू डू? एंड अभी ने बहुत अच्छा

3:11 हो चुके हैं और एक 13-year-old इसे रेफर किया जाएगा यूथ एड के लिए बिकॉज मोर देन $6,000 वर्थ ऑफ पोकेमोन कार्ड जो थे इसे चुराया गया है फ्रॉम अ शॉप इन ऑकलैंड. पुलिस ने बोला है कि जो टीनेजर है टुक ऑफ विद अ रिंग बाइंडर इन हैंडरसन जब शॉपकीपर उस समय डिस्ट्रैक्टेड था. सो इंक्वायरीज इनटू द थेफ्ट बहुत ही जल्दी शुरू हो गई थी जिससे एलिज्ड ऑफेंडर को आइडेंटिफाई भी किया गया. सर्च वारंट भी था. तो सम ऑफ द कार्ड्स वर रिकवर्ड वाइल अदर्स हैड ऑलरेडी बीन स्वैप्ड एंड मेम्बर्स ऑफ पब्लिक को एडवाइज किया गया है टू बी अवेयर अबाउट द यू नो द पॉपुलर ट्रेडिंग कार्ड्स पोकेमोन के जो कार्ड्स है. सो एनी वन हु बिलीव्ड कि उनके पास स्टोलन कार्ड्स आए हैं ये इन्फॉर्मेशन वो पुलिस तक पहुँचा सकते हैं ऑनलाइन या फिर यू कैन कॉल ऑन नॉन एमरजेंसी नंबर विच इज़ 105. बट यहाँ मैं ये पढ़ के हैरान हूँ कि पोकेमोन कार्ड्स जो है मतलब इतने महंगे होते हैं क्या ये? मतलब $6,000 वर्थ ऑफ पोकेमोन कार्ड जो थे ये चुराए गए हैं हैंडरसन स्टोर से. सो इमेजिन स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप कि मतलब क्या है ये कार्ड ही ऐसे उठाए गए हो और बाद में इतने महंगे वो निकले. ऑफकोर्स जिसने उठाए हैं उसको तो डेफिनेटली पता था कि इतने महंगे कार्ड्स इतने वर्थ ऑफ कार्ड्स एक्चुअली में हैं. $6,000 वर्थ ऑफ दिस पोकेमोन कार्ड्स.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
2: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ, अच्छा?
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं?
5: शश, मिसेस सिंह।
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: Zero
9: with an X.
10: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
11: कभी-कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड रिमेम्बर आपके लिए हम बोर्डिंग कॉल ये कॉम्पिटिशन भी है. हम बोर्डिंग कॉल में आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू 102 विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी आपके नाम हो सकता है. इसके लिए एंटर कैसे करना है, यहाँ पे चार बार आपके लिए बोर्डिंग कॉल प्ले होती है, एक स्पेशल बोर्डिंग कॉल की नाउ इज़ द टाइम टू बोर्ड. एंड हमारी वेबसाइट पे जाइए, रोवा पे जाइए, वहाँ पे बोट नाउ आपको लिखना होता है कॉम्पिटिशन पेज पे एंड सबमिट करना होता है. सो दिस इज़ बिटवीन 8 AM टू 9 AM, 11 AM टू 12 PM, 1 PM टू 5 PM एंड 5 PM टू 6 PM. और जैसे ये प्ले होता है आपके पास 60 मिनट्स का समय होता है रोवा पे जाके इस कॉम्पिटिशन में एंटर करने के लिए. कॉम्पिटिशन पेज लिंक अगर आपको चाहिए आप BC लिख सकते हैं 5599 पर, यू विल गेट द कॉम्पिटिशन पेज लिंक. एंड ताकि जैसे ही प्ले होता है आपको पास ऑलरेडी कॉम्पिटिशन पेज लिंक है एंड यू कैन एंटर इन दिस कॉम्पिटिशन. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू 102. और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, flysolomons.com इनकी वेबसाइट है.
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.
1: 322 एट द मोमेंट हो चुके हैं. चार्ट बस्टर्स में जो गाना सुनने वाले हैं, इस मूवी के बारे में बात करना चाहती हूँ, मतलब इस मूवी के फ्रेंचाइज के बारे में बात करना चाहती हूँ. बट बिफोर दिस मूवी, दो मूवीज एक्चुअली में मैंने देखी है ओवर द वीकेंड. एक मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी आ चुकी है, पुरानी मूवी है 2006 की, मैन ऑफ द ईयर, रॉबिन विलियम्स की ये मूवी है. बहुत अच्छी मूवी है. इसमें क्या होता है कि यू नो, रॉबिन विलियम्स का जो करेक्टर है टॉम, वो एक पॉलिटिकल टॉक शो को होस्ट करता है, सेटायर होस्ट करता है वो, जिसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पास करना कि नो इस पार्टी को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, यू नो, जिस वे से हम सेटायर शोज़ आजकल देखते हैं. दिस इज़ 2006 एंड मजाक में वहाँ पे बात चलती है शो में कि इससे अच्छा तो वही प्रेसिडेंट के लिए रन करे. बट देन इतनी सारी ईमेल्स आ जाती है दैट ही डिसाइड्स कि यू नो वो प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लड़ेगा, बिकॉज उसके जो फैन है वो एक ग्रास रूट कैंपेन निकाल देते हैं. बट जैसे ही वो उस सिस्टम में आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है. अब उसके ऊपर होता है कि उसको टफ चॉइस उसको बनानी है कि इस जो उसने देखा है, जिसको पता चला है, उस हिसाब से उसे आगे बढ़ना है या फिर वापस ही शुड हेड बैक टू द माइक्रोफोन. सो इट्स अ वेरी नाइस मूवी, आई विल से जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी. मैन ऑफ द ईयर इसका नाम है. कमाल की बात यह है कि मूवी देखते समय, दिस इज़ 2006, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बोली गई है वो आज के दिन पे भी, इट इज़ 2026 नाउ, लाइक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल बाद भी वो जो चीज़ें हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही है अराउंड द वर्ल्ड, आई विल से. एंड दूसरी मूवी जो मैंने देखी है धमाल 4, दैट वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग मूवी. आई थॉट कि चलो हंस लेते हैं मूवी देख के, बट फालतू बातों पे भी हंसी आ रही थी ये मूवी देखने के बाद. बेसिकली ऐसा लगता है मूवी देख के कि धमाल फ्रेंचाइज में ना स्टोरी उन्होंने सोचा कि बाद में दिखाते, पहले मूवी को थोड़ा प्रोटीन पाउडर पे ला देते हैं, बिकॉज वही हुआ. बहुत सारे VFX है मूवी में, एक्स्ट्रा VFX है, करेक्टर्स थोड़े कन्फ्यूज है बिकॉज उनकी लाइफ की स्टोरी दिखाने के चक्कर में कुछ अलग ही दिखा दिया. यू नो, धमाल फ्रेंचाइज में क्या होता है कि खजाने के पीछे भागते हैं, कि खजाना ढूंढना होता है. यहाँ पर भी वही है, खजाना ढूंढना है डिफरेंट करेक्टर्स को, लेकिन चलते चलते थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थोड़े मेकर्स इसमें, मुझे वो लगा, क्योंकि फ़नी सिचुएशन बनाने के चक्कर में वही पुराने डायलॉग्स, काफ़ी मूवीज़ जो है ना जिनके आगे आगे पार्ट्स बन रहे हैं वो पिछले डायलॉग्स को यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. जैसे इसमें जावेद जाफरी का वो जो डायलॉग है कि ऐसी सिचुएशन में मैं पता नहीं आगे कैसे आ जाता हूँ, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस है, सिमिलर काइंड ऑफ डायलॉग्स भी है. अवल से ठीक है, पूरी की पूरी स्टार कास्ट के लिए एक बार देख सकते हैं, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इस मूवी को देखना है कि नहीं देखना है, बिकॉज स्टोरी लाइन में ये मूवी मेरे को थोड़ी वीक लगी. दो एक्टर्स इस मूवी के कमाल के हैं, वही सारे एक्टर्स हैं, बट स्टोरी लाइन इज़ बिट वीक फॉर दिस मूवी.

0: 3:33 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कॉफी ब्रेक. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आज का व्हाट एम आई क्वेश्चन आपके लिए. सो व्हाट एम आई क्वेश्चन में वैसे इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या सूट करता है. सवाल ये है, आई एम समथिंग यू हैव हंड्रेड्स ऑफ, आई एम समथिंग यू हैव हंड्रेड्स ऑफ बट कैन नेवर फाइंड व्हेन यू नीड वन. मतलब आपके पास ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये जो भी है आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको ये नहीं मिलता है, तब जाके आप नया खरीद के लेके आते हैं. ये क्या है? इसलिए मैंने बोला मल्टीपल आंसर्स इसके हो सकते हैं. ड्राइव कीवर्ड के साथ लिख के भेजिए 5599 पर कि ऐसा क्या है जो आपके पास होता तो बहुत है, मतलब कमी नहीं है इसकी, और जब भी आप ख़रीदते हैं कई बार बल्क में इसको ख़रीदते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तभी आपको ये नहीं मिलता है, एंड फिर जाके आप नया भी ख़रीदते हैं. मेरे साथ तो ये बहुत होता है. आई विल से कि मेरे साथ ये तीन चीज़ों को लेके बहुत होता है. आई हैव थ्री थिंग्स इन माइंड जिसके साथ मेरा ये होता है कि बहुत है. एक्चुअली फोर, अभी मैं सोच रही हूँ तो चार चीज़ें मेरे माइंड में आ गई. ये चार चीज़ें मेरे पास बहुत होती है, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब मुझे कुछ नहीं मिलता है, और मैं भी अपने लिस्ट में लिखती हूँ, जाती हूँ फिर और ख़रीद के लेके आती हूँ. आपके लिए वो क्या है? 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे मैसेज करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हम

0: properties true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: 22 मिनट बाकी है 4 बजने में. वैसे काफ़ी लोगों ने आंसर यहाँ पे भेजा है. मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा क्या है जो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तभी आपको ये नहीं मिलता है. मेरे पास यहाँ पे हेयर पिन आंसर आया है जो कि मेरी लिस्ट में भी था. एंड हैंडकरचीफ सपना ने लिखा है, इरेजर एंड शार्पनर फॉर रोशनी एंड मेघा. या फेयर इनफ. रबर बैंड्स मेरे पास आंसर आया है, 100% रबर बैंड. सेलो टेप भी मेरे पास यहाँ पे आंसर आया है. वेल, आपके लिए क्या है जो आपके पास होता तो बहुत है लेकिन आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है उस समय ये आपको कभी नहीं मिलता है. आप भी अपने आंसर्स यहाँ पे शेयर करके बता सकते हैं. 5599 इज़ ए नंबर. पेन मेरे पास आंसर भी आया है.

ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम इज ऑलमोस्ट फाइन. कल एकदम सनी ब्राइट वेदर रहेगा. सनसेट आज का 6:06 पर.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यू आर हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड रुजबे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसके बारे में अपडेट करूंगी थोड़ी देर में. बट हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? आप भी यहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिए. वेल, एक बहुत ही होलसम सी न्यूज़ मैंने देखी है. यू नो, पिछले कुछ रिसेंट दिनों में मैं एक बंदे की रील्स देख रही थी, टीनेजर की रील्स देख रही थी कंटिन्यूसली. वो एक ही कॉन्सेप्ट को पोस्ट कर रहा था. एंड वो कॉन्सेप्ट नॉट जस्ट फेमस होने के लिए था, वो कॉन्सेप्ट था एक काम करने के लिए. ये कॉन्सेप्ट क्या था कि दिस टीनेजर फ्रॉम इंडिया, एंड वो क्या करता था, वो एक ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है, मतलब कूड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड उसको वो साफ करता था और बिफोर आफ्टर की वो फोटो वहाँ पे डालता था. सो ही वुड क्लिक अ सेल्फी बिफोर की, जहाँ पे पूरी जैसे एक रिवर है, पूरा का पूरा कूड़ा करकट बॉटल्स ये वो उसके साथ भरा हुआ है, एंड आफ्टर जहाँ पे उसने पूरी की पूरी सफाई कर दी है, एंड लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज उसको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट नो वन वाज एक्चुअली डूइंग समथिंग अबाउट इट. वो फेमस तो हो रहा था उसमें, एंड ऐसा नहीं कि जब वो फेमस हुआ तो उसने वो करना बंद कर दिया और कुछ और यू नो चीज़ें करनी शुरू कर दी. ही वॉज जस्ट कंटिन्यूसली डूइंग हिज वर्क. और वो इसलिए भी बिकॉज वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन है, इन्वायरमेंट को शुद्ध कर

ओशन क्लीनअप में इसको हिस्सा बन के और बड़े काम करने चाहिए, जहाँ पे ही कैन गेट द रिसोर्सेज एंड कैन डू हिज जॉब इवन बेटर एंड गेट पेड फॉर इट एज वेल। सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड अगर आपने कभी इसको टीनेजर को चेक करना हो, इसका नाम बड़ा सही है इंस्टा पे, इसका नाम है बिट्टू तबाही। तबाही तो मचा रहा है ये, बिट्टू अंडरस्कोर तबाही सर्च करोगे तो यू विल गेट टू सी जो मैं बात कर रही हूँ। एंड अनबिलीवेबल वर्क आप देखोगे कि कोई सिंगल हैंडेडली ये पूरा का पूरा काम कैसे कर सकता है। आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन आवर सोशल्स एज वेल, बट यस फिलहाल तो आप बिट्टू तबाही को जाके उसके इंस्टा हैंडल पे शो सम लव। ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लव इस 20 ईयर ओल्ड को ज़रूर मिल रहे हैं। ओशन क्लीनअप ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब है जिसमें वो जाएगा एंड ही विल बी लाइक ठीक है मैंने ये दिखा दिया पैसा कमाऊंगा, बट ही विल बी एक्चुअली डूइंग सेम काइंड ऑफ स्टफ विद मोर रिसोर्सेज एंड गेट पेड एज वेल। सो कभी कभी होता है ना, जब आपकी इंटेंशन बहुत सही होती है किसी काम को अचीव करने के लिए, तो कायनात मिल जाती है उसको सक्सेस देने के लिए।

414 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड ऑकलैंड एयरपोर्ट में कुछ चेंजेस आने वाली है 2027 में, बाय द एंड ऑफ 2027 एक्चुअली में 26 तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, सितंबर में है हम. सो व्हाट इज चेंजिंग, ये जो बिग चेंज है इसको द फ्लिप नाम दिया गया है. सो फ्लिप होने वाला है. सो करंटली क्या होता है कि इंटरनेशनल डिपार्टिंग पैसेंजर्स जो है, पहले हम पासपोर्ट कंट्रोल के पास जाते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी होती है. सो बाय द एंड ऑफ 2027 ये ऑर्डर रिवर्स होने वाला है, यानी कि पहले हमारी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद हम पासपोर्ट कंट्रोल में जाएंगे एंड देन डिपार्चर गेट्स. सो यू विल पुट योर बैग्स थ्रू द सिक्योरिटी बिफोर यू रीच कस्टम या पासपोर्ट कंट्रोल. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ ऑकलैंड एयरपोर्ट्स मैसिव रीडेवलपमेंट, जहाँ पे दे आर इवेंचुअली ब्रिंग डोमेस्टिक जेट एंड इंटरनेशनल ट्रेवल इनटू वन इंटीग्रेटेड टर्मिनल. अभी दो अलग अलग टर्मिनल्स हैं. सो ये जो नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, एक्सपेक्टेड है कि 2028 या 2029 में ओपन अप हो जाएगा. एयरपोर्ट का कहना है कि ये इवेंचुअली अलाउ करेगा डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल ट्रांसफर को मच ईजियर 5 मिनट इनडोर वॉक के लिए. एंड जो एयरपोर्ट कस्टम और सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इनका ये कहना है कि जो नया सीक्वेंस है इसे फॉलो किया जाएगा इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में एंड इससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होगी. सो द इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट इसमें से ये है कि इंस्टेड ऑफ चेक इन, पासपोर्ट कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड गेट, अब रहेगा चेक इन, सिक्योरिटी, पासपोर्ट कंट्रोल एंड गेट. इस वे से ये जो प्रोसीजर है ये बढ़ने वाला है. सो देयर विल बी मोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अराउंड टर्मिनल अर्ली 2029 में भी. सो काफ़ी चेंजेस जो है ऑकलैंड एयरपोर्ट में अभी भी होना बाकी है. सो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स नाउ सेल्फ सर्विस चेक इन एंड ऑटोमेटेड बैग ड्रॉप्स एज वेल. सो ये चीज़ें जो है अभी कुछ कुछ फ्लाइट्स में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी फ्लाइट्स में नहीं अवेलेबल है. तो वो सब कुछ भी एक्चुअली में होने वाली है. अगर आपको कोई चेंज लेके आना हो, ऑकलैंड एयरपोर्ट के बारे में ही बात करते हैं, व्हाट इज़ वन थिंग यू थिंक कि चेंज होना चाहिए ऑकलैंड एयरपोर्ट में, इंस्टेड ऑफ ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है, जो अभी यू नो एक प्रोसीजर चला है, रिवर्स ऑर्डर होने वाला है कि पहले सिक्योरिटी होगी फिर पासपोर्ट कंट्रोल में हम जाएंगे. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये पब्लिक के लिए ऐसा ओपन हो कि ऑकलैंड एयरपोर्ट में अगर कुछ चेंज लेके आना चाहिए तो वो क्या चेंज होना चाहिए. रिसेंटली पार्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, वैसे वहाँ पे पार्किंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पार्किंग टू अराइवल्स या डिपार्चर तक जाना इज़ एक्चुअली क्वाइट अ वॉक. अगर देखा जाए मुझसे पूछो तो या वो वॉक थोड़ी लंबी है लेकिन देन या हमें आदत थी ऑकलैंड एयरपोर्ट छोटा सा है तो शायद इसके कारण वो लगती है. आपको क्या लगता है कि और क्या चेंज होना चाहिए ऑकलैंड एयरपोर्ट में, बड़ा चेंज और क्या लेके आना चाहिए जो आपको लगता है कि अभी मिसिंग है एंड इट शुड बी देयर, जो आपको बाकी एयरपोर्ट्स में शायद लगता है कि यार ये एयरपोर्ट पे आके मज़ा आ जाता है बिकॉज यहाँ पे ये है. मिसाज चेयर्स मुझे लगता है वो फ्री वाली जो है ना सिंगापुर एयरलाइंस में, वो शायद ऑकलैंड एयरपोर्ट में होनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग क्या चेंज होना चाहिए, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं मैसेज करके 5599 पर या फिर कॉल करके 0800 00 हम पर.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump, T's and C's apply. See Caltex.co.nz.
5: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
9: हाँ, अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
12: डॉक्टर ने क्या बोला
13: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
12: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
14: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
15: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashure1.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
16: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
17: 421 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड मैंने पूछा था कि एयरपोर्ट पे अगर आप ऑकलैंड एयरपोर्ट पे अगर आप कुछ चेंज लेके आना चाहेंगे तो वो क्या चेंज लेके आना चाहेंगे मेरे पास आंसर आया है फ्री पार्किंग या यू विश ये किसी भी एयरपोर्ट पे मेरे को लगता है नहीं होती है कोई टाइम बीइंग के लिए होती है लाइक फॉर फ्यू मिनट्स बट ज़्यादा तो फ्री पार्किंग मैंने देखा है कि काफ़ी एयरपोर्ट्स पे नहीं होती है लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो पिक एंड ड्रॉप वाला जो सर्विस है अभी मतलब वो जो एरिया है एक्चुअली में वो बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया गया है एनीवे आप भी यहाँ पे लिख के या मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हैं कि ऑकलैंड एयरपोर्ट में अगर आप एक चेंज लेके आना चाहेंगे तो वो क्या चेंज होगा वैसे फिजी कीर्तन रिकॉर्डिंग होने वाली है फिजी कीर्तन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूर पड़ेगी हम फिजी कीर्तन संग्रह जो कि म्यूज़िक स्टेशन आप यहाँ पर रोवा ऐप पे सुनते हैं यहाँ पे ऑकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग करके आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए तैयार है सो रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डिंग एक्चुअली में 25 सितंबर को जो कि फ्राइडे की शाम है वैदिक सेंटर में होगी पापाटोए में सो अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत इजी लिंक है, KR एज इन कीर्तन रिकॉर्डिंग, KR आप मैसेज कीजिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए. सो याद रहे रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं करता है आपका रिकॉर्डिंग स्पॉट. इसका मतलब है कि आपने रजिस्टर किया है, आपने इंटरेस्ट भरा है. सिर्फ 20 आर्टिस्ट ही रिकॉर्डिंग के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और हम रिकॉर्डिंग कंफर्मेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर को क्लोज हो जाएगी, सो फ्यू डेज आपके पास है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यू कैन स्प्रेड दिस वर्ड एज वेल.
16: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
18: मैं लाऊं अपना ए गेम.
16: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: थोड़ा तो हॉल बना दे।
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate, up to 60%

0: डॉक्टर ने क्या बोला?
1: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
0: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
2: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
3: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North and Will Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
4: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप कभी बादल, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ योर डूइंग, रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz।

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
2: 7 सितंबर है आज, और आज अगर आपके लिए खास दिन है तो आपको बहुत बहुत बधाई आज के दिन की. ड्राइव शो में स्वागत है आपका. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून रिज़बे, कैसा था तुम्हारा दिन?
2: मेरा दिन बहुत बढ़िया था सैंडी. एंड हाउ वाज योर डे?
3: गुड गुड. वेदर देख रहे हो, थोड़ा ऑलमोस्ट चेंज हो गया है.
2: ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, बारिश टाइप हो रही है, उसके लिए बोल रहे हो कि?
3: नहीं नहीं, वैसे वार्म टेम्परेचर,
2: वार्म हो गया है काफी.
3: मतलब चाहे बारिश हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, द टेम्परेचर इज वार्म नाउ.
2: यू राइट. एक्चुअली आज मैंने आई डिडंट हैव टू लाइक जिप माय जैकेट. You know, that is one next step. कि जैकेट को जिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है.
3: Yeah, तो that means कि फर्क पड़ रहा है.
2: Next step will be no jacket required.
3: Yeah.
2: No jacket and कापना. फिर the final stage is no jacket, no कापना.
3: Yeah, and then eventually हम समर में भी धीरे धीरे आ जाएंगे. Yeah, that means कि end of the year में आ जाएंगे, close to Christmas आ जाएंगे.
2: Yeah, wow. Wow, man. This
3: time is flying.
2: September. Oh,
3: it is 7th September today. So, आज आपका बर्थडे है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आज हम इस वेदर को मतलब मद्देनजर रखते हुए ट्रेंड मेकर्स में फूलों वाले गाने लेके आ रहे हैं. फूल वाले गाने नहीं, फूलों वाले गाने.
2: क्या फर्क है दोनों में?
3: अरे फूल इज फूल, एफ डबल ओ एल.
2: ओ अच्छा. ओ
3: या फूल इज पी एच. या
2: मैं वो फूल को भी फूल ही बोलता हूँ.
3: या सही है.
2: या फूल, लेकिन फूल बोलते हैं ना.
3: या मैंने बाय द वे धमाल 4 देखी.
2: क्या बात कर रहे हो?
3: नेटफ्लिक्स पे.
2: इतने वेल्ले हो आप.
3: नहीं, आई जस्ट वांटेड टू वॉच समथिंग एंटरटेनिंग.
2: तो वाज इट एंटरटेनिंग? दो
3: मैंने रिव्यू शेयर किया था लास्ट आवर में. वैसे इट्स लाइक कि धमाल को प्रोटीन पाउडर पिला दिया.
2: ओके.
3: क्योंकि वीएफएक्स है ना इसमें.
2: ओ, इसमें वीएफएक्स डाला है.
3: या
2: तो धमाल ऑन स्टेरॉइड्स.
3: या काइंड ऑफ, लेकिन स्टोरी लाइन खो दी यार उन्होंने.
2: अच्छा,
3: कुछ भी कर रहे हैं. मतलब खजाना वही सेम है, खजाना ढूंढना है, यू नो, सेम कॉन्सेप्ट. बट देन एक स्टोरी होती थी, एक क्यूरियोसिटी होती थी वहां पे पहुंचना, अब कैसे मिलेगा खजाना. तो मतलब वो मजा नहीं आया
2: यार. एक बहुत ही बढ़िया मूवी है. एंड ऑनेस्टली आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई थॉट दैट इट वॉज एक्चुअली सपोज टू बी अ सीरीज. बट वो लोग के पास बजट नहीं था शायद से, अप्रूवल नहीं मिला, तो वो लोग ने उसकी मूवी बना दी. बट दिस has got potential of being a series. I honestly really liked it. It's on Amazon Prime. It's called Babita Singh Reporting.
3: Babita Singh Reporting. What is it about?
2: So it's about this a cop hai.
3: Babita Singh.
2: Babita Singh. She's a cop. But she is basically suspended. और वो अपने होम टाउन जा रही है या फिर अपने दूसरे टाउन पे जा रही है, और वहाँ पे उसको अपने एक दोस्त मिलता है, बहुत पुराना दोस्त. एंड देन इट्स समवेयर अराउंड दैट, लाइक यू नो, शी इज सॉल्विंग अ मिस्ट्री एज शी वाज सस्पेंडेड. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट यार, इट्स जस्ट अबाउट सो मेनी अदर सोसाइटल फैक्टर्स.
3: ओके.
2: Things that women have to go through. Like it's a very beautiful watch.
3: Okay.
2: And Babita Singh ka jo role unhone play kiya hai, bahut hi badhiya role play kiya hai yaar. And this is actually written by Amita Vyas.
3: Okay, Amita Vyas ki likhi hui hai.
2: Ji, but it's a very nice watch. I think you should watch it. Everyone should watch it.
3: So Babita Singh Reporting, it's on Amazon. अगर आपने भी देखी है तो आप भी अपना रिव्यू यहाँ पे जरूर शेयर करो.
2: ये आप रिव्यू शेयर कर सकते हो यहाँ पे. And it could be कि you may not agree with my review, but मुझे लगता है कि वो सीरीज मटेरियल था.
3: ओके.
2: मूवी वो लोग ने कुछ ज्यादा ही जल्दी, मतलब वो एंड में दिख रहा है कि अभी उसको खत्म कर रहे हैं. It's not the end.
3: मतलब extended version हो सकता था अगर वो उसको series आराम से बनाते 20 या 25 मिनट के episode.
2: If they would have released this as a pilot episode and then got other episodes, like there's so much content out there that can be, like there's एक ऐसा होता है ना कि movie देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, ये ऐसा नहीं end है, ये तो बहुत सारी चीजें unresolved है.
3: Yeah.
2: वैसा फील आता है वो मूवी को देखकर.
3: वाओ, वेल दैट रिमाइंड्स मी समय रैना एपिसोड वरुण धवन. आई रियली लाइक वरुण धवन जिस वजह से वो अपने ऊपर जोक्स लेता है. इवन तन्मय रिएक्ट्स के में भी जब वो आता है तो उसके ऊपर जोक्स वैसे ही वाले ही होते हैं जो सिमिलर जोक्स है इसमें. बट आई थिंक इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग एपिसोड.
2: या क्वाइट एन एंटरटेनिंग एपिसोड. अभी नया दूसरा एक और एपिसोड भी आ गया सैंडी.
3: वो नहीं मैंने देखा.
2: मैंने भी नहीं देखा अब तक. बढ़िया. एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ. अभी के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट.
1: लेट्स गो
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपर.

0: 5:02, you are listening to The Drive Show with Sandy and Ruzbe. Power Drive at 5, mein aapka swagat hai. Hi Sandy.
1: Hi Ruzbe, a very very good evening to you. Tumhare sath kabhi aisa hota hai ki tum kisi ko kaam dete ho and then...
0: Woh ulta mere pe aa jata hai.
1: उल्टा तुम्हारे पे आ जाता है या फिर यू आर लाइक कि यार वो नहीं हुआ है जो मैं चाहता था तो इसलिए मैं खुद ही ये सारा काम कर लेता हूँ.
0: नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ. मैं अगर वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है तो मैं वो कन्वे करता हूँ और मैं उसमें चेंजेस मांगता हूँ. आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है?
1: हाँ हाँ, लेकिन तो कितनी सुनती हूँ मैं तुम्हारी.
0: बट वैसे ही होता है ना, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ना फिर वो काम. हाँ ठीक है, चलो जो है वो ठीक है. लेकिन मैं उसमें वो कैटेगरी में नहीं हूँ जहाँ पे मैं खुद से ही वो फिर काम करूंगा.
1: अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ है तो
0: मैं बोलूंगा ठीक है जो है वो. मतलब मेरे को आपका अलग है ना, आपका अगर वो आपके हिसाब से नहीं हुआ तो यू विल गो बैक एंड
1: डू इट. आई विल गो बैक एंड डू इट.
0: मैं वो नहीं है, मेरा नहीं हुआ, पर जो है वो हुआ है. क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी
1: 100% वो है ना कैपेबिलिटी
0: होती है.
1: सो मैं इसलिए पूछ रही थी बिकॉज एक आर्टिकल आया है अबाउट अ न्यूयॉर्क मैन. सो ही बिकेम इन फेमस जैसे कहते हैं फॉर इम्पर्सनेटिंग अ ट्रांजिट वर्कर्स एंड टेकिंग बसेस एंड ट्रेन्स. सो उसका नाम डेरियस है. डेरियस क्या करता है? सो उसको इंटेंस फैसिनेशन है न्यूयॉर्क के पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को लेके. फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही इज़ वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट. उसे सारे के सारे रूट ना मेमोराइज करके रखे हैं वहाँ के. He learned how trains worked. So became so familiar with the system ki at just 15 year old, when he was 15 year old, he managed to take control of a E train and drive it several stops through Manhattan.
0: Usne wo kiya,
1: khud hi kiya, khud hi control karke usne.
0: Achha.
1: Wo sara kiya. But the thing is, he sirf shuruaat thi. Over the time, he was arrested 32 times for transit related incidents. Usko tha ki ye log sahi se nahi chala rahe hain, काम नहीं कर रहे हैं, मैं जाके ये करता हूँ सही रूट से, कैसे जाना है, कितना स्टॉप होना चाहिए, दिस शुड बी द प्रॉपर वे इट शुड एग्जीक्यूट.
0: नाइस यार.
1: और 32 टाइम्स वो अरेस्ट हुआ बिकॉज़ उसकी जॉब नहीं है ना ये.
0: लेकिन 15 साल की उम्र में थे, कैसे अरेस्ट हुआ वो?
1: वो नहीं मुझे पता कितना कैसे अरेस्ट हुआ, बट या
0: अंडर एज होता है ना.

0: यहाँ पे शेयर कीजिए 0800 हम पर। आर यू द वन,
1: इस पे से एक सवाल आता है मेरे को कि डू यू थिंक क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू डू द जॉब?
0: डिपेंड्स, मेरे को लगता है कुछ कुछ एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि बहुत ही टेक्निकल फील्ड्स में क्वालिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। टेक्निकल मैं कह रही हूँ कि अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करते हैं, स्टफ लाइक दैट आई एम सेइंग।
1: बट अगर किसी पे अगर कोई उड़ा पा रहा है रॉकेट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उड़ा पा रहा है रॉकेट और वो क्वालिफाइड नहीं है और वो सही काम कर रहा है, लेकिन तो इस क्वालिफिकेशन
0: यहाँ पे आके तो रियलाइज हुआ है, न्यूजीलैंड में आके तो रियलाइज हुआ है कि क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एनी काइंड ऑफ जॉब, ऐसा रियलाइजेशन आई है। बट या माइट
1: काफी लोग पढ़ते हैं, मतलब वो लर्न करते हैं और वो खुद ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं ना।
0: क्या होता है ना कि प्रोफेशन जो करियर आपको मिलता है बाद में आप उसके बारे में और पढ़ते हो।
1: सो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन नाउ हियर, क्या आप अभी जो जॉब कर रहे हो इज दैट रिलेटेड टू योर डिग्री दैट यू गॉट? सो यू गॉट अ डिग्री इन
0: आईटी या
1: एंड यू आर काइंड ऑफ इन रिलेटेड,
0: काफी चीजें होती है लेके
1: आईटी के रिलेटेड है, बट नॉट रियल आईटी जॉब नहीं कर रहे हो आप?
0: नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट वन।
1: हाय, हेलो,
2: हाय रुपेंद्र, हाउ आर यू टुडे?
1: वेरी गुड, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका?
2: गुड थैंक यू, माय सेल्फ हरमीत।
1: हाँ हरमीत बोलिए।
2: मैं शुरू सारा दिन आज इतना काम किया, मैं थक गई थी, मैं कहा चलो किसी से बात करती हूं।
1: क्या बात है यार, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, आई होप यू
0: डोंट, इसलिए तो आते हैं यहां पे,
1: आई होप यू डोंट रिग्रेट दिस।
2: No, I don't.
1: अच्छा, great.
2: I love listening to you guys, तो फिर बात करना तो कभी regret नहीं होगा ना।
1: क्या बात है अरमीत यार।
0: Nice.
1: तो बताइए आप,
2: टॉपिक बड़ा अच्छा है वैसे तो, बट आप खुद ही देखो ना, बिना एजुकेशन के कोई डॉक्टर फील्ड में चला जाए तो हो गया काम।
1: बट देखो अभी आप ये कह रहे हो, लेकिन
0: तो माना
1: नहीं, नहीं मैं ये मैं उसमें एक काउंटर देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं, ऐसे लाइक यू नो होम रेमेडीज होती है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल वो स्नेक बाइट को लेकर कोई एक लीफ को ऐसा क्रश करके वो डालो और क्योर होगा, लाइक आई एम नॉट सेइंग दे कैन रिप्लेस डॉक्टर्स, बट जो ने जिसने मेडिसिन नहीं पढ़ी है, सॉरी मैं बस कंप्लीट करता हूँ, जिसने मेडिसिन नहीं पढ़ी है वो भी हमें ट्रीट करते हैं काफी बार।
0: होम्योपैथिक वो अलग होती है,
1: होम्योपैथी नहीं बोला मैंने सैंडी, वो कंट्रोवर्सी में घुस जाओगे हम, बट जस्ट इन जनरल लाइक यू नो लाइक स्नेक बाइट मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें देयर सम पर्टिकुलर लीफ को क्रश करके उसका जूस अगर डाला तो वो क्योर करता है, यू नो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
2: वो ना टेम्पररी रिलीफ के लिए अच्छे हैं, काम आते भी हैं ऐसी चीजें, बट एट द एंड प्रोफेशनल की भी जरूरत है। बट आई वुड आल्सो से इन मेनी फील्ड्स, अगर कोई ऐसा टैलेंटेड इंसान है जिसके पास डिग्री नहीं है, बट इफ यू हैव फिगर्ड आउट दैट पर्सन, आई थिंक उस बंदे को, उस इंसान को ना थोड़ा सा पढ़ा दो या उसको वो डिग्री लेने में हेल्प कर दो, ताकि उसका टैलेंट वेस्ट भी ना हो, और यू नो दैट प्रोफेशनलिज्म आल्सो स्टेज देयर।
0: आई एग्री। अभी आपने उसके बारे में सुना बिट्टू तबाही के बारे में?
1: बिट्टू तबाही
2: बारे में,
0: बिट्टू तबाही जिसने तबाही मचा के रखी है, यू नो मैंने लास्ट आवर में एक्चुअली में शेयर किया रुजबे। सो बिट्टू तबाही पता कौन है? इज अ इंस्टा हैंडल 20-year-old लड़के का जिसका नाम है बिट्टू। उसने क्या करना, बिकॉज उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली वो बंदा है टीनेजर, उसने क्या करना शुरू किया कि जो रिवर्स पे गंदगी है, कूड़ा करकट वो सब है, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स लेना शुरू किया, बिफोर जो गंदगी है उसकी फोटो या एंड आफ्टर, उसको साफ करने के बाद आफ्टर फोटोज, मतलब लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया, मिलियंस ऑफ उसके फॉलोअर्स ये वो, बट ही डिडंट स्टॉप, ही डिडंट स्टॉप डूइंग हिज वर्क,
1: क्योंकि मिलियंस फॉलोअर्स आए ना।
0: हाँ, लेकिन उसको अपना काम करता रहा वो, ये नहीं कि अब ये आ गया तो मैं कुछ और करूँ, काम करता रहा। नो, वो भी नहीं किया उसने। डच एंटरप्रेन्योर है बॉयन सुलाइट, जिनका द ओशन क्लीन अप वो है बिजनेस, उन्होंने उसको जॉब ऑफर की है, नाउ यू विल हैव रिसोर्सेज एंड गेट पेड टू डू दिस।
1: वाओ यार,
0: या सो दैट 20-year-old गाय बिट्टू, इसीलिए बिट्टू तबाही है वो, जाके देखना उसको।
1: बिट्टू तबाही भी एम्प्लॉयमेंट केस में फंस गया। एनीवे, तो हरमीत आप क्विक लास्ट क्वेश्चन, तो आप करेंटली क्या जॉब करते हो और क्या आपके क्वालिफिकेशन के साथ मैच होता है आपका जॉब?
2: ओके, सो आई एम एन एडमिन एट द मोमेंट, ठीक है, और क्वालिफिकेशंस मेरी है बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में। business studies and England as well. So it's like kind of a mix. लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा relate हो जाता. But अगर मैं

0: कि मेरा ए प्लस बी स्क्वायर पड़ा हुआ आज तक मेरे को काम आया तो नो
1: नहीं नहीं बट क्वालिफिकेशन में आपका अभी आप एडमिन कर रहे हो और आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ पढ़ा है तो काइंड लिंक्ड है आपका मतलब काम. नाइस
2: सही है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: थैंक्स फॉर कॉलिंग. या थैंक यू.
2: यू टू. बाय बाय.
1: हाय आपका भी स्वागत है.
3: भाई कैसे हो?
1: बहुत ही बढ़िया. भाई कैसे हो आप?
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम है राम.
1: राम सिंह बताइए
2: जी
1: आपका क्वालिफिकेशन और जॉब मैच हो रहा है?
3: जो क्वालिफिकेशन और जॉब है वो दोनों मैच हो रही थी अब तक 7 साल तक. तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और एज अ मैकेनिकल टेक्नीशियन 7 ईयर काम किया.
1: अच्छा कहाँ पे?
3: यही हमारे ऑकलैंड में.
1: अच्छा ऑकलैंड में. ओके.
3: तो लेकिन वो मेरी जॉब रहती थी पहले 4 दिन तो 3 दिन मैं बिल्डर्स के साथ काम करता था.
2: ओके.
3: तो इक्वली मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस था. तो मैंने अभी 3 साल पहले अपनी मेंटेनेंस कंपनी ओपन करी
1: विदाउट क्वालिफिकेशन. नाइस. So basically what you're saying is that qualification से ज़्यादा सीखना आपको on the job मिला.
3: जी जी. क्योंकि मैंने भाई इतना try किया ना कि वो वाली job से मैं higher level same field में job ले लूँ लेकिन मौका ही नहीं मिला. I applied a lot.
1: That's right.
3: और फिर अभी मैंने जाके last year construction की study start करी वो ये साल नवंबर में खत्म होगी. एटलीस्ट मेरे पास क्वालिफिकेशन भी हो उसके रिलेटेड.
1: राइट.
2: ओके
1: भाई बढ़िया. थैंक्स फॉर शेयरिंग यार राम सिंह.
2: थैंक्स फॉर शेयरिंग राम सिंह.
1: ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. एक मैसेज आया है हमें यहाँ पे. 100% मैचिंग वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल. पार्थ ने यहाँ पे भेजा है. मोहितेश ने बोला आई स्टडी ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउएवर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एविएशन. ओके बट एविएशन में फिर भी. नाइस. ऑलराइट आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो 5599 पे. ड्राइव कीवर्ड के साथ आप मैसेज करके यहाँ पे हमें भेजिए.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Switch to AMI car insurance.
7: Clouding overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, from Town to Constellation Drive, 26 minutes to Silverdale, 45. It's heavy heading north from Oniwai Road to Northcote Road. The northwest into Massey, 25 minutes. Portlink is very heavy to Spaghetti Junction from Parnell. On the southern, Town to Manukau, 27 minutes to Drury, 44. It's heavy northbound from Mount Wellington through to Green Lane.
6: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
8: White separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki. All together Auckland.
9: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
10: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
9: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
11: Great news! Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
12: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel Hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
13: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
14: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
17: Gundi Khadda. सीधा अंदर आऊं
18: मैं लाऊं अपना ए गेम।
16: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: कॉकटेल 2 का ये गाना आप सुन रहे थे बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में माशू का। वैसे आज है मंडे और मंडे का दिन मतलब हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेगमेंट जहाँ पे आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो 5599 पे या फिर कॉल भी कर सकते हो 0800-004-866 इस नंबर पे। सेगमेंट का नाम है ये देसी और नॉट सो देसी। वेल देसी और नॉट सो देसी, इसमें हम आपके साथ एक बिहेवियर शेयर करते हैं,
1: एक हैबिट या बिहेवियर आपके साथ हम शेयर करते हैं कि और आपको बताना होता है कि ये जो हैबिट या बिहेवियर है ये देसी हाउसहोल्ड में होता है या फिर नॉन देसी में या दोनों में।
0: तो आज का मेरा जो आज का है वो है कि जब आप बाहर घूमने जा रहे हो ठीक है।
1: ओ हाँ सर, तुम घूम के आए ना अभी रिज्यूमे तो भूल ही गई।
0: तो जब आप बाहर घूमने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, डू यू Like to get takeaway or do you stay in and cook in? Like,
1: so is it desi behavior? तो कहने का मतलब है कि अगर cooking करके साथ में लेके जाते हो तो वो desi behavior है
0: या cooking करके साथ में या फिर वहाँ पे cook कर रहे हो साथ में, is do you think that's a desi behavior or is it not so desi behavior?
1: वहाँ पे साथ में cook करना, oh interesting.
0: Interesting. I think it's not so desi behavior. Where you go and then you like, you know, communal kitchen kind of, you like you cook together and you know you or do you dine outside?
1: Mujhe lagta hai dine outside is not so desi, is non desi behavior.
0: Is dine outside
1: okay. And साथ में सब कुकिंग का लेके जाना या पार्शियल कुकिंग लेके जाना या वहां पे कुक करना इज देसी बिहेवियर।
0: यू आर सेइंग
1: या दिस इज व्हाट आई थिंक जो जितना मैंने देखा है। But it might be different as well.
0: I feel honestly ki sab kuch lekar jana is it sounds a desi behavior, but it becomes very difficult for desis to take so many ingredients and cook.
1: Ingredients to chodo, meko lagta hai then aadha time usi mein nikal jata hai. You know, like हॉलीडे का मतलब होता है आई नो वी ऑल डू दिस बट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हॉलीडे का मतलब होता है हॉलीडे मीन्स की ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग जस्ट गो एंड चिल। बट क्या होता है कि हम लेके जाते हैं सारा सामान, आधा टाइम तो वो किचन में घसट पसट वहाँ पे होगी कि ये करना है, ये याद रखना है, ये करना है, उसने ये खाना है, उसने वो खाना है, मतलब यू नो आधा टाइम यही सब चलता रहेगा।
0: बट वो वैसे भी चलता रहता है ना, अभी अगर आपको कहीं बाहर दोस्तों के साथ अब जब जाते हो ठीक है, अगर आपने पहले तो रेस्टोरेंट फाइनल करने को बहुत टाइम लग जाता है, अगर रेस्टोरेंट फाइनल हो गया तो मेन्यू फाइनल करने को बहुत टाइम लग जाता है, मेन्यू भी फाइनल हो गया फिर उसके बाद ऑर्डर देने को बहुत टाइम लग जाता है।
1: मेरे को इतना नहीं लगता है और मैं जिनके साथ जाती हूँ उनको इतना नहीं लगता है।
0: अच्छा,
1: लाइक वेरी हाँ पता होता है कि उसने क्या ऑर्डर करना है, मैंने क्या ऑर्डर करना है, तो
0: नाइस यार दैट्स कूल।
1: मुझे पता है मुझे क्या क्या चीज़ एलर्जी है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट पर्सन को पता है उसको क्या खाना है।
0: आप बताइए आपका क्या सीन होता है 0800-004-866 व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स ग्रुप में जब जाते हो, व्हाट डू यू प्रेफर टू डाइन आउट, यू प्रेफर टू ब्रिंग अ टेक अवे और यू प्रेफर टू कुक टुगेदर, व्हाट इज योर प्रेफरेंस?
1: आप क्या प्रेफर करते हैं? यहां पे मुझे लगता है टेक अवे आल्सो साउंड्स गुड बिकॉज जब रास्ते से आप टेक अवे कर लेते हो सब कुछ एंड यू सेव टाइम एज वेल ठीक है। अगर डाइन आउट भी नहीं करना बिकॉज आप कहीं पे जा रहे हो, यू ऑलरेडी पेड रेंट या वट एवर फॉर दैट प्लेस टू स्टे राइट, तो आप वहाँ पे बैठ के इंजॉय करना चाहते हो।
0: यू वांट द अदर वर्ड ऑफ फॉर एंजॉय इज यू वांट टू वसूल इट।
1: वसूल इट एग्जैक्टली। सो मे बी डू द टेक अवेज लाइक पिज्जा वो सब चीजें लेके जाने, मुझे लगता है कि चिप्स हो गया, ये सब चीजें हो गया साथ में, यू नो
0: खाने पीने
1: चकना टाइप स्नैक्स टाइप ये सब ले जाओ एंड जस्ट चिल ओवर देयर। मेरे को लगता है टेकअवे मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन रहती है।
0: आपको लगता है टेकअवे बेस्ट ऑप्शन है? अच्छा, आपको क्या लगता है? 0800-004-866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर हियर। एंड
1: व्हाट अबाउट यू रिज़्बे, तुम्हें क्या लगता है?
0: मुझे लगता है वहाँ पे साथ में कुक करके साथ में खाना इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज मोर ऑफ नॉट जस्ट कुकिंग बट इट्स मोर ऑफ बॉन्डिंग। यू स्पेंड टाइम टूगेदर, यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स, थोड़ा बहुत आइडिया आता है तुम्हें, कॉन्वर्सेशन होती है वहाँ पे, हंसना होता है कि अरे तू ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, यू नो लाइक देयर सो मेनी
1: वो चीज में,
0: या देयर सो मेनी कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स इन देयर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई ऑल्सो फील इट्स यू गेट टू ईट हेल्दी फूड एंड यू ऑलवेज आर इकोनॉमिकल एज वेल, क्योंकि बाहर आप कुछ भी लेने जाओ यार इट्स ऐसे खाने के वजह से संतुष्टि नहीं मिलती काफी बार, ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या है, मजा ही नहीं आया। सो दैट इज द अदर।
1: सो व्हाट इज योर टेक, आपका क्या टेक है, आप क्या करते हैं जब आप जाते हैं What do you do?
0: मैसेज आया है, एक मिनट मैसेज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे बात कर लेते हैं। हाय
2: Hi, Rusvi and Sandy. Arshdeep here. How are you guys?
1: Good, Arshdeep.
0: How are you, Arsh?
2: Very, very good. मुझे भी Rusvi का पॉइंट अच्छा लगा, और जैसे हम फ्रेंड्स बोलते रहते हैं कुछ कि ये मेरी स्पेशलिटी है कि मुझे मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर वो हमारा चांस होता है कि वो कुकिंग खाना तभी दैट टाइम
0: गरम गरम खाने का मौका मिल रहा है ना, विदाउट द नीड ऑफ इनवाइटिंग एनीवन ओवर।
1: बट देन आपको ऐसा मन नहीं करता कि आप गए हो, जो आप घर पे काम कर रहे हो वही सब वहाँ पे भी कर रहे हो? Don't you think it's a holiday?
0: वही तो मैं आपको क्या लगता है मेरा हॉलीडे था क्या?
2: मजा आता है क्योंकि बातें कर करके, जैसे शादी में भी जाते या पार्टी में, आई मीन कजन्स के साथ भी जाते, तो वो काम तभी लगता नहीं है काम है, क्योंकि आप हॉलीडे रिलैक्स मोड में रहते हो और सभी थोड़े डिवाइड हो जाते हैं।
0: Yeah, and there are more hands to help out, ना? There are more hands to help out also. Everyone's taking care of something or the other. So वो एक इजी हो जाता है काफी बार।
2: और वो एक्टिविटी वही वो मेमोरीज बन जाती है कि तूने ये किया था, ये फनी हो गया था, वो हुआ था, ऐसा हो गया तो।
1: Yeah, you get yeah memories बनती है।
0: Yeah, awesome. Thank you so much, Arshdeep.
1: Thank you, Arshdeep.
0: Sorry.
2: Sandy, sorry. One thing for ending. Big Boss is back, baby.
1: Huh?
0: Big Boss is back, baby. ऐसा बोल रही है Arshdeep. Yeah.
2: क्या? I know last year you watched it. I don't know if you're doing it this year or not, but
0: ये साल अमल नहीं है ना उसमें, मेरे को नहीं लगता फॉलो करी।
1: ऐसा नहीं
0: करने वाली फॉलो।
2: सलमान के लिए देखेंगे, सलमान तो है।
1: Exactly.
0: That is right.
1: Yeah, that's right. And it's 20th year. मैंने थोड़ा सा देखा actually वे।
0: चालू भी हो गया क्या?
1: Yeah, चालू हो गया ना।
0: वो चालू हो गया।
1: Yeah, that's what she's saying ना।
0: अच्छा, good good. Enjoy enjoy. मैं हो गया चालू मतलब।
2: चाहिए ना चुगली करने के लिए कि ये देखा वो देखा।
1: Yeah, अभी मैंने थोड़ा सा शुरू किया लेकिन मैंने देखा नहीं। Just
0: now if you feel that the quality of the show is going to deteriorate or you feel that अरे ये deteriorate हो गया show इनका, तो समझ जाना कि बिग बॉस देखना शुरू हो गया है।
2: ये मिड में छोड़ देगी, पता चल जाए क्यों।
1: या
2: यू नो व्हाट इज फॉर द प्लॉट, प्लॉट इज नॉट देयर।
0: या एनीवे थैंक्स अर्श, थैंक्स फॉर योर कॉल।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Live Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
1: Choose short stay airport parking.
2: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10. On the northern from town to Constellation Drive, 26 minutes to Silverdale, 45. It's heavy heading north from Oniwa Road to Northcote Road. The northwest into Massey, 25 minutes. Portlink is very heavy to Spaghetti Junction from Parnell. On the southern, town to Manukau, 27 minutes to Drury, 44. It's heavy northbound from Mount Wellington through to Green Lane.
1: Some airport moments are worth parking for. Choose P180 short stay airport parking.
3: Kabhi kabhi low feel karna normal hai. Bilkul mausam ki tarah. Kabhi dhoop, kabhi badal. Apni feelings pe dhyan dijiye. Reach in and check how you're doing. Reach out aur kisi trusted professional se baat kijiye. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
7: सोना संसार पापा टोटियो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
8: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
7: सोना संसार पापा टोटियो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटियो
9: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटियो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Go.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
12: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe and straight from the heart mein aapke liye ek gana lekar aayenge abhi thodi der mein lekin usse pehle aapko bata de yahan pe bahut sari cheeze ho rahi hai dekho election is around the corner thode hi mehne if you see exactly we are 2 months away now
13: oh yeah 7th September then 7th November 8th November is actually election day
12: so yeah 2 months away from the D-Day so yeah there's kafi sari wahan pe changes ho rahi hai kafi sari policies bahar aa rahi hai and naya poll bhi hua hai labor and national collapse to under 30% naye poll mein and ye kafi stressful time ho sakta hai for I think both the parties and also for New Zealand in general kyunki jo main do major parties hai unka poll kafi low aa raha hai
13: oh my god
12: So yeah, we don't know.
13: क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार confusion बहुत ज़्यादा है. इस बार कुछ ऐसा predictable नहीं है कि ये party जीतने वाली है.
12: सब गोल-गोल घूम रहे हैं ना.
13: Yeah. And नई-नई policies लेके आ रहे हैं. हम ये करेंगे. ऐसा मतलब बहुत सारी announcements हो रही है. चाहे वो immigration की field है, चाहे वो education की है, tourism में भी everywhere.
12: जी सो काफ़ी पार्टीज का अभी स्टैंडिंग डाउन हो गया है बट इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बट हम आपको अर्ज करेंगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हैं ऑन डिफरेंट पार्टीज़ उनके क्या चार्टर्स है क्या पॉलिसीज़ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप वोट करने जाएं आपको एटलीस्ट पता हो कि आप किसको वोट कर रहे हैं
13: या वैसे ब्रेकफास्ट कैचअप में भी बात हुई है डॉक्टर परमजीत परमार की अबाउट द सेम थिंग फ्रॉम द एक्ट पार्टी अगर आपको फुल सुनना है आप टेक्स्ट कीजिए BF15555599 एंड अनफिल्टर्ड वैसे अनफिल्टर्ड में हमने इस बार बात की क्रिएटर के साथ अभी के साथ हमने बात की अभी हमारी और आपकी तरह इस कम्युनिटी का हिस्सा है जो वो यहाँ पर आए उन्होंने कैसे स्ट्रगल की एक इमिग्रेंट की कहानी फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू गाइडिंग एवरीवन, ये उन्होंने वहाँ पे शेयर किया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इवन कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में भी कुछ करना चाहते हैं, हाउ ही स्टार्टेड, उन्होंने अपनी जर्नी भी वहाँ पे शेयर की. सो रियलिटीज ऑफ मूविंग टू अ न्यू कंट्री, इसके बारे में बातें हुई है हमारी अभी के साथ.
12: इफ यू नो समवन हु इज अ न्यू माइग्रेंट, लेटेस्ट माइग्रेंट, आई थिंक यू कुड लिसन टू दैट एपिसोड, क्योंकि उस एपिसोड में हमने ऐसी सारी बातें की है जो आप सुनेंगे और बोलेंगे यार ठीक है, मतलब एवरीवन हैज गॉन थ्रू दैट, इट्स नॉट जस्ट अस. एंड इट विल गिव यू सम मोटिवेशन, इट विल गिव यू सम इंस्पिरेशन कि यार चल यार भाई हम भी कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो फोड़ ही देंगे यहाँ पे. आई थिंक दैट इज वॉट दैट पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट. ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे इफ यू वांट टू लिसन टू द फुल एपिसोड. बट या ट्रेंड मेकर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं. हमारा ये एक नया लेटेस्ट म्यूजिक स्टेशन है जहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग थीम्स लेकर आते हैं, और उसको सुनने के लिए आप TM लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यू कैन गो ऑन रोवा एंड लिसन टू इट.
13: या सो ज़रूर सुनेगा. और ट्रेंड मेकर्स में और आगे जाके आप क्या सुनने वाले हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये भी आप हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. बट फॉर नाउ TM एज इन ट्रेंड मेकर्स अगर आप लेके भेजते हैं 5599 पर, तो आपको एक अच्छी सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी.
12: और आज हम लेकर आने वाले आपके लिए एक और ऐसी थीम. क्या है आज का थीम, डिसाइड हुआ है?
13: आज स्प्रिंग ना.
12: Oh, spring.
13: फूलों के बारे में बात होगी.
12: That's right. So, yeah.
13: Playlist से वैसे याद आया, recently अभी नई एल्बम आई है ना दिलजीत दोसांझ की, but how the album was released is quite interesting. मैं आर्टिस्ट लोगों का भी देख रही हूँ, चाहे वो समय रायना, कॉमेडियंस के बारे में बात होती है, चाहे सिंगर्स के बारे में बात होती है, ये अब ना ऑडियंस के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को रिलीज करते हैं, बात करते हैं, वैसी चीज़ें करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. लाइक समय रैना इज डूइंग इट, दलजीत इज डूइंग इट, करण औजला इज डूइंग इट, एंड मैनी अदर्स आर डूइंग एज वेल. जैसे लाइव हुआ दलजीत, एंड ही सेड कि इसके गानों की एक प्लेलिस्ट है, एल्बम नहीं है, प्लेलिस्ट है जो वो लॉन्च करना चाहते हैं. सारी फोटोज दिखाई कि मैं कवर फोटो कौन सी लगाऊँ, जिसके ऊपर वोटिंग आ गई वो कवर फोटो मेरी. लाइव उसी समय कवर फोटो सिलेक्ट हो रही है, सिलेक्ट हुई, उसने बोला ये लगाओ, अभी लगा दी, उसकी टीम लगा रही है. फिर वो कह रहा है अच्छा एल्बम का नाम क्या रखूँ मैं. अच्छा. सबसे नाम ले रहा है, एल्बम का नाम क्या रखना चाहिए. और बीच में ऐसा कंट्रोवर्सी का होता है ना थोड़ा कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, तो वो बार बार बोल रही है अब इसके बारे में क्या बोला है, मैं आर्टिस्ट ब्रो.
12: हाँ,
13: हाँ. बस यही नाम रख लेता हूँ, मेरे को लगता है यही सही है. एल्बम का नाम है आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो. या सो इस वे से सिलेक्ट हुआ. उसी समय लॉन्च हुआ स्पॉटिफाई पे एवरीवेयर, लाइव करते करते लॉन्च हो रही है एल्बम, एंड द फर्स्ट वन वी वर ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड में सबसे पहले लॉन्च हुई.
12: ओह वाओ यार. बट मेरे को एक चीज इस सब में रियलाइज हुई कि सिर्फ हम ही कामचोर नहीं है,
13: सब है,
12: अब सब कर रहे हैं ये, तो आप सब
13: हम सब यही कर रहे हैं.
12: आप सब हमको मत ब्लेम करो कि ये क्या है, तुम्हारा काम है, तुम ये नहीं है.
13: इधर ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, टॉपिक क्या होना चाहिए, वो सब चीजें सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं,
12: हम नहीं कर रहे हैं, ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट भी कर रहे हैं. But I actually feel quite good now.
13: Yeah.
12: That, you know, it's
13: standard. It's trending.
12: And we are the pioneers of that. क्योंकि हम आते ना हमेशा बोलते हैं कि आज तुमको किस टॉपिक पे बात करनी है, तुम बोलो. वह ऐसे ही होना चाहिए ना. You should basically be in control. And yeah. That's what we are expecting from our government also, that we should be in control of what policies we want in place. And that is the whole point of democracy, right? Anyway,
13: and
12: उसके
13: elections.
12: लिए policies बढ़ने पड़ेंगे उसके लिए.
14: Let's go.
11: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern, from Town to Constellation Drive, 23 minutes to Silverdale, 39. It's heading northbound from the Harbour Bridge to Northcote Road. To Massey, 21 minutes to Manukau, 25. Drury, 36. It's just heading northbound from Mount Wellington to Green Lane. Southwestern's a bit slow, northbound around Mangere Bridge. Town to the airport, 28 minutes.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Hey, Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
5: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
4: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
6: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. So, jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
9: Showerdome.co.nz.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Handling capacity at the country's largest port is set to nearly double. A major expansion project at the Port of Tauranga has been granted fast-track approval. The port says the development will improve the resilience of the international supply chain and lower costs for importers and exporters. Business New Zealand has laid out the case for spending more on medicines. Its latest Burl report highlights the economic returns from doing so through a healthier and more productive workforce. Chief Executive Catherine Rich hopes decision makers will take note.
11: This is not a criticism of Pharmac. Pharmac is genuinely world class, but it can't currently fund the drugs that are available offshore and would benefit New Zealand families.
10: Safety messages are being reiterated as a 3-metre-long leopard seal makes waves in Lower Hutt. The beach guest has had some close calls since Friday night with reports of dogs approaching. DOC has also seen footage of someone throwing a fish to the creature. It says to stay at least 20 metres away and to never go between the seal and the sea. The New Zealand flag will be flown at half-mast on all government and public buildings on Wednesday to mark the funeral of Norway's King Harald V. He passed away late last month at the age of 89. To sport, the Warriors have their wish with a home NRL playoff game against the Dolphins this weekend at Mount Smart. There is no guarantee that any further playoff games won't be played at Eden Park, with the NRL keen to maximise the extra revenue. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And star Wallabies playmaker Carter Gordon is no chance to play the Bledisloe Cup after suffering a broken leg against Argentina. The 25-year-old is due to get married later this week.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
13: सूचित किया जाता है Mount Wellington के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शलेन तथा राजन रोलन कृषि शिवलेन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति नसोल 6 miles नसीनो फीजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं. माउंट वेलिंगटन के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शालीन तथा राजन रॉयलन कृषि शिवलेन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति नसोल 9 माइल्स नसीनो फीजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं। अरुणा देवी गोसाई के पति नवाटू बा फीजी के भूतपूर्व निवासी पापाटोटो के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। दर्शन के लिए आप वेनसडे 9 सितंबर को 7 से 8 के बीच शाम को एंस फ्यूनरल होम जा सकते हैं, जिसके बाद शव को थर्सडे 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं। अरुणा देवी गोसाई के पति नवाटू बा फीजी के भूतपूर्व निवासी पापाटोटो के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। दर्शन के लिए आप वेनसडे 9 सितंबर को 7 बजे से 8 बजे के बीच शाम में एंस फ्यूनरल होम जा सकते हैं, जिसके बाद शव को थर्सडे 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है उर्मिला देवी के पति वेसारी लामी फीजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे 11 सितंबर को दोपहर 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-180-2252 पर कॉल कर सकते हैं। उर्मिला देवी के पति वेसारी लामी फीजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे 11 सितंबर को 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-180-2252 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
13: छह बज चुके हैं और ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो गया है। वेलकम टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे। हाय सैंडी।
15: हाय रुज़बे, गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
13: गुड इवनिंग, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग?
15: आई एम डूइंग गुड एज वेल। वैसे आज हम इस आवर में थोड़े ऐसे गाने लेके आने वाले हैं जिसमें फ्लावर्स का, फूलों का जिक्र हुआ है।
13: फूलों का, तारों का।
15: अगर आपको ऐसा गाना सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज करो 5599 इज अ नंबर, हम ट्राई कर रहे हैं।

0: गेंदा फूल, मतलब इज अ डिफरेंट, इट्स नॉट अ रोमांटिक गाना. गेंदा फूल इज अ न्यू वन,
1: बट ससुराल गेंदा फूल,
0: हाँ, इट्स लाइक इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग,
1: डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में.
0: रोमांस को देखा जाए तो सिर्फ ओल्ड मूवीज में है फूलों को लेके, मतलब फ्लावर्स खत्म ही हो गए.
1: मतलब फ्लावर इज बिकॉज मेरे को लग रहा है वो अदर साइड ऑफ ओपिनियन आने लग गए ना कि फूल तो मुरझा जाते हैं ऐसे. हाँ, ऐसा व्यू आने लग गया ना. तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क टुडे. डू यू थिंक ऑन अ डेट फूल इज अ मस्ट इवन टुडे?
0: मस्ट
1: पहले ऐसा होता था ना कि भाई जो भी वैलेंटाइन डे या फिर कोई भी ऐसा डे डेट होता है तो फ्लावर इज समथिंग दैट यू ऑलवेज गिव, you know, as a like as a
0: token of love. मेरे को लगता था कि वो एक जेस्चर होता था जो आजकल मिसिंग है. This is what I think.
1: Like, because not everyone likes flowers. Some are allergic to flowers.
0: Exactly. That's a different take.
1: And but plus, the most important part, flowers are very expensive in New Zealand.
0: Yeah. Flowers been always like this na, agar koi bhi rose khareed raha hai jo kuch bhi khareed raha hai to rose to pehle bhi kafi expensive tha.
1: Are yaar, India mein fir bhi bahut saste mein mil jata tha yaar. Ha, India mein mereko, main jo time pe tha 5 rupaye ka ek rose hota tha, 5
0: oh, wow.
1: Fir 10 shayad se max. But yahan pe bahut mehenga hai yaar comparison mein.
0: Lekin yahan pe maine jo trend dekha hai flowers ko leke, बहुत भेजे जाते हैं. अगर फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट रोमांस के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड में मैंने देखा है कि फ्लावर्स भेजना वैसे भी माना जाता है. अगर किसी ने कुछ अचीव किया है फ्लावर्स भेजते हैं,
1: या कोई बीमार हॉस्पिटल में है तो फ्लावर्स भेजते हैं
0: हॉस्पिटल में, या तो डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे भेजे जाते हैं काफी.
1: डू यू स्टिल बिलीव दैट फ्लावर इज अ मस्ट फॉर यू? अगर आपको कोई यू नो प्यार का इजहार करना चाह रहा है, या आपको कोई डेट के लिए इनवाइट कर रहा है, पूछ रहा है, या ऐसी कुछ यू नो रोमांटिक जेस्चर, डू यू थिंक रोमांटिक जेस्चर्स में फ्लावर्स इज अ मस्ट? हाँ या ना? 5599 पे आप ड्राइव कीवर्ड के साथ मैसेज कीजिए.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. और आज फूलों के अराउंड सारे गाने आपको हम सुना रहे हैं और उसके अराउंड थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे हैं. Sandy, what has been your favorite flower?
1: My favorite flower, वैसे rose ही अच्छा लगता है मेरे को. But
0: कौन सा color का rose?
1: I like येलो रोज भी, वाइट रोज भी. मैं अभी फादर्स डे पे लेके आई हूँ, मैं अनदर रोज लेके आई हूँ. मैं
0: वो प्लांट लेकर आया,
1: प्लांट लेके आई हूँ मैं. या
0: ओह, सो यू गोना पुट अ रोज प्लांट?
1: या, मैं लगा लिया. सो रोज प्लांट एक और लेके आई हूँ. सो लाइक आई डू दिस नाउ लाइक सिंस लास्ट फादर्स डे, बिकॉज डैड को बहुत पसंद थे.
0: ओह, सो एवरी फादर्स डे यू गोना प्लांट अ रोज?
1: या या.
0: ओह नाइस.
1: सो पहले मैं व्हाइट फ्लावर, व्हाइट लेके आई थी, और इस बार मैं वो लेके आई हूँ. इट्स ऑरेंजिश, बिट ऑफ ऑरेंजिश कलर.
0: No.
1: Not exactly orange. So I already have red, I have yellow, I have white. Now I have this orangish.
0: Oh, very nice, yaar.
1: Yeah.
0: अच्छा सैंडी, मेरे को हर एक की कली बाद में देना आप.
1: Actually मैं, तुम कली क्या, तुम्हें वो अगर तुम्हें रोज चाहिए ना अपने घर पे.
0: हाँ, आपने बोला था ना कि
1: स्टेम, हाँ सिर्फ स्टेम बहुत
0: होती है.
1: नहीं हुआ
0: था, वो सड़ गया, वो एक चला गया वो.
1: तो वो सही से लगानी नहीं आई. तो स्टेम जो है ना, अगर तुम लगा लेते हो, रोज जो है ये स्टेम से ही ग्रो होता है.
0: अच्छा.
1: या इट कैन ग्रो इजिली फ्रॉम अ स्टेम.
0: Okay, so let's see. Hopefully,
1: and have you guys tried this? मैंने ये बहुत try किया है, लेकिन अभी तो मेरा जो plant वाला sector है थोड़ा अलग हो चुका है, तो इसलिए काफी plant वहाँ पे नहीं है. But पहले I used to do this a lot. Stems different different जगह पे लगाना, रोज आते थे उसपे. Yeah, और एक रोज तो ऐसा फैल गया था पूरा, red color वाला पूरा फैल गया था.
0: यार मुझे रोज इतने पसंद है, पता नहीं यार, मेरे को आप एक स्टेम एक बार करके देना.
1: स्टेम, हाँ मैं स्टेम लेके आऊंगी एंड देन वो प्लांट करना.
0: ऑलराइट, आप भी यहाँ पे मैसेज करके बताइए, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर. 5599 इज द नंबर, मैसेज कीजिए.

0: Trend Makers.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
4: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
8: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
11: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
10: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
12: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
14: Of Bollywood.
15: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
16: Are you ready to go home?
17: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
18: आप सुन रहे हैं हम playing Bollywood's biggest hits. Trend makers में आज हम आपको फूल के अराउंड सॉन्ग्स सुना रहे हैं.
19: Yeah.
18: And काफी रिविजिट हो रहे हैं कुछ गाने
19: Yes, and मैंने आर्टिकल पढ़ा चैट जीपीटी आजकल काफी लोगों को इन अ रियल टर्म टू फाइंड समथिंग या फाइंड समवन भी हेल्प कर रही है रिसेंटली मैंने देखा था कि किसी ने अपनी जुत्ती ढूंढी मतलब एक चप्पल उसकी गुम गई थी एक और उसने ढूंढी वो चप्पल चैट जीपीटी के जरिए
18: कैसे कैसे
19: पता नहीं उसने फोटो खींची समथिंग और उसके लोकेशन सेटअप किया कुछ प्रॉम्प्ट उसने ऐसे दिए कि उसको दूसरी चप्पल अपनी मिल गई चैट जीपीटी के थ्रू
18: दिस इज रियली कूल यार मेरे को एक्चुअली
19: इट्स अ प्रॉम्प्टिंग गेम
18: मुझे एक्चुअली एक चीज जो मेरी वाइफ की घूम गई है मेरे को वो ढूंढनी है अगर वो मैं ढूंढूंगा
19: तो उसके फोटो डालो ना
18: तो वही अभी मेरे को वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी मैं उसको अगर
19: वो आर्टिकल देखना पड़ेगा कि उसने क्या किया
18: प्लीज मेरे को भेजो यार बिकॉज मेरे को ढूंढनी उसके लिए नहीं क्योंकि लाइक क्योंकि उसकी घूम गई है उसके लिए नहीं बट उसने मेरे को बोला अगर मैंने ढूंढ ली तो आई कैन गेट एनी टाइम प्ले पास, मैं पीएस कभी भी खेल सकता
19: हूँ. वाओ,
18: सो हाउ वुड आई नॉट, यू नो, आई हैव टू फाइंड दैट.
19: यू हैव टू फाइंड इट.
18: मतलब वो सुपर कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं है घर पे, और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा ऐसा गट कह रहा है कि वो घर पे ही है, लेकिन मेरा गट हमेशा रॉन्ग होता है.
19: थैंक गॉड यू रियलाइज्ड इट. तुम ढूंढ सकते हो, बिकॉज दिस वन गाय स्पेंड डेकेड सर्चिंग फॉर हिज फैमिली, देन चैट जीपीटी से उसको अपनी सिस्टर मिली इन आवर्स.
18: अरे यार, वो तो अभी ऑनलाइन ना इंटरनेट पर्सनालिटी है, ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है.
19: ये नॉन लिविंग है, बट दिस गाय 66 ईयर ओल्ड मैन इज लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया. He spent decades apni biological mother ko dhoondne ke liye. So he was born around one area, Amritsar, and his mom's name usko pata tha.
18: Amritsar mein?
19: Haan, but his searches went nowhere. Usko pata nahi tha usko kahan pe dhoonda jaye. Fir usne May mein kya kiya, isi saal, usne naya approach liya. Searching using ChatGPT. So he was on holiday. And then ChatGPT pe usne sahi prompt daale, led him to a blog which was written by a British designer. Who had written about her late mother, जो कि similar नाम था. वहाँ पे क्लिक करके आगे आगे बढ़ बढ़ के eventually he found his sister.
18: Oh wow, yeah. What a story.
19: So yeah, अगर आपकी prompting game बहुत सही है ना, तो आप काफ़ी चीज़ें achieve कर सकते हो.

0: 104.2 FM पे और रोवा ऐप के जरिए आप हमें सुन सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया से अगर आप हमें सुन रहे हैं, बिग शाउट आउट टू यू. काफी लोग हमें ऑस्ट्रेलिया से भी सुनते हैं.
1: या रोवा ऐप के जरिए आप हमारे म्यूजिक स्टेशन सुन सकते हैं, रोवा ऐप के जरिए आप हमारे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं. तो बहुत बेनिफिट है रोवा ऐप को डाउनलोड करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड जरूर कर रहे हैं. प्ले स्टोर ऐप स्टोर में इफ यू सर्च ROVA यू विल गेट अवर ऐप.
0: जी, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाली और बैंकॉक हम जा रहे हैं ईस्टर 2027 में, और हमारे साथ अगर आपको भी ट्रैवल करना है तो फटक से आप भी इसमें शामिल हो जाइए,
1: बिकॉज बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स बाकी है.
0: जी, सनटूर्स के अनिल भाटिया से आप बात कीजिए, उनको आप कॉल कर सकते हो 0800 4 Suntours, और इनको कॉल करके आप पूछिए भाई क्या पैकेज है, क्या है क्या नहीं, एंड ही कैन प्रोवाइड यू द आइटनरी एंड ऑल द डिटेल्स, और प्लस दे कैन आल्सो गिव यू फ्लेक्सी पेमेंट ऑप्शंस. तो आपको एक ही टाइम में पूरी पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्प्लिट योर पेमेंट्स एज वेल, एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर यू.
1: सो बहुत सारी ऑफर्स भी आपको मिल रही हैं, तो इसलिए कॉल कीजिए अनिल भाटिया को 0800 4 Suntours पे, या फिर जस्ट गो टू वेबसाइट Suntour, सर्च करेंगे अगर आप ऑकलैंड, तो यू विल गो टू द वेबसाइट, आप इंक्वायरी कीजिए, एंड यस यू कैन जॉइन अस फॉर अ गुड हॉलीडे जहाँ पे यू आर जस्ट पेइंग एवरीथिंग वन टाइम एंड देन यू गोना जस्ट चिल एंड एंजॉय
0: रिलैक्सिंग हॉलीडे. यू डोंट हैव टू कुक, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज फूड सारा कवर्ड है, 5-star 4-star अकोमोडेशन कवर्ड है, एक्टिविटीज कवर्ड है, हमारे साथ नॉन स्टॉप फन एंड बैंटर कवर्ड है, तो बहुत सारी मस्ती अब कवर्ड है उसमें, तो आप जरूर इसमें
1: ऑन रूट आप अनफिल्टर्ड एंड ड्राइव शो सुनने वाले हैं.
0: हो सकता है हाँ हाँ
1: या
0: चैटर सुन सकते हैं आप, लेकिन मोर देन दैट वी विल गेट यू टू चैटर.
1: या ऑफ कोर्स. सो इसे नोट पे आपको अभी
0: नहीं नहीं अभी तो हम कुछ और गाने सुनाएंगे.
1: ओके okay.
0: आपको बहुत जल्दी हो गई सैंडी जाने की, अभी तो भाई दिल्ली दूर है.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
3: 80s ke retro gaane.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Fool special. ये था आज आपके लिए.
1: हाँ, फूलों वाला special.
0: फूल, it's फूल, फूल special. मेरे को यार, मेरे को पता नहीं क्यों मैं फूल बोल ही नहीं पाता हूँ. मेरे को फूल ही बोलना पड़ता है.
1: मैं भी काफी समय तक फूल ही बोलते रही.
0: But ये फूल है actually.
1: Yeah, this is फूल.
0: Yeah, not फूल, not फूल, you फूल, फूल. हाँ, फूल. अच्छा, तो बताओ सैंडी.
1: Well, ये आपसे कह रहा है कि अगर आप बताना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है, आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पे. वैसे अभी श्री राम मंदिर गणेश उत्सव की सेलिब्रेशन कर रहे हैं 15 सितंबर से, सो उसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं. एंड ऑल्सो श्री कृष्ण एंड ब्रज रास रासिक डॉक्टर श्री कृष्ण किनकर जी फ्रॉम श्री धाम वृंदावन, सो ये 7 डे श्रीमद भगवत कथा कर रहे हैं. 14 से लेके 20 सितंबर तक चलने वाली है भारतीय मंदिर में, जो कि सेंड्रिंगम में है. टाइमिंग विल बी 7:30 PM ऑनवर्ड्स. तो आप भी इसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं. यू कैन सेलिब्रेट द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिचवई.
0: सो ये बार भी वो कन्फ्यूजन होने वाला है कि गणेश चतुर्थी कौन से दिन पर बनाया जाए, क्योंकि जो तिथि है वो चालू हो रही है 7:06 AM से 15 सितंबर 7:44 AM. और ये जो टाइम है मुझे लग रहा है ये इंडियन टाइमिंग बेस्ड है. सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे काफ़ी लोग शायद 15 सितंबर को सेलिब्रेट करें
1: या 14 को थोड़ा लेट. 14
0: बट बिकॉज 14 सितंबर को 7:06 AM है
1: तो यहाँ का शाम हो गया.
0: यहाँ का शाम हो गया तो यहाँ पे शाम से शुरू कर सकते हैं काफ़ी लोग. बट डिपेंड्स. एनीवे, आप कब सेलिब्रेट करो गणेश चतुर्थी हमें भी बताइएगा यहाँ पे. और एनीवे आई थिंक इट्स आल्सो टाइम फॉर अस टू से बाय बाय सैंडी.
1: या सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आपको अब आपसे अब मुलाकात होगी कल.
0: लेकिन जाने से पहले सैंडी, जाने से पहले आज का दिन अगर आपको सम अप करना हो इन वन ऑनेस्ट वर्ड, व्हाट वुड दैट बी?
1: ऑनेस्ट वर्ड में अगर आप मुझे सबमिट करना हो, ओके, सो ऑनेस्ट वर्ड विल बी क्या बोलूँ उसको, क्या कहते हैं, मैं वो उसके लिए वर्ड ढूंढ रही हूँ जहाँ पे आपके पास आपके पास सामान बहुत होता है करने के लिए. अरे नहीं रे, इतना नेगेटिव नहीं.
0: अच्छा, नेगेटिव नहीं है.
1: सो आपके पास काम बहुत होता है करने के लिए लेकिन इनफ टाइम नहीं होता है. सो दैट वर्ड वट एवर इट इज.
0: अच्छा,
1: या दैट वॉज माई डे टू डे.
0: बट काम इनफ होता है लेकिन टाइम नहीं होता है, तो इससे कुछ भी काम नहीं होता है.
1: नहीं, काम ऐसा मैं होती नहीं हूँ.
0: अच्छा, ऐसा नहीं होता. हाँ. क्योंकि मेरे साथ काफी बार ऐसे होता है जब बहुत काम होता है मेरे पास करने को और मेरा मैं घूमते रह जाता हूँ फिर कि अरे यार ये करो ये करो ये करो.
1: और फिर कुछ भी कंप्लीट नहीं होता. क्योंकि उस समय पर ऐसा कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं हम. बट आई हैड टू मेनी थिंग्स टू डू बट टू लिटिल टाइम टू मैनेज इट. वर्कलोड वाज क्वाइट हैवी.
0: ऑलराइट, सो दैट वाज सैंडीज डे. माय डे वाज क्वाइट टाइम पास आई वुड से. या
1: ऑक्यूपाइड यू कैन से.
0: You are occupied.
1: Oh yeah, yeah. Your is the mind word occupied. Yeah, there you go.
0: खुद के लिए word नहीं सूझ रहा है.
1: वही ना.
0: दूसरों का word अभी आ रहा है. Anyway, with that, I think it's time to say bye bye. Have a wonderful rest of your evening. We'll see you soon.
1: Bye.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Wow.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट। नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
3: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
4: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
5: Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Little reaction from Labour's leader as his party dips in the polls. The latest Taxpayers Union Courier result has both main parties down by about 2% each. Chris Hipkins saying he's not paying much attention. State Highway 56 at Opiki near Palmerston North is closed this evening. As floodwaters continue to rise, it will remain closed overnight. There'll be an assessment in the morning. Safety messages are being reiterated as a 3-metre leopard seal makes waves in Lower Hutt. There have been reports of dogs approaching, and Doc has also seen footage of someone throwing a fish close by. In sport, the Warriors look set for a boost ahead of week one of the NRL playoffs at home against the Dolphins. Injured forward Jackson Ford, who hasn't played since June, and wing Dallin Watene-Zelezniak may be back. The matchday squad for Saturday night will be named tomorrow evening. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And at the US Tennis Open tomorrow, the fourth round of singles continues. Also on court tomorrow morning is New Zealand doubles specialist Aaron Routliff in a round of 16 match.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands bhi hai. Hum.
5: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
8: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं क्रिश आ गया हूँ नाइट कैफे में आपका साथ देने के लिए। रात 12 तक हमारा साथ रहेगा लेकिन 8 to 9 आपको पता है आज मंडे है तो नो लॉजिक मंडे आपके लिए रहेगा। आज 7th सितंबर है और बहुत तेज़ी से सितंबर का महीना भी आगे बढ़ने लगा है। स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी है, फर्स्ट वीक इनटू स्प्रिंग, और अभी भी मौसम इट्स अ बिट कोल्ड ड्यूरिंग द डे और अर्ली मॉर्निंग भी होता है, रात के वक्त भी ठंड हो जाती है। लेकिन हॉट और हिट गाने यहां से आप तक हम पहुंचाएंगे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड Biggest hits. देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए No Logic Monday.
5: Where sense takes a break.
9: No Logic Monday.
8: No Logic Monday में आपका स्वागत है। मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जिसमें आज हम बातें करेंगे काफ़ी ऐसे टॉपिक पर जिस पर आयदा आपको बहुत सरप्राइज कर देगा या आश्चर्यचकित कर देगा, या कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानकारियाँ जो दुनिया भर में होती है वो आपके लिए हम लेकर आते हैं, या फिर कुछ इस तरह से सरप्राइज़ कर देता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें जो होती हैं हमारे अराउंड वो भी हम लेकर आते हैं इसी सेगमेंट में। 9 PM तक ये चलेगा और हमारा पहला स्टोरी कुछ गानों के बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे। सुनते रहो हम क्रिश के साथ है। वेलकम टू द शो।

Monday. You're listening to number one, Humping Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai, Hawaiian shirt designed to fool AI cameras. Aapko pata hai ki kaafi jagahon par internationally AI cameras ka bhi istamal karne laga hai, hone laga hai. Germany ki ye story hai, 31st of August ko publish hua hai, jahan par designer Simon Weckert ne ek aise unusually patterned Hawaiian shirt banaya hai. Aur ye strange design इसलिए है, पर्पसली है, क्योंकि ये इंटेंड करता है टू कंफ्यूज एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स. पैटर्न कैन मेक इट हार्डर फॉर कैमरास टू करेक्टली आइडेंटिफाई पीपल. ये इस शर्ट का मकसद है. और इट लुक्स लाइक एन अगली फैशन चॉइस इज एक्चुअली ए टेक्नोलॉजिकल कैमोफ्लाज. और इस डिज़ाइनर ने ये कर दिखाया है. कुछ ही देर में 288 मीटर आउटडोर एलिवेटर हेल्प्स चिल्ड्रन रीच स्कूल, इस पर जानकारी मैं दूंगा. चाइना की ये स्टोरी है आपके लिए. नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है, कृष का साथ है.

नो लॉजिक मंडे आप सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक एक करके इंटरेस्टिंग खबरें भी मैं लेकर आया हूँ। यूनान प्रोविंस चाइना की ये स्टोरी है, 1 सितंबर ऑफ दिस ईयर पब्लिश हुआ है। एक ह्यूज आउटडोर एलिवेटर को बनाया गया है बिसाइड ए स्टीप माउंटेन क्लिफ, और इसे बच्चों को और रिमोट में जो लोग रहते हैं रिमोट एरियाज में, स्पेशली निजुए है विलेज के लिए बनाया गया है, ताकि वे अपने बोर्डिंग स्कूल तक पहुंच सके। प्रीवियसली बच्चों को एक बहुत ही डेंजरस 3 आवर माउंटेन क्लाइंब करना होता था टू रीच देयर स्कूल, लेकिन अब इस एलिवेटर जो आउटडोर एलिवेटर बनाया गया, इससे ये मुमकिन हो पाएगा कि बच्चे सिर्फ आसानी से स्टीप माउंटेन क्लिफ से होकर जा सकते हैं। और कहा गया है कि एलिवेटर टेक्स देम अप द माउंटेन इन ओनली अ फ्यू मिनट्स। तो बहुत ही कड़ी मेहनत से ये बच गए और थकावट से बच गए, क्योंकि ये कुछ टेक्नोलॉजी का कमाल चाइना ने कर दिखाया है, जो कि इज़ नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि चाइना ऐसे बहुत कुछ कारनामों को करता है जो बहुत ही वाव होता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, 12 तक हमारा साथ रहेगा, रात 9 तक ये प्रोग्राम नो लॉजिक मंडे आपके लिए चलता रहेगा।

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. No Logic Monday aapke liye jaari aur main Krish aapke saath de raha. 28th August ki ye story hai Taiwan. Aise humne story ko liya hai jahan par ek aadmi ne istemal kiya ek robot vacuum cleaner ko to secretly record his wife. Aur is recording se inko ye capture karna tha ki kya unki patni extra marital affair kar rahi hai. Aur jab ye baat खुला सामने आया कि इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है यूजिंग ए रोबोट वैक्यूम क्लीनर, इनको चार्ज किया गया और इनको कन्विक्ट किया गया ओवर द सर्वेलेंस और ये अनयूजुअल स्पाइंग मेथड के वजह से 5 month प्रिजन सेंटेंस भी इनको मिला है. ज़रा सोचिए अब स्पाई करने के लिए लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. नो लॉजिक पंडे आपके लिए जारी है ऑन हम.

0: Thursday on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
0: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: A Kogan stick vac is just like a stick vac. Both stick vacs do very similar stick vac things, but with slightly different little logos, colors, and adapters. One's a Kogan MX-12 Pro cordless stick vac. The other stick vac has a price that sucks. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
10: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Sheera from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
11: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HEERA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North and Bill Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: Hum. Night Cafe on Hum. No Logic Monday.
14: No Logic Monday, आप सुनते रहो. क्रिश का साथ है. कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां जो हमारे पास है वो भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. टीनेजर ने क्लेम किया है टू हैव लिव्ड इन ए पॉन्ड फॉर 5 years. अगस्त 24 की ये स्टोरी है. वेस्ट बंगाल इंडिया से हमने इस स्टोरी को लिया है. एक 16 साल का लड़का जिसका नाम है इकबाल शेख रिपोर्टेडली अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करता है इन वोटा. इन्होंने कहा है कि ये पानी के अंदर रहता है क्योंकि इससे इनका पेनफुल स्किन कंडीशन रिलीव होता है. और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये अनयूजुअल रूटीन हुआ है पिछले 5 सालों से और अभी तक चलता जा रहा है. इस स्टोरी से अभी काफ़ी कंसिडरेबल अटेंशन मिला है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जिसमें ये लड़का रहता है क्योंकि इस पॉन्ड में रहने से इनके स्किन कंडीशंस का जो ये कंडीशन है जो प्रॉब्लम है उसे राहत मिलती है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एक और स्टोरी हमारे पास है. पॉलिश्ड मैन ऑर्डर्ड हंड्रेड्स ऑफ पिज्जाज एज अ प्रैंक. इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा इन द नेक्स्ट जब हम ब्रेक के बाद आएंगे. फिलहाल कुछ गाने आपको सुनाते हैं.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
4: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
5: Visit Flooring Extra at the Auckland Home Show this weekend for home show exclusive savings. Or discover the deals in one of our 10 Auckland stores. Hurry, savings ends Sunday.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: Moisture और ventilation का problem लगता है.
8: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: Home. Time check. You by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. Labour's presenting an unrattled face to the latest poll figures. The latest Taxpayers Union Curia poll has Chris Hipkins down nearly 3 points as preferred Prime Minister, his party falling to 25.9. He insists he will be leading the charge come November. Business NZ has laid out the case for spending more on medicines. Its latest Burl report highlights the economic returns from so doing through a healthier and more productive workforce. Two people are badly injured, one critically, after a crash in the far north on State Highway 10 at Kyle. In Manawatu, State Highway 56 at Opiki near Palmerston North has closed because of flooding. In sport, the Warriors have their wish with a home game this weekend at Mount Smart. There's no guarantee on that for the second final venue. The NRL will be keen to maximise the extra revenue that would come from the match being played at Eden Park. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And star Wallabies playmaker Carter Gordon is no chance to play the Bledisloe Cup. He broke a leg against Argentina on the weekend. The 25-year-old due to get married later this week.
0: Sports News.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
0: Night Cafe on Hum.
11: Moment. Krish ka magic. Only on Hum.
13: वेलकम बैक एवरी वन. यू लिसनिंग टू मंडे नाइट कैफे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 7 सितंबर आज है और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं या हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम 8 to 9 PM इस घंटे पर भी आपका स्वागत है और हमारा साथ ऐसा ही दीजिएगा. एज यूजुअल शुरू करते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप म्यूजिक फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. एवरी टॉप ऑफ द आवर पर 9 to midnight ये चलता रहेगा. और हमारा पहला ऑफ आवर नाइट कैफे टुडे टुनाइट इज एक्चुअली अमेजिंग लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स जो मैं लेकर आया हूँ जो आपको सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ. तो एन्जॉय everyone.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ पॉडकास्ट पर जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हमारे धुरंधर अनाउंसर्स बात करते हैं, गेस्ट्स आते हैं और इंटरेस्टिंग खबरों पर, मुद्दों पर बातें होती है. तो ब्रेकफास्ट कैचअप में डॉक्टर परमजीत परमार को आप सुन पाएंगे, इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन फॉर द एक्ट पार्टी. ये विजय पूजा से बात करेंगे टू ब्रेक डाउन द पार्टीज न्यूली प्रपोज्ड इमिग्रेशन पॉलिसी. डिस्कस होंगे द प्लान टू इंट्रोड्यूस ए फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स, जिसमें 2 साल ऑफ रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट होगी विद इन एवरी रोल इन 5 ईयर पीरियड. और की क्वेश्चंस जैसे करंट पीआर होल्डर्स एक्सेप्शंस और कीपिंग न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सिस्टम फेयर एंड बैलेंस्ड, ये भी बातें होंगी. तो ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए आप बीएफ टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर द फुल ऑडियो. कुछ और भी पॉडकास्ट पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Kuch na kuch alag hum par hota hai. Trend makers ke baare mein aapne suna hoga. About this musical podcast. Ye ek power packed musical journey hai jahan par har gana curate kiya gaya hai around a unique theme in Drive Show with Sandy and Rusbe. From genres jo eras ko define karta hai to tributes celebrating legends of Bollywood. Chahe wo iconic singers ho, visionary composers ho, poetic lyricists ho, ya phir unforgettable actors ho. Har ek episode mein ek story aapko milega aur wo bhi through sangeet music. अगर ये जो एक और जो एपिसोड आप सुनना चाहेंगे ये इसमें अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए सिर्फ जा रहे हैं यू आर कवर्ड क्योंकि स्पेशली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है टू सेट द मूड कीप द एनर्जी अप और एवरी किलोमीटर ऑफ योर जर्नी काफ़ी एंजॉयबल बन सकता है चाहे आप सनसेट्स को चेस कर रहे हो या हाईवेज क्रूज कर रहे हो या फिर सिटी ट्रैफिक में स्टक हो द मिक्स जो होंगे इस गानों का इट विल बी परफेक्ट ट्रेवल कंपेनियन ऑन द रोड लिसन करने के लिए टेक्स्ट करें TM 5599 पर और या सर्च करें ट्रेंड मेकर्स ऑन रोवा ओनली मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
3: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
4: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है।
3: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
5: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
6: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
7: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
8: Shower dome.
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
10: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
11: अब हमारा क्या होगा?
12: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
10: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Wellington City Council has confirmed a net loss of 47 roles across three departments as it looks to meet savings targets. 141 jobs are being disestablished, 41 of which were already vacant, while 94 new roles will be created. Two people are badly injured, one critically, after a crash in the far north this evening on State Highway 10 at Kaiō. In Manawatū, State Highway 56 at Opiki near Palmerston North is closed as flood waters continue to rise. Handling capacity at the country's largest port is set to nearly double. A major expansion project to the port of Tauranga has been granted fast-track approval. In sport, after 25 years, Kiwi motorsport great Sir Scott Dixon has raced for the Chip Ganassi Racing Team for the last time. He was 17th in today's IndyCar race in California. Motorsport with Magan Turbo's 80,000K tyre warranty. And on court tomorrow morning at the US Tennis Open is New Zealand doubles specialist Aaron Routliffe. It's a round of 16 match, and the fourth round of singles continues overnight.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
16: वेलकम बैक एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और वेलकम टू दिस आवर, क्योंकि आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स लेकर मैं बिल्कुल तैयार हूं। अमेजिंग लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स आपके लिए है। नाइट कैफे आप सुन रहे हैं, मिडनाइट तक ये चलता रहेगा और एक के बाद एक आपके फेवरेट बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम पेश करते रहेंगे। रात 12 तक आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। फिलहाल नॉन स्टॉप म्यूजिक का टाइम हो चुका है, 30 मिनट्स के लिए आपको सुनाने जा रहा हूं मैं बहुत प्यारे प्यारे गाने। एंजॉय एवरीवन।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Krishka Saath hai, Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai, to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai, bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare Music Plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum Rewind ho, Hum 80s Jukebox ho, Fiji Bhajans ho ya Chardi Kala Punjabi Hits ho, Fiji Kirtan Sangrah ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke Sufi aur Qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं. कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेज जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो आज ही डाउनलोड करें आपके फ़ायदे के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम. नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very
2: acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. This is our final hour of Night Cafe. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और स्वागत करता हूँ आपका इस घंटे पर नॉनस्टॉप म्यूजिक के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए क्योंकि एक एक करके मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही जल्दी न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में आराम करने का बहुत मन करता है प्यारे गानों को सुनने का मन करता है विदाउट एनी इंटरफियरेंस और ऐसा ही होने जा रहा है आपके लिए इतना ख्याल हम आपका रखता है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर एन्जॉय कीजिएगा मिलते हैं आधे घंटे बाद विद मोर इन्फॉर्मेशन मोर म्यूजिक फॉर यू क्रिश के साथ है वेलकम बैक

0: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, एक एक करके आपके favorite songs हम पेश करते रहेंगे. हम boarding call is now open. Dream Island Escape can just be one boarding call away. To return your tickets, जीतने का मौका है to Vanuatu with Solomon Airlines. Plus $1,000 spending money भी आपको मिलेगा. Isn't that great for you? आपको बस हम सुनते रहना है. Special boarding call announcement के लिए सुबह 8 बजे, 11 बजे, दिन में 1 बजे और शाम 5 बजे. जैसे आप सुनते हैं, आपके पास 60 minutes का मौका रहेगा to head to Rover and type board now and click submit. Text BC to 5599 to get competition page link. और that's it, यही आपको करना है. और unforgettable Vanuatu getaway जीतने का मौका आपके पास रहेगा. Thanks to Solomon Airlines for flying 4 times each week, non-stop from Auckland to Vanuatu. और visit flysolomons.com for more information. और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए terms and conditions apply होते हैं, जो हमारे website पर आपको मिल जाएगा. सुनते रहो हम.

0: Cafe on Hum.
1: You are listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचना है आपके लिए. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. ट्यूजडे 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर के तक सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. और भी जानकारी के लिए आप 09836 4647 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. महाप्रसाद हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल रात को 8 बजे, हम आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए, इंटरेस्टिंग खबरें और साथ में वंडरफुल म्यूजिक हमारे साथ होगा, तो कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट।
1: क्या

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
5: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: नाइट फ्लाइट ऑन हम।
9: One, two, three, four.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
6: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new Garden Showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
3: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
5: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 30

0: Streaming on Rover.
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: An award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, Quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
7: Flooring Extra, adore your floor.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Budget the gun day.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.

Yo, Honey Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
10: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
9: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
11: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
10: ये आखिरी
9: हैवान releasing in cinemas on 11th September. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: Night Flight.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast. The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Night.

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की
0: तरह? क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिलफरेज।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
8: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है बिल्कुल मौसम की तरह कभी धूप कभी बादल अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 दैट्स 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
5: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
6: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
13: Auckland, it's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
14: Time check.
15: Good morning. It's 1 minute. It's 6:00.
14: Hum News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Morning, I'm Grace Cocker. With the latest at 6, there is anger over the axing of dozens of jobs at Wellington Council. The local body is trying to find more than $4 million in savings. PSA Union's Tom Buckley says it's short-sighted.
17: Waste of the talent and institutional knowledge that has been built up into the Wellington Council, particularly in important areas like climate change response, mana whenua engagement, resource consent and supporting the arts.
16: The Aviation Industry Association is warning of massive workforce barriers, especially for trainee pilots. Spokesperson Simon Wallace says staffing shortages need more attention.
18: There's been some good wins around regional connectivity and support for regional airlines. There's good support for modernising the civil aviation rules. But we think there's a lot more work to do in the workforce area.
16: Top of the South drivers are being urged to take extra care on the roads. State Highway 65 has reopened between O'Sullivan and Springs junctions, but there are restrictions in areas which suffered flood damage. Thousands have turned out in Serbia for the funeral of convicted war criminal known as the Butcher of Bosnia. Ratko Mladic died while serving a life sentence at The Hague for his role in the 1995 massacre of 8,000 men and boys. Plans for a state funeral were given the axe after European leaders raised major objections, with the EU denouncing his glorification. To sport, Richie Mo'unga could make a return to test rugby in Baltimore this weekend. Commentator Tony Johnson told the DSPN podcast that the first five might feature for the All Blacks in the fourth test against the Springboks.
19: The fact that Josh Jacomb, who was an original selection, has gone home to New Zealand and Richie Mo'unga, who came in late, I just wonder whether that is an option.
16: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com exclusive Bledisloe Cup packages selling now. Former batsman Kevin Peterson is joining the England cricket team as a specialist mentor for their white ball teams.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
4: सूचित किया जाता है कि माउंट वेलिंगटन के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शलेन तथा राजन रॉयलैंड कृषि शिवलिन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति यानी नसोले सिक्स माइल्स नसीनू फीजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे माउंट वेलिंगटन के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शलेन तथा राजन रॉयलैंड कृषि शिवलेन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति यानी नसोले सिक्स माइल्स नसीनू फीजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वेरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि रॉड्रिक राम और शिमल राम के पिता उर्मिला देवी के पति यानी विसारी लेमी फीजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार इसी शुक्रवार को शाम 4 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-1870-252 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे रॉड्रिक राम और शिमल राम के पिता यानी उर्मिला देवी के पति वैसारी लेमी फीजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार इसी शुक्रवार शाम 4 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-187-0252 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि एल्विस गोसाई और क्रिश गोसाई के पिता अरुणा देवी गोसाई के पति नवातुम्बा फीजी के भूतपूर्व निवासी पापा टोयटोय के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. दर्शन के लिए आप इसी बुधवार को शाम 7 से 8 के बीच एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी जा सकते हैं, जिसके बाद शव को बृहस्पतिवार को दिन में 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे एल्विस गोसाई और क्रिश गोसाई के पिता अरुणा देवी गोसाई के पति नवातुम्बा फीजी के भूतपूर्व निवासी पापा टोयटोय के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. दर्शन के लिए आप इसी बुधवार को यानी वेंसडे को 7 PM टू 8 PM के बीच एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी जा सकते हैं, जिसके बाद शव को इसी बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को दिन में 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0755-659 पर कॉल कर सकते हैं.
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
14: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
20: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
14: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
7: 9.7 degrees temperature ऑकलैंड में भी आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 7 डिग्रीज. सनराइज से पहले कुछ बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी. आज शाम के समय ज्यादातर मौसम साफ रहेगा. सनराइज 6:31 AM पर, सनसेट शाम 6:07 पर होगा.
14: The breakfast show with Vijay and Pooja,
21: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
14: Breakfast Catch-Up.
4: Good morning, namaste and welcome to Hum, playing Bollywood's biggest hits. At Pinatore se mein hamari studios mein chhe bajkar. Aaj hai Tuesday, 8th of September. Good morning to you too.
0: Good morning and welcome to the Breakfast Show with Vijay and Pooja. 104.2 FM aur Rover par aapka hum swagat kar rahe hain. Aaj ki ye subah aap sabhi ko bahut bahut bahar shubh aur mubarak ho. Jeevan ki aapki jo bhi आकांक्षाएं हैं ये आज पूरी हो, यही हमारी कामना है.
4: आशंकाएं का मतलब क्या होता है?
0: आशंका इज लाइक डाउट.
4: तो आशंकाएं पूरी हो से इससे क्या
0: आकांक्षाएं?
4: आकांक्षाएं अमर, पहले आप आशंकाएं बोल रहे थे ना. इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है. लैंग्वेज इज सच अ इंटरेस्टिंग थिंग टू एक्सप्लोर, और स्पेशली जब आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जो आपको नहीं पता है. आपको कितनी भाषाएं आती है बाय द वे? कितनी भाषाएं बोल सकते हैं आप?
0: टू एंड हाफ.
4: कैसे?
0: आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ फिजियन.
4: अच्छा, आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस.
0: अच्छा, कौन?
4: इंग्लिश, हिंदी एंड फिजी हिंदी. फिजी हिंदी भी तो भाषा ही है ना.
0: अच्छा,
4: इंटरेस्ट है और भाषाएं सीखने में. अगर आपको मौका लगा ऐसे कभी कि आपको कोई भाषा सीखने को मौका मिले, वैसे तो अभी तो इंटरनेट के जमाने में क्या कुछ नहीं पॉसिबल है, पर आप कौन सी भाषा सीखना चाहोगे? इज देयर एनी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड दैट इंटरेस्ट्स यू कि आप अरे ये सीखना चाहोगे?
0: नहीं, ओला गुड.
4: पर ऐसे कुछ है नहीं कि ये भी सीखना है?
0: Maybe Fijian fully and Terio.
4: Interesting. तो चलिए भाषाओं के बारे में जो बातें हम कर रहे हैं ये जारी रखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ कर रहे हैं आज की सुबह की शुरुआत. आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ओनली ऑन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM या रोवा ऐप पर अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो.

0: Inside Up. आज की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड दिस इज़ अबाउट हाउ कभी कभी हम कुछ स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं और वो हमारे लिए कितना स्पेशल जो है ये बन जाते हैं. ये जो कहानी है ये लिज स्मिथ की है और लिज एक नर्स है जिनके बारे में कहा गया है कि ये दरअसल एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करती हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई जिज़ेल से. जिज़ेल एक प्रीमैच्योर बेबी जिनकी पैदाइश जो है ये समय से पहले हो गई. आई थिंक शी वॉज बोर्न जस्ट एट 29 वीक्स और उन्होंने कई हफ्ते जो है ये हॉस्पिटल में गुजारा जहाँ पर लिज उनकी नर्स थी. उनकी देखभाल किया करती थी एंड सच थिंग्स हैपन जहाँ पर इवेंचुअली लिज जो है इवन ऑन डे ऑफ शी स्टार्टेड विजिटिंग जिज़ेल और उनका ख्याल रखना इन्होंने शुरू कर दिया एंड दे बॉन्डेड सो मच टुगेदर. इनका जो रिश्ता है इतना गहरा हुआ कि अब ये रिलेशनशिप सिर्फ एक नर्स और एक पेशेंट तक सीमित नहीं रह गया बल्कि उससे आगे जो ये बढ़ गया. इवेंचुअली लिज जो है इन्हें फॉस्टर केयर में डाला गया 2018 में और फिर जाकर या माफ कीजिए जिज़ेल जो है इन्हें 2018 में फॉस्टर केयर में डाला गया जिसके बाद जाकर लिज ने डिसाइड किया कि वो उन्हें ऑफिशियली अडॉप्ट करेंगी, लीगली अडॉप्ट करेंगी. एंड ऑन द 18th of October 2018 लिज ने जिज़ेल को ऑफिशियली एंड लीगली अडॉप्ट करते हुए एक कहते हैं ना कि कनेक्शन जो था उनका वो एक रिलेशनशिप में बदल दिया.
1: ओके,
0: लीगल रिलेशनशिप में और उन्हें अपनी बेटी इन्होंने बना लिया एंड एवर सिंस दे हैव बीन लाइक यू नो टुगेदर.
1: दैट्स रियली नाइस. यू नो कभी कभी ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ऐसा रिश्ता बन जाता है जाने अनजाने में जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है.
0: एब्सोल्युटली एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद इन दिस पर्टिकुलर केस. यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी अगर आप इसे अच्छी तरह से समझो. एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर पेशेंट लेकिन आपने उस पेशेंट के साथ भी इतना गहरा रिश्ता फॉर्म कर लिया कि जब आपको मौका मिला उसे अपना फैमिली बनाने का, अपनी बेटी बनाने का, तो यू डिडंट स्टेप बैक. आपने उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया और आपने वैसा ही किया. सो दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल स्टोरी आज की हमारी सनी साइड अप आपके लिए हम लेकर आ रहे थे. 20 मिनट हो रहे हैं फिलहाल हमारे स्टूडियोज में 6:00. कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए ग्लोबल हेडलाइंस.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho, maa gaye.

0: Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर

0: घर ढूंढते ढूंढते
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
5: Media Works Complaints. How can I help?
6: Yeah. Hello?
5: Hi.
6: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
5: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
6: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
5: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
6: Great. Sing it to me.
4: Advertise with
7: Media Works.
4: New Zealand listens to us.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
11: Global Headlines.
12: सुबह के मुख्य समाचारों में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डिप्लोमेसी को रिजेक्ट करते हुए ग्लोबल सैंक्शंस, मिलिट्री स्ट्राइक्स और मैरिटाइम ब्लॉकेड के जरिए अग्रेसिव इकोनॉमिक प्रेशर कैंपेन शुरू किया है। इस जोरदार दबाव से तंग आकर ईरान अब नेगोशिएटर्स को वापस टेबल पर लाने के लिए मिलिट्री एस्केलेशन और वाइड वो की धमकी दे रहा है। इस बीच ईरानियन सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी पिछले 6 महीने से हाइडिंग में हैं ताकि वो यूएस इजरायली स्ट्राइक में मारे गए अपने वालिद अली खमेनी जैसे अंजाम को अवॉइड कर सकें। भारत के दिल्ली में गिरी हुई हॉस्टल डेज पीजी का एक वायरल रेंट अग्रीमेंट सामने आया है जिसमें स्टूडेंट से 3 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का एडवांस लेने के बावजूद हॉस्टल मैनेजमेंट ने अपनी लाइबिलिटी जीरो रखी थी। अग्रीमेंट के फाइन प्रिंट में साफ लिखा था कि किसी भी कैजुअलिटी या रिस्क के लिए पीजी अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जो दिल्ली में स्टूडेंट अकोमोडेशन पेपर वर्क के एक तरफा होने को दिखाता है। बिल्डिंग कॉलेप्स में 7 रेसिडेंट्स की मौत हो गई और उसके बाद ये अग्रीमेंट ऑनलाइन तेजी से सर्कुलेट हो रहा है जिसमें सारे स्ट्रिक्ट टर्म्स और नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी रूल्स सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही थोपे गए थे। पीजी में अल्लामी पुलिस कांस्टेबल पेनियासी रदांगी के मर्डर को 7 महीने होने को हैं पर अभी तक किसी पर चार्जेस ना लगाने को लेकर चिंता जताई गई है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को ऑस्ट्रेलिया से पोस्टमार्टम और डीएनए एविडेंस मिल गया है और उनका कहना है कि पूरी फॉरेंसिक एविडेंस के रिव्यू के बाद ही फिजी पुलिस फोर्स को आगे की रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। पुलिस डिलेज की वजह से पहले 2 आरोपियों के चार्जेस वापस ले लिए गए थे जिसके बाद पुलिस कमिश्नर सियाते तुंड्रावू ने इसकी जिम्मेदारी ली और बाकी रिपोर्ट्स रीसबमिट करने की बात कही थी। ओएफसी अंडर 19 मेंस चैंपियनशिप के अंतर्गत कल कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस खेले गए। कल न्यू कैलेडोनिया की जीत पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 7-0 से हुई जबकि सोलोमन आइलैंड्स ने सामोआ को 2-0 से हराया। इसके बाद इस ग्रुप से सोलोमन आइलैंड्स ग्रुप लीडर और न्यू कैलेडोनिया दूसरे स्थान पर ठहरा है। आज जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें ताहिती फिजी का सामना करेगा और वनवातु की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। न्यूजीलैंड इस ग्रुप से ऑलरेडी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है और फिजी को सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई होने के लिए ताहिती के खिलाफ मैच को ड्रॉ करना ही बाकी रह गया है। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
13: अपना A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेरी सून ये सारे गाने जो है एक बार फिर से यू नो फुल ऑन आपको सुनने को मिलेंगे और हम, क्योंकि नवरात्र आने वाले ना.
1: अच्छा.
0: और नवरात्रि के टाइम पे ऐसे बहुत से कमाल के बॉलीवुड के भी गरबा या डांडिया वाले गाने जो ये प्ले करते हैं.
1: हाँ.
0: तो डेफिनेटली वो माहौल फिर से बनेगा वेरी सून. तो
1: अच्छा.
0: क्या अच्छा अच्छा कर रहे हो आप?
1: आप बता रही है, मैं सुन रहा हूँ ना.
0: हाँ, तो हर बात पे अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सुन रहे हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. और एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड, तो भाई अभी ना वरुण सोबती ये नाम बहुत ज्यादा चल रहा है.
1: वो एक वेब सीरीज में आए हैं मोना सिंह के साथ. आई कांट रिमेम्बर द नेम.
0: कोहरा.
1: हाँ, दैट वाज रियली गुड.
0: हाँ, दैट सीजन टू. कोहरा का सीजन टू है वो.
1: हाँ.
0: आपने सीजन वन नहीं देखा?
1: शायद देखी है, आई एम नॉट रियली श्योर.
0: कोहरा का सीजन वन जो है ये भी आया था एंड उसमें भी ये थे.
1: ऑब्वियसली सीजन वन आया तब तो सीजन टू आएगा.
0: नहीं नहीं, मेरा मतलब उसमें भी ये थे.
1: हाँ,
0: और
1: हाँ.
0: उस टाइम भी उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग जो है ये की थी. एंड आई थिंक उसमें सुरिंदर विक्की जो है इनके साथ इन्होंने काम किया था. बट या सीजन वन केम एंड देन सीजन टू, एंड दोनों में इनको लोगों ने काफ़ी पसंद किया. पर इनका नाम जो है फिलहाल एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है, एक बार फिर से हर जगह इनके बारे में काफ़ी चर्चा जो ये हो रही है. नॉट फॉर अ वेब सीरीज जहाँ पर शायद ये दिखे हों एज अ फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर अप्लाई करते हुए, ना तो कोई टेलीविजन प्रोग्राम, ना तो कोई मूवी जिसमें इनका एक यू नो फुल ऑन कैरेक्टर जो ये नज़र आया. लेकिन फॉर अ कैरेक्टर ही प्लेड फॉर ओनली 2 minutes of screen time उस कैरेक्टर के लिए.
1: एंड
0: लोग वापस से इनको यू नो हाईलाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ही हैज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर. इट्स जस्ट दैट शायद लोगों ने काफ़ी देर से रियलाइज किया, या फिर इनको अपॉर्चुनिटीज वैसे जो इनके कैलेबर की है ये बहुत देर से जाकर मिली. आई एम टॉकिंग अबाउट बबीता सिंह रिपोर्टिंग. उसमें इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया बंसी. और बंसी का जो किरदार है इतनी इनोसेंस और इतनी ऑनेस्टी के साथ इन्होंने प्ले किया दैट पीपल कुड एक्चुअली फील हिम. बंसी का जो किरदार है वट एवर ही फील्स इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी, और लोग जो है जब ये शो या मूवी देख रहे हैं तो वो फील कर रहे हैं कि बंसी इज सच एन इनोसेंट सोल और पीपल हैव फॉलन इन लव विद दैट कैरेक्टर. पर कमाल की बात ये है कि इस पूरी मूवी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला था.
1: अच्छा.
0: एंड ही डिड अ मैजिकल वर्क एंड दैट्स वाई लोग जो है कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट बंसी, पर इससे पहले भी उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स में काम किया है. एंड ऑफकोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट उनका जो डेब्यू शो था इस प्यार को क्या नाम दूँ जिसमें उन्होंने काम किया था. एंड दैट्स व्हेन पीपल एक्चुअली स्टार्टेड लविंग हिम. आपको पता है इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था अर्नब सिंह रायजादा का, दैट वॉज लव्ड अ लॉट. और इस पर्टिकुलर शो की वजह से सरप्राइजिंगली ये खुद भी काफ़ी शॉक्ड हुए थे इस बात को जानकर, टर्की में इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी. एंड पीपल इन टर्की वर क्रेजी अबाउट हिम. वो उनको बहुत फॉलो करते थे. आज भी इनकी फैन फॉलोइंग जो है टर्की में बहुत ज़्यादा है. पीपल एब्सोल्युटली लव हिम. बट टॉकिंग अबाउट वरुण सोबती, ये वापसी कर रहे हैं एक और एक शो के साथ जिसका सीजन 3 आने वाला है. और सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 असुर 3 जो है ये आ रहा है.
1: हाँ.
0: जिसमें अरशद वारसी और वरुण सोबती के साथ इस बार एहसास चन्ना जो है ये शामिल हो चुकी हैं.
1: I liked season 1, लेकिन season 2 जो है it became मेरे लिए I don't know, I did not enjoy it as much as I enjoyed season 1. बट हर किसी की पसंद ऑब्वियसली अलग
0: होती है.
1: और असुर एक ऐसा वेब सीरीज है दैट वी ऑल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू जब ये रिलीज होती है, जिसको जिनको इस जॉनर की चीज़ें जो है ये पसंद है. सो दैट्स एक्साइटिंग न्यूज, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. वहीं पर एक एविएशन एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने बॉलीवुड की एक एक्टर है उनके खिलाफ सिविल डिफेमेशन केस जो है ये फाइल कर दिया है.
0: किनके खिलाफ?
1: जो एक्ट्रेस हैं इनका नाम है नोरा फतेही.
0: ओके.
1: और एक कोर्ट में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने डेरोगेटरी और रेकलेस कमेंट्स किए थे ऑन सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से जो एयरलाइन है उसकी छवि जो है ये खराब हुई है.
0: किस एयरलाइन ने?
1: ये जो एयरलाइन है ड्यून्स एविएशन.
0: Okay.
1: इन्होंने फाइल किया है. और नोरा फतेही ने उनके एक प्लेन के अंदर एक वीडियो जो है ये रिकॉर्ड किया था. आई थिंक मुंबई से ये जयपुर जा रही थी लास्ट दिसंबर में, और उस दौरान उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को डिस्क्राइब किया था एज ए मिनिचर, एक टॉय या लेगो एयरप्लेन की तरह.
0: Okay.
1: और इस वीडियो को उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था. अब कंपनी का आरोप है कि दिस आर ऑल रेकलेस स्टेटमेंट्स मेड बाय द एक्टर जिनके पास 4.6 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से बुकिंग कैंसलेशंस हुए और कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशंस को काफी नुकसान जो है ये हुआ था. और इस साल अप्रैल में जाकर ये केस जो है ये फाइल किया गया एंड कंपनी ने कहा कि दैट ओइंग टू नोरा फतेही सब्सटेंशियल फॉलोअर बेस हर रेकलेस स्टेटमेंट्स हैव कॉज्ड सीरियस रेपुटेशनल डैमेज लॉस ऑफ गुडविल एंड एडवर्स कमर्शियल इंपैक्ट टू द कंपनी.
0: ओके इंटरेस्टिंग. तो अगर कोई और डेवलपमेंट होता है इस केस में आपके साथ हम जरूर
1: मेक श्योर आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं अगर
0: हाँ तो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं थोड़ा केयरफुल हो जाए ना.
1: या ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep listening for the next hum boarding call and you could be flying to Vanuatu with two return tickets

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और समय की ओर देखें 18 minutes away from 7:04 now ठीक साथ पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये आपके लिए हम लेकर आएंगे. चलिए आज का हमारा बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है ये आपको बताना है, पता करना है कि कौन सी मूवी ये हो सकती है. आज भी क्लूज आपको कुछ डिफरेंट तरीके से देंगे. इफ़ यू रिमेम्बर हमने एक बार ऑलरेडी ये गेम खेला है. मैंने पूछा था करीना कपूर खान इज़ अ डॉक्टर और आपको कोई भी जवाब नहीं आ रहा था. और फिर मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि इस पर्टिकुलर सवाल के एक से ज़्यादा आंसर्स हैं. एंड इफ़ इट कम्स टू एज मोर देन वन आंसर तो कितनी सारी फिल्में हैं जिसमें करीना कपूर खान ने एज अ डॉक्टर जो किरदार है ये प्ले किया था. तो उसी तरह से आज अगर मैं आपसे बोलूं कियारा अडवाणी इज अ डॉक्टर.
3: अच्छा,
2: कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है?
3: वेरी नाइस.
2: आपको नहीं पता?
3: वेरी गुड मूवी.
2: अच्छा, आपको पता ही नहीं है? सीधा सीधा बता दो ना, नहीं पता. राइट, तो सिंस यू डोंट नो, इसका जवाब है कबीर सिंह. उसमें वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी.
3: मैंने ना
2: डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी. डॉक्टर बनी नहीं बनी, खैर मुझे याद नहीं. बट राइट नाउ आपको बताना है कि माधुरी दीक्षित एज अ डांस टीचर ये कौन सी फिल्म हो सकती है.
3: दिस वन आई नो.
2: हाँ, कैसे?
3: यू
2: जस्ट हर्ड ना, यू जस्ट हर्ड
3: क्या
2: कि माधुरी दीक्षित एज अ डांस टीचर किस फिल्म में थी? क्या आपको पता है? आपने देखी है फिल्म?
3: फिल्म देखी है कि नहीं वो याद नहीं, लेकिन मुझे पता है कौन सी फिल्म है.
2: ठीक है, तो अगर आपको भी पता है तो BF लिखे, फिर उसके बाद अपना आंसर लिखे और अपने नाम के साथ हमारे पास 5599 पर सेंड कर दे. जवाब देने के लिए 5 मिनट्स का टाइम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. माधुरी दीक्षित एज अ डांस टीचर, कौन सी बॉलीवुड फिल्म है ये?
3: बहुत सारी चीजें आज मार्क की जा रही है, सेलिब्रेट की जा रही है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे और उसके साथ आज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी मार्क किया जा रहा है. आज बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ, उनमें शामिल हैं बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, पोएट हैं, डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं. भूपेन हजारिका, इनका जन्म आज के दिन हुआ था. इनके साथ सिंगर चिन्मयी, ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं. रोनू स्क्रूवाला, इनका भी आज जन्म हुआ. और आज के दिन 1933 में जन्म हुआ था आशा भोसले जी का.
2: ओके, सो बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरीज मार्क की जा रही हैं. फिलहाल आपसे हमने सवाल पूछा है आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस करने के लिए. तन्हा, आई एम रियली सॉरी, आपने जो आंसर भेजा है वो गलत है. पहला जवाब आपने भेजा है हम आपके हैं कौन, नहीं वो रॉन्ग है. और आपने दूसरा जवाब भेजा है दिल तो पागल है, वो भी रॉन्ग है. दिल तो पागल है में शी वॉज अ डांसर नॉट अ डांस टीचर. तो आप हमें बताइए वो कौन सी फिल्म हो सकती है जिसमें माधुरी दीक्षित ने किरदार प्ले किया था ऑफ अ डांस टीचर. और अपना आंसर जो है आप हमारे पास भेज सकते हैं. तन्हा के दो आंसर्स गलत हो गए. रोनल्ड, आपने कहा कलंक, नहीं कलंक भी गलत जवाब है. कलंक में नहीं, शी वॉज नॉट अ डांस टीचर. आई मीन शी वॉज परफॉर्म करती थी वो एक सभा में, बट नॉट अ डांस टीचर. और सिखाती थी बट नॉट लाइक अ डांस टीचर, इंस्ट्रक्टर जैसे नहीं. एक
3: अच्छा.
2: एक मूवी है जिसमें उन्होंने पूरा लाइक कैरेक्टर ये प्ले किया, लाइक शी वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू डांस एंड ऑल. पर एनीवेज, चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर हमारे पास सेंड कीजिए. 5599 पर BF लिखना है सबसे पहले, फिर अपना आंसर अपना नाम.
4: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: फिलहाल 10.2 डिग्रीज टेम्परेचर है सुपर सिटी ऑकलैंड में. हाई ऑफ 15 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे. ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर आज का रहेगा. मौसम के बारे में कहा गया है बादल छाए रहेंगे लेकिन बाद में चलकर साफ मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है. सनसेट होगा 6 or 7 PM पर.
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको. स्प्रिंग सेल ऑन नाउ. ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living.

0: finance experience. Call 0800 634 234.
1: Mega Finance Keywords say good morning and welcome to Morning Madness on Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM aur Rover par Parmesh aur unki team se aap baatein kar sakte hain unke amazing services se fayda uthane ke liye but is ghante bahut sari cheeze hongi including aapko yaad dila de ki this is the final week aaj Tuesday hai Wednesday Thursday Friday 3 more days to go before hum boarding call jo hai ye khatm ho jaye
2: Absolutely, it's coming to an end और हम आपको पहले से बता रहे हैं भाई खत्म होने वाला है ताकि you don't miss out on it और अगर अभी तक आपने इसमें पार्ट नहीं लिया है तो final reminder है ना आपके लिए पार्ट लेने का
1: तो आपको करना क्या है सुनते रहें जैसे ही आपको बोर्डिंग कॉल सुनाई दे रोवर पर जाकर एंटर काउट नाउ पर आपको एंटर करना होगा बोर्ड नाउ टू गो इनटू द ड्रो और अभी तक कितनी एंट्रीज आ चुकी हैं कुछ और अपडेट्स बाद में हम आपको देंगे वैसे अगर लिंक आपके पास नहीं है तो ऑल यू गॉट टू डू इज आप BC लिखकर 5599 पर भेज दें ताकि पहले से ही लिंक आपके पास हो और आप तैयार रहें जब भी बोर्डिंग कॉल आपको सुनाई दे On the breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Yes, तो आप पार्ट ले सकते हैं मतलब अपनी अपनी एंट्रीज जो है ये रजिस्टर करा सकते हैं हमारे साथ पिछले घंटे हमने सवाल पूछा था आपसे बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस्ट करने के लिए बिफोर वी डू दैट हमारे पास कई गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी आए हैं एंड लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट एज वेल आज सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैसेज मैंडी ने भेजा है उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा थैंक यू सो मच मैंडी आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: उसके बाद आज गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड पीजे सल्लू गल्फा बफंग परुओ से आपको भी ये दिन ये सुबह मुबारक हो
2: जय सियाराम पूजा एंड विजय हनुमान जी के आशीर्वाद से ये मंगलमय हो जय बजरंगबली बॉबी मान जी ने हमारे पास मैसेज भेजा है ऑल द वे फ्रॉम USA थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए प्लस हमारे सवाल का जवाब भी इन्होंने टेक्स्ट किया है शालू है साथ में तना है फिजा है रोनल्ड है स्नेहा है अमायरा गुड मॉर्निंग टू यू थैंक यू सो मच अमित आपने हमारे पास मैसेज भेजा था फ्लैटबुश से और आपने कहा आई लव माई डॉटर अमायरा थैंक यू आपके मैसेज के लिए और उसके साथ साथ हमारे पास मेधा इनका मैसेज आया है और नितिका इन्होंने भी अपना मैसेज सेंड किया है सो हमने बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा था माधुरी दीक्षित एज अ डांस इंस्ट्रक्टर और अ डांस टीचर कौन सी फिल्म हो सकती है आपने कहा था आपको पता है
1: या आजा नचले
2: यस सॉरी फॉर अ चेंज कितना प्राउड फील कर रहे देखो आपके चेहरे पर स्माइल देखो जरा मतलब यू गॉट द आंसर करेक्ट तो कितना खुश है आप
1: एग्जैक्टली वैसे अगले घंटे आज हमारी कुछ बहुत खास बातें जो है ये होनी है किन से होनी है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे

0: fans experience. Call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes.
2: तो आज सबसे पहले मेष यानी एरिज आपकी खातिर कहा जा रहा है, आज ऑफिस में काम पूरा करने के लिए पेशेंस और कंटिन्यूअसली मेहनत जो है ये इम्पोर्टेंट होगी। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी एक्सपर्ट से कुछ एडवाइस ले ले तो अच्छा होगा। फाइनेंशियली दिन बढ़िया रहेगा, रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है और आज अपने खान पान को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करें।
3: वृष ने टोरस आपके लिए कहा गया है कि आज चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच जितना आपका रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प यू गेट थ्रू अ बिजी डे। और हो सकता है कि कोई आज आपके पास आए सलाह मशवरा के लिए, तो अगर ऐसा कुछ आप कर भी रहे हैं, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में कहा गया है कि सिंपल कॉन्वर्सेशन आपके रिश्ते को और भी अच्छा बना सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, नेटवर्किंग और डायलॉग से काम आगे बढ़ सकता है और मार्केटिंग में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं आज आपको अच्छा खासा काम मिलेगा। साथ घूमने या बातचीत के लिए, अपने पार्टनर के साथ घूमने या बातचीत के लिए टाइम निकाले, मेंटली आज आप काफी रिलीव्ड फील करेंगे।
3: करके ने कैंसर आपके लिए कहा गया है, यू मे फील अ लिटिल मोर इमोशनल देन यूजुअल टुडे। आज थोड़े ज्यादा भावुक रहेंगे आप और किसी के बातों का और किसी के एक्शंस को आज ओवरथिंक ना करें। ऐसा आप करने वाले हैं बट कोशिश करें कि ना करें। फोकस करें उन चीजों में जो आपको अच्छा फील कराता हो, हैप्पी फील कराता हो, सिक्योर फील कराता हो आज के दिन।
2: सिंह यानी लियो, अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस ट्रेवल के जरिए कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आप बनाएंगे, पैसों का फायदा आपको हो सकता है। काफी एनर्जेटिक आज आप रहेंगे, लेकिन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट इज इक्वली आज आपके लिए जरूरी।
3: कन्या यानी वर्गो, आज आपके लिए बताया गया है कि आज बहुत बिजी रहने वाले, यू गॉट प्लेंटी थिंग्स ऑन योर प्लेट, लेकिन सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ये समझ ले, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, उसी हिसाब से उन्हें करें, देन यू फील मच मोर इन कंट्रोल। आज जहाँ भी पैसे इन्वॉल्व है, एनी थिंग दैट हैज़ समथिंग टू डू विद मनी, बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ सोचनी है।
2: उसके बाद तुला यानी लिब्रा, आज आपकी खातिर कहा जा रहा है कि आज पति पत्नी के बीच लाइफ जो है काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ये अच्छी तरह से आप पढ़ ले, जांच ले, तभी उन पर साइन करें। आज प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको फायदा हो सकता है।
3: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है कि आपका इंट्यूशन आज के दिन खास तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर कोई यू नो फीलिंग आ रही है कि ऐसा नहीं ऐसा है, इस पर भरोसा करे, इस पर नहीं करे, ट्रस्ट करे अपनी फीलिंग को, और समथिंग डजंट फील राइट देन उस फीलिंग को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। कीप योर प्लान्स क्लोज टू योरसेल्फ, किसी को रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
2: नरियनी सेजिटेरियस, जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उस पर ध्यान दें। नए डील्स पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियली कोई रिस्क ना ले तो अच्छा रहेगा। और आज आपके लिए कहा गया है कि पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का मौका भी आपको मिलेगा।
3: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज आपके लिए कहा गया है हार्ड वर्क जो है, इसके लिए जितनी भी मेहनत जो आपने की थी, जितना भी हार्ड वर्क आपने किया था, अब शुरुआत हो चली कि वो सारी चीज़ें जो है आपको इन रिटर्न मिले। इट विल पे यू ऑफ, और आज आपको कई तरह के रिकग्निशंस मिलेंगे। यू हैव बीन क्वाइटली वर्किंग ऑन, तो इसमें आपको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा। स्टे फोकस्ड, डिस्ट्रैक्शंस जो है इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा, अदरवाइज अपनी मंजिल से और भी दूर होते जाएंगे आप।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, चेंजेस के अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अपने आप को अपस्किल करने का मौका आपको मिल सकता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस या शॉपिंग से बचें और इन

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
2: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products.
3: These are some things you can achieve in one blood or plasma donation appointment. Visit nzblood.co.nz to book.
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
5: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
6: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
7: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
6: Now you can. Come and walk through 2 fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
7: Now that I like the sound of.
6: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
10: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
13: Celebrity Alarm. Hit it.
14: सेलिब्रिटी अलार्म आज का आपके लिए लेकर आने से पहले आपको इतना बता दें कि आपको याद होगा पिछले लास्ट वीक हमने इसके बारे में आपको बताया था कि टुमारो इज द डे जब 10,000 पब्लिक सर्वेंट्स विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक रिमेंबर
15: यस वी डिड स्पीक अबाउट इट
14: सो आज 8:15 हम बातें करेंगे पब्लिक सर्विस एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी ड्वेन लियो से और उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली द मेजर इश्यूज जिनका वो सामना कर रहे हैं एंड कल क्या कुछ होने वाला है हाउ इज दिस स्ट्राइक एक्चुअली गोइंग बिकॉज 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है ना हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट अस जो न्यूजीलैंडर्स हैं हम पर कैसे असर पड़ने वाला है और कई अन्य चीजों के बारे में 8:15 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
15: सो तैयार रहेगा इसके लिए लेकिन उससे पहले चलिए आज के हमारे सेलिब्रिटी जिनकी आवाज आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन सेलिब्रिटी अलार्म
16: पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था
17: अच्छा जी
16: कराची
17: अच्छा जी
16: और उस वक्त आपको भी याद होगा बहुत एक मशहूर गायिका आई थी उसका गाना आपने भी सुना होगा आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आया नाजिया हसन
15: तो ये कौन है
14: हाय हाय हाय
15: इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता है ना
14: जब भी मैं इनको देखता हूँ या इनकी आवाज सुनता हूँ या ऐसा कुछ भी हो मुझे कपिल शर्मा की बहुत याद आती है
15: क्योंकि वो इनकी मिमिक्री करते
14: हैं हाँ और कोई एक लाइन वो बोलते थे एक या दो लाइन

0: वो
1: डायलॉग
0: हाँ वो मुझे
1: तो बस एक वर्ड याद आता है इनके पास सुनते ही, जस्ट दैट वन वर्ड, वो ऑटोमेटिक ऐसे यू नो निकल जाता है मुंह से. बट कौन है ये, हम जानते हैं कौन है ये, पर क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे पास अपने आंसर्स आप सेंड करें. लिखिए BF, उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम 5599 पर आपको भेजना है. सो आज की हमारी सेलिब्रिटी, उनकी आवाज एक बार फिर आपको सुना रहे हैं, एंड हियर वी गो.
2: पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था,
3: अच्छा जी,
2: कराची,
3: अच्छा जी,
2: और उस वक्त आपको भी याद होगा बहुत एक मशहूर गायिका आई थी, उसका गाना आपने भी सुना होगा, आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आए, नाजिया हसन. तो मैं
1: जल्दी से अपने आंसर हमारे पास आप सेंड कर दे, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या आज किसी ने इनकी आवाज पहचानी है या नहीं.
4: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
6: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने कन्फर्म किया है कि उनकी पार्टी ने फ्यूल टैक्स पॉलिसी का कॉस्टिंग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसका पूरा फिस्कल प्लान PREFU के आने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। हिपकिंस ने नेशनल के 4.6 बिलियन डॉलर्स शॉर्टफॉल वाले क्लेम को खारिज करते हुए कहा कि लेबर अगले टर्म में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बीच फ्यूल टैक्स 25 सेंट्स पर लीटर तक नहीं बढ़ाएगी। नेशनल सरकार जहां 2028 से टैक्स बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट फंड को टॉपअप करने की प्लानिंग कर रही है, वहीं लेबर ने फंडिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को स्केल करने की बात कही है। नेशनल पार्टी ने इलेक्शन पॉलिसी अनाउंस करते हुए ये कहा है कि वो देश में और ज्यादा लोगों को होम ओनर्स के रूप में देखना चाहती है। 5% होम लोन डिपॉजिट को लेकर नेशनल पार्टी ने उधर अपना नया पॉलिसी जो है ये रिवील किया है। 13 साल के एक लड़के को यूथ एड के हवाले किया गया है, जब ऑकलैंड की एक दुकान से $6,000 लागत के पोकेमॉन कार्ड्स जो हैं ये चोरी हुए। पुलिस का कहना है कि ये टीनेजर जो है एक रिंग बाइंडर के साथ हैंडरसन में दुकान से भाग निकला जब दुकानदार बिजी था। मामले की तहकीकात की गई और आरोपी को थोड़ी ही देर में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल ब्लैक्स टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने चौथे और अंतिम टेस्ट मैच को जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। कोच डेव रेनी का कहना है कि टीम जो है ये लगातार मेहनत कर रही है ताकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत कर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दे। उधर इस वीकेंड होने वाले इस मैच के लिए साउथ अफ्रीकन टीम में 2 चेंजेस किए गए हैं। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
5: Get ready.
6: Stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum, accurate traffic.
7: Switch to AMI car insurance.
8: A high of 16, fine and cloudy today. A crash on the Northern Motorway northbound, blocking all lanes just after Greville Road. Avoid the area. Coming in on the northern, very heavy at Silverdale and Greville to Sunnynook, then slow to the city. 24 minutes in from Constellation, 50 from Silverdale. Northwestern 32 in from Massey, slow from Massey with some heavy patches. Southern 40 in from Manukau, slow on and off from Papakura.
7: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
10: मुझे भी।
9: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
11: Please use your imagination for the following ad.
12: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
11: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
13: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
14: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800 862 342। That's 0800 862 342 for free and confidential mental health support.
15: A proud
0: proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
15: हमारी कोई ब्रांच नहीं है
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
3: Birthday greetings.
16: इसका बर्थडे भाई?
17: मेरा भी बर्थडे है. चलो लाइन में आ जाओ.
16: Happy birthday to you.
2: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज का दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन सुखलाल जमुनादास जी हैं सेंड्रिंगम में, सावित्री अग्रवाल न्यूलिन में और परमजीत सिंह मनचंदा जी हैं फ्लैटबुश में. आप तीनों आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम सभी की ओर से, आपके सभी चाहने वालों की ओर से ये खास दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
18: और इसके अलावा आज अपना थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. वेरी हैप्पी थर्ड बर्थडे टू द किंग ऑफ आवर हाउस कियान राम. लव एंड किसेस फ्रॉम मम एंड डैड. सिस्टर्स हैं आपकी नायशा नायरा और साथ में आपके नाना और नानी हैं अजय नाजी हैं दादा एंड दादी और प्लस जितने भी आपके कजन से सभी ने आपको याद किया है. कियान तो सिर्फ 2 साल के, तो या 3 साल के माफ कीजिएगा, आई डोंट थिंक सो अंडरस्टैंड मच ऑफ इट, बट अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कियान. हैप्पी बर्थडे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.

0: 1034
1: मेगा फाइनेंस की ओर से आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको भी अपना फाइनेंस वगैरह कराना है, यू ड्रीमिंग ऑफ बाइंग योर फर्स्ट होम या फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड यू नीड टू गेट योर फाइनेंस सॉर्टेड, तो आप परमेश से जरूर बातें कर सकते हो मेगा फाइनेंस।
2: और सवाल आपने पूछा था आज, तो इतना इजी था कि मुझे लगा
1: कि सभी लोग सही आंसर्स देंगे।
2: हम ऐसा बोलेंगे कि भाई इतने सारे आंसर्स आए हैं कि आप सभी का नाम लेना मुश्किल होगा।
1: हाँ, और फिर आंसर्स सभी सही देंगे ये भी मैंने सोचा था। दो तीन लोगों ने तो जितेंद्र लिखकर भेजा है, तो थोड़ी गलती होगी वहाँ पे। और इसके अलावा किसी ने नाजिया हसन ही लिखकर भेज दिया। ये नाजिया हसन की आवाज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिस इज अ मैन स्पीकिंग। नाजिया हसन अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, उनकी आवाज़ कैसे हो सकती है यार। ये नाम उनका जरूर मेंशन हुआ पर वो नहीं है। तो चलिए एक आखिरी बार आपको सुना रहे हैं, इट्स नॉट जितेंद्र ऑल्सो, अगर आप सोच रहे कि जितेंद्र है तो ये कौन है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
3: पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था,
4: अच्छा,
3: कराची,
4: अच्छा,
3: और उस वक्त आपको भी याद होगा बहुत एक मशहूर गायिका आई थी, उसका गाना आपने भी सुना होगा। आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आए, नाजिया हसन।
1: तो इनका नाम सिर्फ मेंशन हुआ, ये नाजिया हसन नहीं है। और जैसे कि हमने कहा जितेंद्र भी नहीं है, तो कौन हो सकते ये, हमने कुछ बातें करी थी। आपने कहा था कि जब इनका नाम सुनते या इनको देखते तो आपको कपिल शर्मा याद आते, बिकॉज एक लाइन वो बोलते, एक डायलॉग। अब मैंने बोला था एक वर्ड मेरे दिमाग में आता है, तो वो वर्ड बता दे क्या, टू मेक थिंग्स इजी।
2: ना ना,
1: द वॉइस इज हो जाएगा फिर ना,
2: द वॉइस इज सो You know, easy to identify.
1: Okay, I mean, हमें लग रहा है easy to identify, पर क्यों यार फिर भी कोई पहचान नहीं पा रहा है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बट nevertheless, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड किए हैं। वेमाउथ से सचिदा है, साथ में सुनील आपका भी मैसेज हमें मिला है। गुंजन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर आंसर। सनी का मैसेज आया है, दवनेश ने मैसेज किया है, और फ्लैट बुश से रवि आपका भी मैसेज आया है। सो आज की हमारी सेलिब्रिटी कौन है सेलिब्रिटी अलार्म में, ये आवाज़ आपको पहचाननी है, जवाब आप हमारे पास भेजें। और फिलहाल जबकि 20 मिनट बाकी हैं 8 बजने में, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, अगर आप एक कीर्तन गायक है, कलाकार है, और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपनी कलाकारी जो है ये दर्शाने का, लोगों तक पहुंचाने का, तो इसके लिए क्या करना है आपको जानने के लिए सुनते रहिए।
5: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: इस बार का बहुत ही खूबसूरत ये गाना आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम आवर हार्ट टू योर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक बाय जावेद अली एंड साहिर अली बग्गा। फिल्म जो है ये आई थी मेरे ख्याल से 2013 में, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, ये उसका ट्रैक है। आप इस गाने का मजा लीजिए, और हमारे सवाल का जवाब जो है ये भी आप मैसेज कर सकते हैं। ऋषि कपूर किसी ने भेजा है 5244, नहीं ये भी गलत है।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम Accurate Traffic.
6: WM's Great Spring Cleanup is on.
7: Cloudy patches, mainly fine today, high of 16 degrees. Not fine on the northern motorway if you're heading out of the city. All lanes blocked northbound after Greville Road off-ramp due to a crash. Coming in, 24 minutes Constellation Drive to town, 50 from Silverdale. Very heavy at Silverdale, slow at Otia Valley. Heavy at Constellation and slow to the city. Southern 40 in from Monaco, slow from Papakura. Northwestern 32 from Massey, slow from there.
6: Book and be in to win a gift card from Woolworths, Bunnings or Mitre 10. T's and C's apply.
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
10: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
11: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or credit card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump, T's and C's apply. See caltex.co.nz.
0: comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
1: The Breakfast Show with Vijay and Poo.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए कई आंसर्स आए हमारे पास. राजू ने कॉल भी किया, इन्होंने अपना जवाब दिया. नरेश का जवाब आया. संध्या है, इन्होंने भी अपना आंसर भेजा. साथ में सोम है, विनिल है मनुरेवा से. कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, नाम नहीं लिखा है अपना. और उसके अलावा मंजू है, मोविन है, पापाकुरु से गुरप्रीत, इनका भी मैसेज आया है. जयश्री ने अपना आंसर भेजा है. पापा टोयोटो से प्रणेश चंद्रा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. हरी है, साथ में निमी है, नीलेश दयाल, इन्होंने भी कोशिश की है बट अनफॉर्चुनेटली इनका जवाब गलत हो गया. साथ में एक और एक मैसेज आया है. अच्छा, विनील ने वापस से जवाब जो ये भेजा है. सो आज जो आज आपको हम सुना रहे थे, इट वाज नन अदर देन शत्रुघ्न सिन्हा. और बहुत से लोग इनको शॉटगन इस नाम से भी जानते थे ना.
2: जी जी बिल्कुल.
1: पर इस नाम से क्यों बुलाते थे? क्यों, कोई मूवी की थी क्या उन्होंने इस नाम से?
2: नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं की थी.
1: ओके, इंटरेस्टिंग. बट शॉटगन ये नाम कैसे मिला उनको, नो आइडिया. बट या बहुत से लोग इनको इस नाम से भी जरूर बुलाते थे. तो शत्रुघ्न सिन्हा वाज द करेक्ट आंसर. जितने लोगों ने आज हमारे पास अपने मैसेजेस भेजे, थैंक यू सो मच.
2: बस थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे. और आपने कहा था कि अगर आप एक कीर्तन आर्टिस्ट हैं या फैमिली में कोई है जो कीर्तन गाता है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी. क्योंकि काफ़ी साल हो गए हम फिजी कीर्तन संग्रह को रोवर पर शुरू हुए, एंड उसे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिया है. बट अब हम लोगों ने सोचा कि इट्स टाइम नाउ कि यहाँ हमारे न्यूजीलैंड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कीर्तन गाते हैं
1: जी,
2: और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, कि उनकी आवाज़ जो है ये भी पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए. इसीलिए इसी महीने की 25th को, फ्राइडे 25th सितंबर को, वैदिक सेंटर पापाटोयोटोय में कीर्तन की रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी. और इस रिकॉर्डिंग के लिए द गुड थिंग इज यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल सेंट.
1: ओके,
2: बिल्कुल फ्री है आपके लिए. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको रजिस्टर करना होगा. कल कई लोगों ने रजिस्टर किया. ये भी हम आपको बता दें कि सिर्फ 20 आर्टिस्ट जो हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक रात में लिमिटेड नंबर ऑफ आर्टिस्ट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. और ये रिकॉर्डिंग जो है, इतना भी हम आपको बताएं कि ये स्टूडियो स्टाइल सेटअप में किया जाएगा. जिस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके बाद उसका म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, सब कुछ उसी तरीके से होगा. इसीलिए इतना टाइम जो है इसमें लगने वाला है. तो 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी. बट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू रजिस्टर. अगर आप खुद एक कलाकार हैं या आपके फैमिली में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, जो कोई भी है कीर्तन गाता है, और आप सोचते हैं कि भाई उनका कीर्तन जो है ये हम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो रजिस्टर आप हो जाए. और रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है KR और 5599 पर भेजना है. KR
1: यानी कि कीर्तन रिकॉर्डिंग इसका शॉर्ट फॉर्म,
2: और 5599 पर भेजना है. जैसे ही आप ये भेजेंगे, एक लिंक आपके पास मैसेज में आएगा. उस लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्टर हो जाएं. और इतना भी हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटी यू ए रिकॉर्डिंग स्पॉट.
1: ओके,
2: जितने भी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आपको बताएगी, और आगे की जो डिटेल्स हैं ये आपको दिए जाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, या आप रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, आपके फैमिली में आपके बच्चे हैं, या आप खुद एक कलाकार हैं, आपकी मंडली में कोई कलाकार है जिनको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके उनके कीर्तन जो है ये दुनिया भर के लोग जो है ये सुने, तो आप KR लिखें और 5599 पर भेज दें. रजिस्ट्रेशन जो है इसी वीक बंद हो जाएगी.
1: राइट.
2: कल बहुत सारी एंट्रीज और रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी आई हैं. तो अगर उससे पहले ही 13th को रजिस्ट्रेशन बंद होना है, अगर उससे पहले मोर देन इनफ रजिस्ट्रेशंस आ जाते हैं,
1: तो हम टाइम से पहले ही रजिस्ट्रेशंस बंद कर देंगे. यानी 13th ऑफ सितंबर से पहले बंद हो जाएगा. इसीलिए आपको रिमाइंड करा रहे हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू नो ऑफ समवन हु विल बी इंटरेस्टेड, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो इसका हिस्सा बन सके और अपने अपने आप को रजिस्टर करा सके बिफोर द 13th ऑफ सितंबर.
2: तो अभी आप क्या करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी से थ्रोबैक के बीच KR लिखकर 5599 पर हमारे पास भेज दें. K और R के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए.
1: राइट, गेट स्टार्टेड. और अपने अपने रजिस्ट्रेशन आप हमारे साथ जरूर करा सकते हैं फॉर फिजी कीर्तन संग्रह कीर्तन रिकॉर्डिंग, जो 25th ऑफ सितंबर को होने जा रहा है एट वैदिक सेंटर पापाटोयोटोय में. और अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए इसके बारे में, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं. यू कैन आस्क अस, गिव अस अ कॉल, टेक्स्ट अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. पर याद रहे 13th of September को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, और अगर उससे पहले 20 आर्टिस्ट का जो हमारा स्पॉट है ये फिल हो गया तो 13th से पहले ही रजिस्ट्रेशन हम क्लोज कर देंगे. फिलहाल 7 मिनट बाकी है 8 बजने में ठीक आठ पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट, जिसके बाद अगले घंटे रश आवर की शुरुआत आप सभी के साथ होगी. बट फॉर नाउ अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय अ वेरी अमेजिंग सिंगर, अनफॉर्चुनेटली नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड विद अस, पर उनकी आवाज आज भी बड़े ही प्यार से सुनते हैं हम. के वो लम्हे 2006 में आई थी फिल्म, उसी का ये गाना.

0: accurate traffic.
1: Kitchen Mania at the Auckland Home Show.
2: Fine today, lots of clouds, 16 at high. Heading away from town on the northern motorway, a crash has had the motorway all lanes blocked just after Greville Road. Avoid the area. Coming in on the northern, 33 minutes from Constellation Drive to town, 50 from Silverdale. Heavy at Silverdale, slow at Otia Valley, then heavy patches from Constellation. Southern, 48 Manukau to town, slow from Papakura, heavy spots. Northwestern, 42 from Massey, same deal.
1: Visit the Kitchen Mania displays at the Auckland Home Show this weekend.
3: Coffee? The usual?
4: How about the unusual?
5: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
9: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
10: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
9: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
10: Now that I like the sound of.
9: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: Time check.
14: Good morning, it's Amity Gadbushe here.
13: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. Police are guarding a property in Rotorua following a serious incident. Emergency services were called to the suburb of Glenholm after 10:30 last night. Police expect to have a visible presence in the area while inquiries continue. They say further details will be released proactively when they become available. Alarm bells are ringing about the cost barriers facing trainee pilots. Aviation Industry Association's Simon Wallace says they work across multiple sectors like agriculture.
16: In order for New Zealand to function and connect itself to itself, we need a good supply of pilots. And if there is no change, then in 5 years' time, we'll be training very few pilots.
15: An online portal's been set up by Save the Children for kids to unofficially cast a vote this election. Spokesperson Jackie Southey says the results should be taken seriously.
17: Because children are living the policies that politicians are implementing now, and we can learn from their lives now to make sure that we're doing the best for them.
15: And in case there was any doubt, Prince Harry and Meghan are still unable to use official HRH titles in the UK. The King clarified the situation that they remain non-working members of the royal family. He says their charitable work is done in a private capacity. To sport, commentator Tony Johnson would give Leroy Carter another crack against the Springboks in Baltimore. The All Blacks wing missed a couple of tackles that led to tries in the third test defeat. TJ told the DSPN podcast that Carter's positives outweigh the negatives.
18: He's really, really quick, and that has been instrumental in some of the great attacking play that the All Blacks have got. I'm sure he won't miss a tackle like that again.
15: Meanwhile, the Springboks have made just two changes for Sunday's fourth and final test. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Bollywood ke sabse bade hit gaane.
19: Yeah.
13: Hum.
19: Teri bes hai faru. Meri highs ke liye.
13: Hum. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare. where learning is fun. Call 0800 462626.
14: Super City Auckland mein filhal temperature has gone up to 12.2 degrees, high of 15 expected hai later today. Aaj overnight kafi thandi rahegi because 6 degrees temperature bataya ja raha hai. Sunset hoga 6:07 PM par. Waise to bhi mausam thoda cloudy rahenge in the morning, lekin baad mein chalkar saaf mausam ka anumaan hai.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
0: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manuka.
13: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज का हमारा जो ट्रेंड पेट्रोल है, ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको इतना हम बताएं, यू विल बी अमेज्ड. जस्ट इमेजिन.
14: हाँ, इमेजिन कर रही मैं, बोलिए.
3: जस्ट इमेजिन, लाइट्स फ्लिकिंग, डीजे है कंसोल पर
14: जी,
3: म्यूजिक मिक्स कर रहा है, एकदम ग्रूवी बीट्स जो है ये है, एंड अलग अलग कलर्स जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपके समझ में क्या आएगा क्या हो रहा है?
14: पार्टी हो रही है.
3: पार्टी हो रही है, एग्जैक्टली पार्टी हो रही है. लेकिन ये पार्टी नॉर्मल पार्टीज की तरह नहीं है.
14: क्यों?
3: एक ऑस्ट्रेलियन डीजे और प्रोड्यूसर है, लेनी पियर्स.
14: ओके.
3: ये अपनी पार्टी जो है ये लेकर गए इंडिया, एंड मोस्ट ऑफ देम वे सोल्ड आउट.
14: अच्छा.
3: हाँ,
14: ऐसा क्या हुआ वहाँ पे?
3: ऐसा हुआ है कि इस ये जो पार्टी थी इसमें नॉर्मल गाने जो है ये नहीं थे,
14: तो
3: थोड़े अलग थे.
14: जैसे कि
3: इसमें कोई अल्कोहल नहीं था
14: पार्टी में.
3: हाँ,
14: ओके.
3: मिल्क शेक था.
14: ओ, जस्ट बच्चों की पार्टी सुनी थी.
3: टोडला रेव पार्टीज जो है, तो ये अपना टोडला रेव वर्ल्ड टूर जो है ये लेकर पहुंचे इंडिया, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, एंड इट्स ऑल लाइक सेटअप एकदम पार्टी वाले थीम में, एंड पेरेंट्स आर डांसिंग विद देयर किड्स.
14: यंग एज में इंट्रोड्यूस कर रहे पार्टी लाइफ स्टाइल को. हाँ, बोल रहे आप.
3: आई मीन किड्स आर एंजॉयिंग, जस्ट आई मीन बेबी शॉक.
14: इट्स अ गुड फॉर्मेट बिकॉज बच्चों के लिए एनवायरनमेंट नहीं होता ना, जहाँ पे दे कैन जस्ट गो एंड डांस.
3: हाँ, वो अपने घर पे ही
14: खुद का कॉन्सर्ट कर लेते हैं. वो खुद टीवी चल रही होती है, उसके सामने खुद ही कॉन्सर्ट चल रहा होता है उनका. बट ऐसा स्पेशल एक प्रोग्राम जहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा हो या दे कैन जस्ट गो एंड एंजॉय द सॉन्ग्स दे लव लिसनिंग टू, दे आर ग्रोइंग अप लिसनिंग टू, और नर्सरी राइम्स एंड स्टफ, मजा आता होगा यार.
3: Yeah,
14: I'd also like to go to this party though. बट यार न्यूजीलैंड में नहीं हुआ ना.
3: नहीं नहीं, अभी न्यूजीलैंड में तो मैंने इसके बारे में नहीं सुना है.
14: क्या हुआ यार, ऑस्ट्रेलिया से इतने घंटे का सफर तय करके इंडिया गए, फ्यू आवर्स का सफर तय करके न्यूजीलैंड नहीं आ सकते थे ये?
3: अभी शायद न्यूजीलैंड में उनको उतना ऑडियंस नहीं मिला होगा शायद, या लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया होगा, पता लोगों को पता नहीं होगा. लेकिन जस्ट इमेजिन ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा था, हमको पता नहीं था. व्हेन इट वेंट टू इंडिया तब हमें जाकर पता चला कि इट्स हैपनिंग देयर.
14: पर ये पहले से ही था शायद, लोगों को पता भी हो, सिर्फ हमें ही नहीं पता था. हाँ. ये भी हो सकता है, पर इंटरेस्टिंग है. तो काफी ट्रेंड कर रहे हैं डीजे.
3: हाँ.
14: क्या नाम है डीजे का?
3: लेनी पियर्स,
14: राइट, फॉर हिज टॉडलर रेव पार्टी. 6 मिनट हो रहे हैं फिलहाल हमारे स्टूडियोज में, वैसे 8 बजकर, और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. दिस इज द रश आवर. आज है ट्यूसडे 8th of September, और थोड़ी देर बाद आज के हमारे स्पेशल गेस्ट्स ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे.
3: याद रहे पब्लिक सर्विस एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी ड्वेन लियो, इनसे कल होने वाले नेशनल स्ट्राइक के बारे में, पब्लिक सर्विस स्ट्राइक के बारे में हम बातें करेंगे.
14: एंड डोंट फॉरगेट, इसी घंटे प्ले होगा हमारा क्यू टू बोर्ड फॉर आवर हम बोर्डिंग कोल competition. This is the final week jahan par aap participate kar sakte hain. To be very very precise, it's all coming to an end on Friday. To aapke paas opportunity sirf aaj, kal aur parso tak ki hai, jahan par aap apne naamon ko draw mein shamil kara sakte hain to win two return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines, aur saath mein $1000 spending money. Is ghante jaise hi queue to board play ho, bas ek choti si cheez aapko karni hai. Aapko visit karna hai Rover app, jahan par ek competition page पेज आपको मिलेगा जहां लिखा होगा एंटर कोड नाउ, और वहीं पर आपको जाकर एंटर करना है बोर्ड नाउ, ये दो शब्द बोर्ड नाउ जैसे ही आप टाइप करोगे फिर सबमिट करना, और उसके बाद स्ट्रेट आपकी एंट्री जो है ये हमारे साथ रजिस्टर हो जाएगी. वंस यू आर पार्ट ऑफ द ड्रॉ, बस आपको सुनते ही रहना है, हमारे साथ बने रहना है टू फाइंड आउट हु हैज वोन दीज टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुवातु, एक ऐसा पैसिफिक आइलैंड कंट्री जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया हो. वेरी रिलैक्स्ड, यू नो, आइलैंड टाइप लाइफ स्टाइल आप वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बीचेस हैं और वहाँ का खाना है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, प्लस आपको हम स्पेंडिंग मनी भी दे रहे हैं दैट यू कैन गो एंड यूज़. इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने आपके लिए चीज़ें संभाल ली है, बस छोटी मोटी चीज़ें जो आपको खुद वहाँ पर करनी होंगी उसके लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं.
3: यू गो एंड एंजॉय इन वनुवातु एंड सोलोमन एयरलाइंस के साथ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे. मिस्टर मठा मठा का मैसेज ज़रा देर से सही लेकिन आ गया है, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग. राइट नाउ अभी देखें आप में से कितने लोग हैं जो तैयार हैं आज के हम बोर्डिंग कॉल के लिए.
14: अगर आपको कंपटीशन लिंक जो है पेज का, कंपटीशन पेज का लिंक चाहिए, हमने पहले भी बताया कि रोवा पर जाकर शायद ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो एक आसान तरीका है कि आप BC यानी कि बॉल और कैट, बी फॉर बॉल सी फॉर कैट, BC लिखकर अपने नाम के साथ हमारे पास भेज दें. इन दोनों लेटर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. वंस यू सेंड दिस मैसेज टू अस, आपको ऑटो रिप्लाई में कॉम्पिटिशन लिंक मिल जाएगा.
3: एंड अगर आप रेडी हैं आज के हमारे हम बोटिंग कॉल के लिए तो भी BC लिखकर 5599 पर अभी हमारे पास भेजे. रिमेंबर हमने आपको बताया है मोर देन 4200 एंट्रीज आर ऑलरेडी इन.
14: यस.
3: एंड अगर आपने नहीं इन किया है अपनी एंट्री तो यू आर मिसिंग आउट.
14: यस.
3: क्या पता आज की सुबह ही आपके लिए सबसे लकी हो.
14: एब्सोल्युटली. थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉनस्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुवातु. flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए और टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए हम.ova.nz विजिट करें.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है,

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और आज है Tuesday 8th of September and as you all know कि every Tuesdays को हमारे साथ NZPMI से पोल जुड़ जाते हैं. आज सुबह सुबह भी हमारे साथ ये देने के लिए आए हैं and some very important updates भी आपके लिए लेकर आए. So a very good morning to you, Paul. कैसे हैं आप?
3: I'm good, thank you. Thank you very much for getting me on the show again and morning to all the audiences, everyone. Yeah.
2: So, Paul, getting into the questions jo aaj zaruri hai hum sabhi ke liye janna. Abhi 2nd September ko hi OCR announcement hua jahan par 2.75 ho chuka hai OCR. Aur aapke hisab se iska homeowners ya development par kya asar pad sakta hai?
3: Yes, I mean, there is not only 2.75, there is another increase expected, which is what has been indicated in by next month, which is October. So essentially, what I know is that most of the banks have already passed that wherever there was a variable home loan, that increase of 0.25% has already been passed to the consumers. So clearly, the repayments have gone up now. All logo ka jo bhi variable pe hai, unka upar jayega. So they will feel a tougher time in coming times, and I think this is where even we come on the role ki if you're going to sell the property just because it's getting harder to pay, then it is like a very hard decision because market is not going to give you a very good price for your property. So I suggest or wahi ek tarika hai ki aap hold kijiye ya apna potential dekhiye development ka, because it's a great time to build actually. जब भी मार्केट नीचे जाता है इस हिसाब से तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ बिल्डिंग थिंग्स अप बिकॉज़ देन यू वेट फॉर द राइट टाइम टू सेल द डेवलपमेंट्स. यू डोंट रियली सेल व्हेन द मार्केट इज लो, यू वेट फॉर द मार्केट टू बिकम फाइन, व्हिच होपफुली शुड बिकम फाइन एनीवेज. जो फर्स्ट होम बायर्स हैं या जो हम लोग बनाते हैं डेवलपमेंट्स में, मोस्टली टाउन हाउसेस स्टार्टिंग फर्स्ट होम 600-700K के, वो मार्केट आई मीन इट्स अ वेरी क्लोज इंडिकेशन कि आफ्टर इलेक्शन इट शुड गेट बेटर, यू नो, बिकॉज ऑल द गवर्नमेंट्स आर मेकिंग एन एंडेवर कि दे आर चेंजिंग पॉलिसीज टू अलाउ फर्स्ट होम बायर्स टू बाय थिंग्स, एंड आई थिंक ऑल दोस पॉलिसीज आर रूटेड अराउंड जस्ट आफ्टर द इलेक्शंस. सो इट विल बी अ गुड टाइम टू फॉर द फर्स्ट होम बायर्स टू बाय थिंग्स आफ्टर 12 मंथ्स 18 मंथ्स वंस दे आर एबल टू फिक्स अप देयर लोन्स एंड लेंडिंग.
2: ओके okay. और अगर आपसे हम ये जानना चाहे कि जब मॉर्गेज रिपेमेंट्स और लिविंग कॉस्ट वगैरह जबकि ये भी सारे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में होम ओनर्स के लिए बेचना बेहतर है या प्रॉपर्टी डेवलप करके उसका वैल्यू बढ़ाना?
3: सेम, सो आई मीन पार्टली आई आंसर्ड दैट, लेकिन आई थिंक मोस्ट होम ओनर्स विल हैव द सेम यू नो इश्यूज की हाउ टू स्पेंड मनी व्हेन दे हैव नो मनी, and I think that remains as a very very you know tricky part of the thing, and that's where we came on the board ki we get so many calls nowadays to say that ki Paul, can we develop? So I think it's a good time to you know reach out to us to see whether if you can develop or not as the first thing. If your house is in a you know residential mix of urban or urban where you can develop, there are no overlays and things like that, then I would 100% suggest ki you should hold the sale for now rather than selling in a market jahan par aapko paise bhi nahi milenge and you will not really end up getting anything out of your asset. It would be lot better ki you develop for next 12-18 months and wait. Anyways, market would be for a first home buyer would be a lot better than what it is now. And based on that, like anyone with a medium segment land, something around 600 squares to 800 squares, not a big subdivision, like something about 1,000 squares, जहाँ पे आपके 6-7 टाउन हाउसेस बन सकते हैं या 6-7 स्टैंड अलोन घर बन सकते हैं, इट वुड ऑलवेज बी अ गुड आइडिया टू डेवलप रादर देन सेलिंग एट अ चीपर रेट टुडे.
2: ओके, सो पॉल, जितने भी लोग फिलहाल हमें सुन रहे हैं, इफ दे आर इन अ सिचुएशन वेयर दे वांट टू डिस्कस देयर केस, देयर पर्टिकुलर सिचुएशन टू सी कि क्या वो कर सकते हैं, हाउ डू दे गेट इन टच विद यू?
3: Thank you. It's the same. They can go to our website, www.nzpmi.co.nz. There is a tab there saying that get my property assessment. It's a free site assessment that we are doing. And that's one way. And the other way is they can always call us on our 0800 number.
2: Okay. Thank you so much for your time. Ab thode dino baad ek aur ek mangalwar ko aapse mulaqat hogi aur baatein hum aapke saath zarur karenge. Thank you for your time, Paul. Have a wonderful day.
3: You too. Thank you very much. Thank you.
1: थोड़ा तो हॉल बना दे.
4: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
2: Hum. Accurate traffic.
3: Star Insurer, specialist motor insurance.
4: Cloudy patches on a fine day, high of 16. A crash northbound on the Northern Motorway after Greville has had all lanes closed most of the morning. Still going on. If you're coming in, half an hour Constellation to town, 50 Silverdale to the city. Slow at Silverdale, heavy on and off from Greville. Northwestern, 40 minutes in from Massey, we're heavy on and off there to town. Southern at 50 in from Manukau, slow from Manurewa, heavy most of the way Manukau to the city.
3: Trust Star Insure's passionate experts to create personalised policies for your car, motorcycle or camper.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
8: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: Let's go.
0: Straight from the heart.
15: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: Accurate traffic.
2: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
3: Finding cloudy today with a high of 16. A crash northbound on the Northern Motorway around Greville Road has had lanes, all lanes blocked all morning, and it's still going on. Coming in on the Northern, starting to ease, half an hour Constellation to the city. Heavy on and off from Greville and slow at Silverdale. Northwestern, 32 minutes in from Massey, easing, heavy on and off from there. Southern, 45 Manukau to town, slow from Manukau, heavy from Otahuhu.
2: Keep more of your money with Simplicity, the low fee, non-profit KiwiSaver provider.
4: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
9: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: वैसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी हैं जो आपके साथ हम प्रोग्राम के दौरान शेयर करते रहते हैं और आज भी एक ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये एक बहुत ख़ास चीज़ है जिसके बारे में जानना समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस इसीलिए पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support. Yaad rahe, 0800-862-342 par aap call kar sakte hain for confidential and free mental health support.
13: Kripaya dhyan dein. दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी.
14: आएगी, आएगी, आएगी.

0: एग्जाम नंबर 36 पे आएगी।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
2: देखो हम आ गए।
1: Accurate traffic.
3: Rewards rush only at BP.
4: Fine today, plenty of cloud, high of 16. We've had a crash on the Northern Motorway northbound all morning, which has got all lanes closed around Greville Road. Avoid the area. If you're coming in on the Northern, it's easing. 25 minutes from Constellation Drive to town. Heavy Greville to Milford, then slow to the bridge. Northwestern, 28 in from Massey, slow from Te Aroha to heavy patches. Southern, 42 Manukau to town, heavy from Otahuhu.
3: Scan everyday rewards for double points on fuel and shop. T's and C's apply.
5: Kya baat hai us khane mein? जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए।
6: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new Garden Showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
7: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
8: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
9: Visit Flooring Extra at the Auckland Home Show this weekend for Home Show exclusive savings. Or discover the deals in one of our 10 Auckland stores. Hurry, savings ends Sunday.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: Home. Time check.
12: Good morning, it's 9 baj rahe hain.
11: You by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Police cordons are in place around a property in Rotorua's Glenholm. Officers were called to an incident in the area around 10:30 last night and expect to have a big presence there today. There are no further details, but police say there is no threat to the wider community. Delays are expected for some time yet after a large truck and trailer crashed into a bus on Auckland's Northern Motorway. All lanes northbound from Aotea Valley off-ramp are blocked. Diversions are in place, but motorists are warned to allow extra time. A Hamilton not-for-profit is noticing an increase in pensioners going hungry. St Vincent de Paul's is running a support program for over 65s, offering food parcels. General Manager Mike Rolton says older people are going without.
14: And then last year it was about 2,500, and this year it's going to be over 3,000. So we've just noticed a trend in growing.
13: The Port of Tauranga's planned expansion has got the backing of locals. Its Stellar Passage development has been granted fast-track approval. Business Chamber Matt Cowley says it's the growing centre of New Zealand's logistical network.
15: It's quite exciting to see the very innovative and automated plans that are coming to support New Zealand's growth, let alone the Bay of Plenty's.
13: The Springboks in sport have made just two changes for Sunday's fourth and final test against the All Blacks in Baltimore. Cheslin Colby's out with a broken jaw, replaced at fullback by Damien Vilemsa. Mornay Vandenberg starts at halfback. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Rugby World Cup packages selling now. The Warriors could welcome back Jackson Ford and Dallin Watini-Zelezniak from injury when they name their team at 6 tonight for Saturday's NRL Finals clash with the Dolphins at Mount Smart.
1: Sports News.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
11: Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare. We're learning.
17: planning is fun. Call 0800 462626.
12: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम बताया जा रहा है क्लाउडी रहेगा, लिल बिट ऑफ शावर्स हियर एंड देयर, और शाम के समय थोड़ी हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश यानी कि वर्षा होने की संभावना नहीं है. सनसेट तो 6:07 पीएम पर होगा आज. टेम्परेचर राइट नाउ 13 डिग्रीज, ओवरनाइट 6 डिग्रीज रहेगा.
17: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
18: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको, स्प्रिंग सेल ऑन नाउ. ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री. टीज एंड सीज अप्लाई ओनली एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
1: व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो?
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: चलिए आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें दुनिया भर में होती हैं दैट एक्चुअली मेक्स यू से क्या बकते हो. अपेरेंटली व्हेन आई रेड दिस स्टोरी आई आल्सो वेंट अहेड एंड आई सेड कि रियली लाइक ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग. तो इंटरेस्टिंग है जहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नया ट्रेंड जो है ये शुरू हुआ है, और दिस इज़ बेसिकली अबाउट द फैक्ट कि कुछ लोग हैं या कुछ पर्टिकुलर जनरेशन के लोग हैं जो ये चीज जो है ये करते हैं. आपको पता है मैक्सिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिंग? MAXXING. मैक्सिंग का मतलब होता है बेसिकली एक इंटरनेट स्लैंग है ये, या टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू मैक्सिमाइज अ स्पेसिफिक क्वालिटी, हैबिट या एरिया ऑफ लाइफ. मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे उस पर्टिकुलर चीज को करने में आप एकदम हद पार कर रहे हो, बेसिकली यू आर गोइंग टू द मैक्सिमम लेवल या टू द मैक्सिमम एस्पेक्ट ऑफ इट आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. इट्स अ यंग जनरेशन स्लैंग. सो अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि कुछ जेंजी मेन हैं जो डेट से पहले नहा कर नहीं जाते हैं, होपिंग कि उनका जो नेचुरल बॉडी सेंट है विल मेक देम मोर अट्रैक्टिव. और इस टर्म को फेरोमोन मैक्सिंग जो है ये कहा जा रहा है.
20: या कोई भी मैक्सिंग हो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया.
12: अभी कुछ लोगों का नेचुरल बॉडी सेंट जो है ये अच्छा होता है, स्पेशली आफ्टर दे हैव देयर शावर. हर किसी के पास एक बॉडी सेंट है, ठीक है, सबका अपना अपना है, डिस्टिंक्टिव स्मेल है, और वो स्मेल जो है वो आपको उन लोगों के और कनेक्टेड फील कराती है, उनके और करीब लाती है. लाइक फॉर एग्जांपल आप उनका शर्ट पहन लो, उनके जैकेट पहन लो, उनके पिलो पर आप सिर रख कर जब आप रेस्ट करते हो यू कैन हैव दैट सेंट, आप वो स्मेल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप नहा ही नहीं रहे हो तो आपका नेचुरल बॉडी सेंट थोड़ी ना हुआ. वो एक और एक सेंट के साथ आपका नेचुरल बॉडी सेंट जो ये मिक्स हो जाता है ना. सो ये एक वायरल इंटरनेट डेटिंग ट्रेंड है जहाँ पर डिओड्रेंट तक लोग कभी कभी स्किप कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा सेंट हो ये अपने शरीर पर ना रहने दे, क्योंकि इसे एक तरीका माना जा रहा है नेचुरल बॉडी ऑडर का, जहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि ये इररेसिस्टिबल है.
20: yeah.
12: पर अगर आई बेट कि अगर आप अपने डेट पर जा रहे हो और सामने वाले को आपने ये बता दिया कि मैं बिना नहाए आया हूँ ताकि आप मेरी नेचुरल बॉडी के ऑर्डर का मजा ले सको, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल फील मोर नेचुरल एंड कनेक्टेड एंड ऑल, यू बेट कि आपको वापस कोई डेट पे नहीं बुलाएगा.
20: I don't know. मुझे तो मैंने कहा भाई पसंद नहीं आया.
12: सो नया ट्रेंड शुरू हो चुका है विच इज कॉल्ड दी फेरोमोन मैक्सिंग. इसके बारे में अगर आप चाहें तो और पता कर सकते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर डन दिस, या कभी आपने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट करंट जेन ज़ी मेन जो है ये ट्राई आउट कर रहे हैं.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। 13 मिनट हो रहे हैं इस समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 9 बजकर एक मैसेज आया है यहाँ पर। हमने आज बातें की थी ना क्या बकते हो के बारे में, और उसमें हमने आपको बताया था अबाउट द फेरोमोन मैक्सिंग, जो एक नया ट्रेंड चालू हुआ है इसके बारे में। अपेरेंटली रवि ने हमारे पास मैसेज किया, उन्होंने कहा कि माई वाइफ नीड्स माई बॉडी ओडर और स्वेट स्मेल टू स्लीप। She loves the smell when she was pregnant. Also, I leave my shirt not washed once if she is sleeping without me in bed. ये normal है.
1: Yeah, exactly.
0: Because वो आपकी पत्नी है और उनको आदत है, like she is used to your scent, right? And not just your wife, your kids, your parents, your siblings, उन सबको ये एक habit होती है, एक आदत होती है.
1: उनको पता चल जाता है, especially अगर बच्चों में है, जब बच्चे बोलते नहीं हैं या फिर बहुत छोटे हैं, वो आपको आपके
0: scent से पहचानते हैं. True. तो वो एक चीज है, और फिर you've already maintained a relationship here, ना? You have a relationship जिसके बाद चलकर वो आदत है. And as I said कि हर किसी का एक scent होता है, जो लोग जो है उनके करीब के होते हैं वो उस सेंट से ही उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे ज्यादा अटैच्ड होते हैं। बट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज द फैक्ट कि एक नया ट्रेंड हुआ है शुरू, जहां पर पहले डेट पर जब कुछ आदमी जा रहे हैं तो वो बिना नहाए बिना किसी डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये उनका नेचुरल बॉडी सेंट जो है ये ज्यादा अपीलिंग रहेगा टू द अदर पार्टी जिनसे वो मिलने जा रहे हैं, जिनके साथ वो डेट पर जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग, सो दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. बट थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना मैसेज जो है शेयर करने के लिए. फिलहाल 15 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर एंड इट्स टाइम फॉर व्हाट्स गोइंग ऑन.
2: What's up, Auckland?
1: काफी चीजें हो रही हैं या आने वाले दिनों में होने को हैं. श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडसन में मंगलवार 15 सितंबर से रविवार 20 सितंबर तक श्री गणेश उत्सव जो है ये मनाया जाएगा, और आप जाकर जरूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं. हर रात 7 बजे के बाद 7:20 PM से 9 PM तक श्री गणेश कथा जो है ये होगी, और उसके बाद सैटरडे 19 सितंबर को श्री गणेश सामूहिक पूजा होगी. रविवार 20 सितंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक श्री गणेश पूजा और हवन, और 12 से शाम 4 बजे के बीच श्री गणेश विसर्जन यात्रा जो है ये होने को है. और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मंदिर को संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन 8364647 पर.
0: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि श्री कृष्ण जी का जो बहुत ही खूबसूरत श्रीमद् भागवत कथा है ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ब्रज रास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किनकर जी के साथ, और ये श्रीधाम वृंदावन नाम संकीर्तन जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जो कि यहाँ न्यूजीलैंड आ रहे हैं. 7 डेज के लिए श्रीमद् भागवत कथा जो है ये लेकर आएंगे आपके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th of September और ये 20th of September तक रहेगा, 7:30 PM टू 9:30 PM तक, भारतीय मंदिर सेंडिंगम में, जहाँ आप पहुँच सकते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए. सो दिस इज़ बेसिकली योर चांस टू एक्सपीरियंस द जर्नी फ्रॉम वृंदावन टू ऑकलैंड थ्रू श्री कृष्णा जीज डिवाइन लीलाज, टाइमलेस विजडम और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज का हिस्सा बनते हुए, सेलिब्रेटिंग द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिछवाई. आप इसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो याद रहे इट्स हैपनिंग 14th of September से लेकर 20th of September तक, 7:30 PM टू 9:30 PM भारतीय मंदिर, जहाँ आप पहुँच सकते हैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho ma aa gaye.
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy.

0: and Vanuatu from $375, Honolulu from $475, and Hong Kong, Singapore or Japan one way from $675. Only for a limited time. Book now at fijiairways.com.
1: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, Quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Yeah.
8: Hum.
9: Teri besehaf aadu. Meri highs ke liye.
8: Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 21 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में वैसे 9 बजकर और राइट नाउ यू नो टॉकिंग अबाउट इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है ऑप्शंस है लोगों के पास एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न इसके बारे में हमने कई बार बातें की है पर ऑन दी अदर हैंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर बातें करें सो देर आर सो मेनी अमेजिंग पॉडकास्ट अवेलेबल एज वेल जो लोग चेकआउट करते हैं या फॉलो करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट सर्टन थिंग्स सर्टन चीज़ों के बारे में एंड One of the very popular Indian podcasters जिनके बारे में हम अगर आपको mention करें राज शमानी ये नाम लोगों के लिए काफी जाना माना है ना
12: yeah
11: he started off struggle quite a lot मैंने इनका कोई एक तो वीडियो देखा था जहां पर इन्होंने बताया था कि जब इन्होंने भी शुरुआत की थी ऐसा नहीं कि overnight ये इतने पॉपुलर हो गए थे या इनके पॉडकास्ट में इतने बड़े बड़े गेस्ट्स आने शुरू हो गए थे इट टुक टाइम ही फेल्ड आई थिंक 2 or 3 times विद अ पॉडकास्ट एंड देन उसके बाद जाकर इन्होंने जब बाद में ये जो इनका लेटेस्ट पॉडकास्ट है ये शुरू किया दैट वन एक्चुअली क्लिक्ड एंड ये काफी पॉपुलर हुए और इनके पॉडकास्ट पर काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े गेस्ट्स भी आते हैं
12: और
11: रिसेंटली इनके पॉडकास्ट पर आए एंड्रयू ह्यूबमैन एंड्रयू जो है ये काफी जाने माने शख्सियत है और अगर इनके बारे में बताए ही इज अ प्रोफेसर ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट एट स्टैनफोर्ड और इनका खुद का भी एक पॉडकास्ट है ही इज द होस्ट ऑफ ह्यूबमैन लैब और जहाँ पर ये साइंस से रिलेटेड आपके ब्रेन से रिलेटेड काफी बातें जो है ये करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में जो आई थिंक करीबन 3 घंटे कुछ चली इसमें इन्होंने कुछ खास बातें जो है ये की इन्होंने ये रिवील किया कि हमारा जो ब्रेन है इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल नॉट सक्सेस और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की इन दिस कॉन्वर्सेशन कि कैसे आपका मॉर्निंग कॉर्टिसोल रिदम जो होता है ये आपकी एनर्जी आपकी इम्यूनिटी आपका एंटायर डे का फोकस कैसे कंट्रोल करता है और साथ में इन्होंने बताया कि क्यों विनर्स और लूजर्स जो होते हैं दे फील द सेम डिस्पेयर बट डू द ऑपोजिट थिंग उसके साथ उस फीलिंग के साथ और कैसे आप अपनी स्लीप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस यू नो इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग योग निद्रा विदाउट एडिंग आवर्स टू योर नाइट

0: और ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ और चीज़ों के बारे में भी बातें की हैं, जैसे कुछ थ्री स्टेज करियर या फिर व्हाट आर द थ्री स्टेज करियर फ्रेमवर्क ऑफ ग्राइंड रेगुलेट एंड मास्टर, कैसे ये प्रैक्टिस में आप इसे ला सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बातें की. बट देयर वाज वन थिंग दैट दे हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट एंड इट रियली कॉट माय अटेंशन, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये एक चीज़ लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज़ ओवरथिंकिंग. और ओवरथिंकिंग जो है ये आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है टाइम्स. सो बेसिकली इनका एक द लेफ्ट कॉलम एक्सरसाइज है जो ये कहते हैं कि ओवरथिंकिंग के लिए अच्छा है, इट हेल्प्स यू. और इसके लिए इन्होंने कुछ एडवाइस दिए कि महीने में एक बार खुद के साथ समय निकालें, एक शीट ऑफ पेपर ले लें या फिर एक किताब भी आप रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जहां पर आप दो कॉलम्स बनाएं, राइट कॉलम लेफ्ट कॉलम. लेफ्ट कॉलम में आपको लिखना होता है व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, जिसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको वरी कर रही हैं बट दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, जिसमें चीज़ें जैसे कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कोई हमें पसंद करता है या नहीं, लोग आपसे क्या कह सकते हैं, क्या आपके बॉस आपके कलीग्स आपको अप्रूव करते हैं, नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें. एंड दीज थिंग्स इट कैन एक्चुअली ऑक्यूपाई ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटल स्पेस इवन दो आपके पास लिटिल या नो कंट्रोल है ओवर दीज थिंग्स. एंड्री ह्यूबरमैन ने कुछ पॉइंट्स किए हैं नोट डाउन, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि एसेंशियली आपको ये समझना ज़रूरी है व्हाई यू आर स्पेंडिंग योर मेंटल एनर्जी ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इजंट योर्स टू सॉल्व. और ये समझाने के लिए आपको एक राइट कॉलम जो है ये तैयार करना होगा. एंड राइट कॉलम में आप लिख सकते हैं अबाउट दोज थिंग्स व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, व्हाट यू कैन एक्चुअली कंट्रोल. जैसे अगर आपने लेफ्ट कॉलम में लिखा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो राइट कॉलम में आप उसका एक रिस्पॉन्स लिख सकते हैं. अगर आपको ये लगता है पीपल माइट जज यू, तो राइट कॉलम में उसका रिस्पॉन्स आप लिख सकते हैं, आई डू माई प्रिपरेशन प्रॉपरली, ताकि आप सेटिस्फाइड है दैट यू हैव डन योर बेस्ट. लेफ्ट कॉलम में अगर आपने लिखा है व्हाट इफ आई फेल, राइट कॉलम में यू कैन राइट आई डू द नेक्स्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आप उस पर एक्शन लोगे. तो द रियल इंटरेस्टिंग पार्ट इज इन्होंने ये नोट डाउन कराया है कि व्हेन ही नोटिसेस हिज माइंड इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉलम ही ट्राइज टू ब्रिंग हिमसेल्फ बैक ऑन टू द राइट कॉलम. वो फोकस, जैसे आपका दिमाग जाता है लेफ्ट कॉलम पे जो चीज़ें आपने लिखी दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कंट्रोल, तो आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराते हो, बताते हो टू कम टू द राइट कॉलम, थिंग्स जो आप अपने ऊपर कर सकते हैं, थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू टू मेक योर सेल्फ बेटर, या थिंग्स दैट आर एक्चुअली इन योर कंट्रोल, उस चीज़ों पर आप अपना फोकस जो है ये शिफ्ट करें. सो इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट समथिंग जो इंस्टेंटली हो जाता है, और इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पर अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है इन ट्रेनिंग योर ब्रेन. एंड ऑनेस्टली ये एक पर्टिकुलरली गुड टेक्निक है फॉर समवन हु टेंड्स टू मेंटली रिहर्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये आपको ना केवल पॉजिटिव सोचने के लिए कहता है, लेकिन इट आस्क्स यू सेपरेट कंसर्न्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस. तो आपका ब्रेन जो है ये तैयार रहता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. सिर्फ एक वो लाइन नहीं सुननी होती आपको ना कि अरे पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ऐसे नहीं होता. इट टेक्स टाइम फॉर यू टू ट्रेन योर ब्रेन.
1: सो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ों का सामना कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस आउट.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हाँ, सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहाँ दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहाँ था वहाँ अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
5: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new Garden Showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
6: Alright, Pepper, now we're going to do a radio ad.
7: Can't you just use my line from the TV ad?
6: Well, let's just do it again, please, Pepper.
7: Phone dollars are for phones. Obviously.
6: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
7: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
6: QTs and Cs.
7: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
6: Cool, and the end bit.
7: One New Zealand. Let's get connected.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: What's going on?
11: आज का हमारा डेली राउंडअप, पहली जो खबर है डेली राउंडअप में, राइड शेयर ड्राइवर्स पर और टफ कंट्रोल्स की मांग की गई है क्योंकि पैसेंजर कंप्लेंट्स जो हैं इसमें काफ़ी इंक्रीज देखा गया है। वन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 465 कंप्लेंट्स जो हैं ये किए गए थे अगेंस्ट टैक्सी एंड राइड शेयर ड्राइवर्स बिटवीन जनवरी 2024 एंड मार्च 14th 2026। इनमें 164 कॉम्प्लेन्स 2024 में, 249 2025 में और 53 कॉम्प्लेन्स इस साल के पहले तीन महीनों में हैं। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लेन्स में शामिल हैं सेक्सुअल असोल्ट अलोंग साइड क्लेम्स ऑफ ओवरचार्जिंग और इनअप्रोप्रिएट ड्राइवर बिहेवियर। और मजोरिटी ऑफ जो कॉम्प्लेन्स हैं इनमें राइड शेयर कंपनीज शामिल हैं। Small Passenger Service Association के मैनेजर वॉरेन क्विक ने बताया, द फिगर्स वेर लाइकली ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट्स रिकॉर्डिंग ओकरिंग। उन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में शायद शिकायत नहीं की जाती होगी। और उन्होंने बताया कि ही वॉज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट एन इंक्रीज इन कंप्लेंट्स ऑफ अ सेक्सुअल नेचर इन्वॉल्विंग ड्राइवर्स इन इंडिपेंडेंट टैक्सी सेक्टर ओवर द पास्ट टू ईयर्स। इंडस्ट्री एडवोकेट्स का कहना है कि इसको लेकर पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और टाइट रेगुलेशंस की जरूरत है।
12: इसके अलावा एक और एक खबर आ रही है जहां पर कहा गया है कि डॉक्टर्स इन न्यूजीलैंड, ये फिलहाल काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ लोगों को अटेंड कर रहे हैं विद इन्फ्लुएंजा ए राइट नाउ। ये एक फ्लू स्ट्रेन है जो कि स्प्रेड हो रहा है एंड इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंजा ए सब क्लेड के। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की, ये जो स्ट्रेन है नेसेसरली दैट इज़ नॉट नेसेसरली मोर डेंजरस देन फॉर नॉर्मल फ्लू, लेकिन ये काफ़ी ईजिली जो है ये स्प्रेड होता है। सो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप बीमार हो रहे एट द सेम टाइम दैट GPs आफ्टर आवर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स आर बिकमिंग एक्सट्रीमली बिजी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्यों आप इसे जस्ट एज अ फ्लू जो ये नहीं देख सकते। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ज़्यादातर लोगों के लिए फ्लू इज़ हॉरिबल बट वो रिकवर कर सकते हैं इन अबाउट आफ्टर 7 to 10 days। ये ज़रूरी नहीं है कि इट साउंड्स लाइक अ लॉट, बट इमेजिन 100,000 लोगों को अगर ये फ्लू हो जाए तो 2 to 3% अराउंड 2,000 to 3,000 लोग जो है ये सीरियसली बीमार हो सकते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल नीडिंग मेडिकल केयर। सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है, इसमें शामिल है फ्लू जो है पर्टिकुलरली डेंजरस हो सकता है ओल्डर लोगों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, बहुत यंग बच्चों के लिए एंड उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी कुछ हेल्थ कंडीशंस है, साथ में उन लोगों के लिए जिनके इम्यून सिस्टम्स बहुत वीक है. अब ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स ये वॉर्न कर रहे हैं कि न्यूजीलैंडर्स को फ्लू को जस्ट एज अ फ्लू डिसमिस नहीं करना चाहिए. इन्फ्लुएंजा ए जो है बहुत एक्सट्रीमली क्विकली स्प्रेड हो रहा है एंड वाइल दिस स्ट्रेन डजंट नेसेसरली अपीयर टू कोज मोर सीवियर इलनेस देन यूजुअल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं एट द हेल्थ सिस्टम राइट नाउ. और मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिकवर आफ्टर मिजरेबल वीक और सो, लेकिन जैसे कि हमने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ ऐसे लोग जो वनरेबल होते हैं ऐसे सिचुएशन में, उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो सकता है. डॉक्टर्स का कहना है वैक्सीनेशन रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ or to reduce pressure on New Zealand's health system currently.
11: एक लोकल स्टार्टअप है Aotea Energy, इनका दावा है कि वो न्यूजीलैंड में हाउसहोल्ड्स को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सेव करने में मदद कर सकते हैं वाइल ईजिंग द प्रेशर ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है. कल इस स्टार्टअप ने लॉन्च किया अपना IE1 जो कि एक स्मार्ट होम बैटरी है और उसके साथ एक कंपेनियन ऐप है. क्या होता है कि ये स्मार्ट होम बैटरी जो है ऑटोमेटिकली चार्ज होता है जब पावर इज चीप
12: एंड
11: पावर्स द होम व्हेन प्राइस ऊपर चले जाते हैं. तो ये स्मार्ट बैटरी है ना,
12: राइट,
11: और उसके साथ एक ऐप है. तो जब बिजली का दाम कम होता है
12: तो ये चार्ज करता है,
11: ये चार्ज हो जाता है, और बिजली का दाम जब ऊपर जाता है
12: तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये खुद अपने आप को चला देता है,
11: तो ये आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है. और इस जो स्टार्टअप है इसके जो फाउंडर है तामा तोकी, ही ग्रिव अप ऑन ग्रेट बैरियर आइलैंड.
12: ओह वाओ.
11: उन्होंने बताया है कि लिटरली आई ग्रिव अप ऑन ऑफ द ग्रिड, यानी कि बिजली सेवा नहीं थी, दे हैड टू रिलाई ऑन बैटरीज एंड उनको पता है कि किस तरह से टू कीप द लाइट्स ऑन, टू कीप द हाउस वार्म एंड ऑल, वो सारी चीज़ें बैटरीज की कितनी जरूरत पड़ती थी. तो ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन दिस थिंग हैज बीन डेवलप्ड.
12: दैट्स इंटरेस्टिंग. तो ये कब तक अवेलेबल होगा, एनी आइडिया?
11: अभी शायद कल इन्होंने
12: इसके बारे में डिटेल्स आई हैं.
11: हाँ.
12: इन्हें अगर इन्होंने पेटेंट करा लिया तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा ये, बट इट्स अ गुड थिंग इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कितने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं दिन ब दिन. हमने इसके बारे में शो पर भी कई बातें की है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो है ये पैसे बना रहे हैं एंड द कंज्यूमर्स आर फेसिंग द रेस्ट ऑफ इट.
11: Aotea Energy ने फॉर्मली अभी इसके लिए कैपिटल नहीं रेज किया है. दे आर करेंटली बैक्ड बाय हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स जिनमें से स्टीफन टिंडल और वेन के फाउंडर वॉन फर्गसन जो है ये शामिल हैं. सो लेट्स सी कब तक और इसके बारे में और डिटेल्स जो है ये सामने आते हैं. भी स्टफ पर इतनी ही रिपोर्ट इसके बारे में अवेलेबल थी.
10: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें
2: आज की दो बातों में पहले कहते हैं कि इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है. इंसान कर्म करने में जो भी करता है उसमें
3: उनकी मर्जी है.
2: हाँ, मनमानी कर सकता है.
3: yeah.
2: लेकिन फल भोगने में नहीं.
3: ट्रू, वेरी ट्रू.
2: रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस व्हाटएवर यू मे से, उसमें आप मनमानी नहीं कर सकते. और दूसरी बात ये भी किसी ने कही है और सोचें इसके बारे में हो सके तो, कि कितने अजीब हैं हम लोग. कितने अजीब हैं हम लोग. हकीकत में कम और तस्वीर में ज्यादा मुस्कुराते हैं.
3: ये भी सही है भाई, क्या ही करें अब तो. चलिए, उम्मीद है कि आज की इन दो बातों से कुछ सबक, कुछ सीख जरूर आपको मिले और आप भी खुद को बेहतर और से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें. 12 मिनट बाकी 10 बजने में. अपना और अपने का ख्याल रखिएगा. अब आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर. हम आपके साथ जुड़ जाएंगे.

0: क्योंकि आ रही है
1: माय टाइम विद काशिका।
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। 8 सितंबर का दिन है और आज आपका बर्थडे एनिवर्सरी है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। और माय टाइम में आपके साथ जुड़ने के लिए भाई बिग थैंक यू टू नन अदर देन कशिश फूड्स, जिनके सौजन्य से 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है। हाउ हैव यू बीन? आई हैव बीन जस्ट ओके, जस्ट अंडर द वेदर। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ मौसम ऐसा होता है ना जहाँ पे खांसी जुकाम और आपको तबीयत खराब होती, तो आपको लगता है भाई स्लो हो जाओ एंड लेट योर बॉडी टेक ओवर। तो आपकी बॉडी आपके लिए क्या जवाब देती है, कहती है कि भाई रेस्ट करो, गो स्लो तो गो स्लो, गो फास्ट तो गो फास्ट। बस ऐसे ही कुछ होता है इंडिकेशन। इसीलिए आई डिड टेक अ ब्रेक, बट हाउ हैव यू बीन, हाउ आर थिंग्स विद यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, खुल रहा है ऐसे में, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, ये बदलाव मौसम का जब आता है ना, खास तौर पर तब, उस समय आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्सपोजर चेंज ऑफ वेदर जो है बहुत ज़्यादा तबीयत और भी ख़राब कर देता है। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ। थोड़ी देर बाद अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेज़र क्लिनिक से नीलू हमारा साथ देने के लिए टेलीफोन लाइन पर जुड़ जाएंगी। आपका कोई सवाल उनके लिए तो डेफिनेटली आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं।
1: बचाओ क्या? ये

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ चुकी हैं विद अ बिग कंसर्न। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हर, बट ऑफ कोर्स नन अदर देन अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक, जहां पर आपको पता है कि 30 years ये complete कर रहे हैं in the industry, especially in New Zealand, with all the possible approvals they have got. A very, very good morning to you, Neelu. How are you today?
2: Very good, Kashika. Good morning. How are you doing? All well?
1: All is all right. Going great.
2: Good.
1: मुझे आपके पास एक सवाल लेकर, मैं तो नहीं, एक मदर है, क्योंकि मैंने सबसे पूछा भाई किसी को कोई जवाब चाहिए किसी बात का, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें। तो शी हैज़ अ कंसर्न एंड द कंसर्न इज दैट यू नो आजकल के बच्चे आर नॉट गेटिंग इन टू लेजर, बट दे गेटिंग इन टू नॉट वैक्सिंग बट शेविंग। एंड बिकॉज दे आर गेटिंग इन टू शेविंग बिकॉज इज फास्ट, एकदम उनको उसमें वो मिल जाता है रिजल्ट, तो उसके ऊपर क्या आप लेजर कर सकते हैं या नहीं? सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द कंसर्न मदर्स।
2: हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो चुका है, क्योंकि क्या बात होती है कि जैसे आप 13-14 साल में आते हैं बच्चियां स्पेशली, तो प्यूबर्टी चालू होती है।
1: हाँ,
2: तो प्यूबर्टी में कई बार आप लोगों को, कई बच्चों को बाल ज्यादा आते हैं बजाय औरों के, एंड देन दे गेट अ पीयर प्रेशर इन दी हाई स्कूल्स कि तुम्हारे को मस्टैच है, तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम्हारे बिल, एंड दैट इज द एज वी ऑल हैव गॉन इनटू इन कशिका। बच्चे क्या करते हैं कि बाथरूम्स में गए, जो रेजर देखा डैड का, ब्रदर का, किसी का, उसको शेव करना चालू करते हैं, क्योंकि नेचुरली दे आर वेरी शाय डिस्कसिंग इट विद एनीवन बिकॉज दैट्स द एज। तो वो क्या होता है कि वो शेविंग कर करके स्किन इतनी खराब हो जाती है, दे डोंट नो कि वो सनबर्न भी उनको फिचाल हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो पहले मैं एक जमाने में बोलती थी कि 18 साल से पहले मैं नहीं करूंगी लेजर, आई वॉज वेरी मच रेजिमेंटेड, बट अब जो लाइफस्टाइल आ गया है बच्चों का, दे नो एवरीथिंग कशिका। तो अगर बाल बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली दे कैन स्टार्ट, इवन आई एम डूइंग अ गर्ल हुज इवन 13-14, बट मदर हैज टू बी देयर इन द रूम एंड मदर हैज टू सुपरवाइज द ट्रीटमेंट। तो जो भी बच्चियां हैं प्लीज, अगर पेरेंट्स उनको, एक तो ये कई बार मदर जो मेरी क्लाइंट्स कहते हैं वो सुनते ही नहीं है, तो दैट्स फाइन, वो एज है, एटलीस्ट उनको स्किन हेयर कंसल्टेशन रिमूवल के लिए मेरे पास लेकर आइए, बट इट कम्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट, किड्स आल्सो लिसन बेटर, एटलीस्ट उनको बताया जाएगा कि बेटा ये तो मत करो, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, अगर लेजर के लिए तैयार हो तो लेजर करो।
1: करेक्ट,
2: बट यस इट्स वेरी सेफ फॉर अ टीनेज स्किन, और हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चों को फिर मैं स्किन के लिए भी एजुकेट करती हूँ, सम ऑफ देम हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट।
1: Okay.
2: और अभी तो मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी हैव गॉट लिप आल्सो फॉर $10 एंड चिन आल्सो फॉर $10, टर्म्स एंड कंडीशंस आर डेफिनेटली देयर। सो वो टीनेज बच्चों में बहुत पॉपुलर जा रहा है, मतलब कई तो मदर्स लाइक सारे तो मेरे पास हॉप से मदर लेकर आई सुनकर अपना और आपका मेरा इंटरव्यू। तो शी हैड गॉट हर डॉटर हु इज 14 years। तो बच्चों को आज की डेट में हम जो सोचते हैं ना, कई बच्चों का बड़ा एक है कि करियर एक्सपो में थी, एक तो बच्चे बोले हमारी मदर कहती है अभी भी बेसन नहीं लगाओ, तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है। इफ द मदर्स आर लिसनिंग, ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं मना नहीं कर रही हूँ घर की चीजों को, बट अब समय बदल रहा है, तो कुछ चीज अगर आप उनको एजुकेट अभी से करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी बेटर। एंड लेजर इज एक्सट्रीमली सेफ कशिका, 100% नो वरीज,
1: एंड ऑन दैट टीनेज स्किन एज वेल एज।
2: जी जी जी, आई सी द स्किन फर्स्ट, मैं एकदम नहीं करती हूँ, मैं मम्मा फादर जो भी हो तो उनके साथ कंसल्ट करती हूँ, बच्चे को समझाती हूँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या वो ले पाएगा लेजर, उसके बाद
1: ग्रेट।
2: कई बार बच्चे डरते भी है ना, बट जनरली दे आर ओके, बच्चे आर टू स्मार्ट नाउ।
1: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। और जितने लोग सुन रहे हैं, खासतौर पर आप मॉम जिनका ये कंसर्न था, मैं आपको बता देती हूँ, आप स्ट्रेट अवे नीलू से संपर्क कर सकते हैं, उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं, खुद पहुंच सकते हैं एट Level 1 सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल, और साथ साथ आप अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक के ऑमिस्टन मॉल की क्लिनिक में भी जा सकते हैं। इनका वेबसाइट है avana.co.nz, 0800-128-821 इज द मैजिक नंबर, टोल फ्री नंबर जिस पर आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इवन थ्रू द वेबसाइट यू कैन। थैंक यू सो मच नीलू फॉर टुडे, अगले हफ्ते आपसे दोबारा बात होगी।
2: थैंक यू कशिका, यू हैव अ लवली डे,
1: यू टू, टेक केयर, बाय
2: बाय।
1: तो ये थी नीलू फ्रॉम अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक, ऑफिस शाउट आउट के लिए आप हो जाइए तैयार।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं।
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
5: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
6: भौकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
7: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
6: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
8: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
9: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
9: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
12: MediaWorks Complaints. How can I help?
13: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
12: Nice.
13: And you talked me into creating this funny character.
12: Great.
13: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
12: Are you?
13: Yes.
12: Are you Bobby the Baker?
13: Yes.
12: What's that thing you do again?
13: Stop it.
12: You bring the mouth.
13: Stop it.
12: I'll bring the pie.
13: Stop it, please.
12: Okay.
13: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
12: So what's the problem?
13: My name's Bruce.
14: Advertise with
15: MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.
16: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
17: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep listening for the next hum boarding call and you could be flying to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.

0: ऐसा है, जब ऑफिस शाउट आउट की बात आती है तो मेरे अजीज दोस्त विलिंगटन से आप बिल्कुल मुझे टेक्स्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच. आपने नाम नहीं लिखा बट मुझे तो एग्जैक्टली पता है आप कौन हैं. तो आपने लिखा वेरी गुड मॉर्निंग सनी ब्यूटीफुल हेल्थी, तबीयत खराब होने से बचने वाली, टेक केयर करने वाली, थैंक यू सो मच. एंड आप जब इस तरह मोटिवेशनल मैसेजेस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू वंस अगेन. एंड ये हमारा वो मसल कैफे जो है ना, उसी की टीम है. पहचान जाओ भाई, नाम नहीं लिखो तो क्या फ़र्क पड़ता, हमें पता है आप कौन है. कोई बात नहीं. अच्छा, और आपने लिख के भेजा, गुड मॉर्निंग काशिका जी, मे आई प्लीज़ नो हु इज़ द विनर ऑफ बोथ फादर्स डे कॉम्पिटिशंस. थैंक यू. ओके, अभी आई हैव टू गो बैक एंड चेक, लेकिन ये अनाउंसमेंट डेफिनेटली ब्रेकफास्ट और ड्राइव में फ्राइडे के दिन हुआ होगा. तो आपने अगर नहीं कैचअप किया या अगर आप विनर हैं तो आपको ज़रूर पूजा कॉन्टैक्ट करेगी. सो दिस इज़ हाउ द होल स्टोरी इज़. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ी देर बाद ड्रीम डायरी में आपके लिए देखते हैं आपका कोई ड्रीम है ऐसा जिसका आप इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: एक बात तो है, एक लोकल एनर्जी टेक कंपनी है, वो देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है हिला डालने वाले हैं विद अ होम बैटरी सिस्टम, जो अलाउ करेगा हाउस होल्ड को टू बाय एंड स्टोर पावर व्हेन इट इज चीप। अब ये आउटियर एनर्जी जो है ये लॉन्च करी है AE-1 बैटरी, ये ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च के लिए इस हफ्ते में। कहा जाता है ये बैटरी सिस्टम हाउस होल्ड्स को एक एक्सेस देगी टू हैव द होलसेल स्पॉट प्राइसेस फॉर अ $20 अ मंथ सब्सक्रिप्शन विथ पावर, और उसमें नेटवर्क चार्जेस और सारी जो लिवाइज हैं ये लेवीज जो हैं ये पास करेंगे थ्रू अ कॉस्ट। ये बैटरी जो एम है करेगी हाउस होल्ड के लिए कि इनफ पावर रहे, अप फ्रंट कॉस्ट जो है उसकी स्टैक अप हो जाएगी, और इट्स गोइंग टू बी एन इंस्टॉलेशन फी ऑफ $1,500, स्टार्टअप इज अराउंड 10,500। लेकिन कहा ये जा रहा है ये सिस्टम जो है एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए आप पावर खरीद सकते हैं एट होलसेल प्राइसेस व्हेन इट्स वेरी लो, और कहा ये जा रहा है कि इससे बहुत सारी पावर होलसेल इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस न्यूजीलैंड जो कि काफ़ी वॉलेटाइल हैं अभी स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई ईयर यू नो पीरियड्स, ये जो हैं काफ़ी बढ़े हुए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद इस ऐप के बाद ये फ़र्क आपको नज़र आने लग जाए। रियली
4: थोड़ा सा हॉल बना दे।
5: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.

0: झुमका
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
3: तो वैसे बरेली के बाजार में ये गाना जो था बहुत फेमस हुआ था और गाया था ऐसे आशा भोसले जी ने जिनका आज बर्थडे है तो एक हाथ प्यारे प्यारे गाने मैं इनकी भीली आपके लिए लेकर आने वाली हूँ लेट्स कीप हमिंग

0: eat better, live better, and मैं तो यही चाहूंगी कि you should also win better. क्योंकि ये समझ लीजिए घड़ियाँ कम होती चली जा रही हैं. ये आखिरी हफ्ता है आपके लिए जहाँ पर आपको इस ब्यूटीफुल से डेस्टिनेशन में जाने के लिए एक सुनहरा मौका दे रहे हैं हम. और ये है ट्रिप फॉर टू पीपल गोइंग टू वनुआटू. आपके लिए एयर टिकट्स बाय सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 कैश आप ले जा सकते हैं. तो भाई आपके लिए कभी भी ये बोरिंग कॉल जो है हम अनाउंस कर सकते हैं. और आपको उसके बाद क्या करना है, रुवा ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो जल्दी कीजिए. और आपको बोर्ड करना है उसी समय. 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. अभी तो नहीं हुआ लेकिन जब भी होगा तो मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगी. मैम योर रिमाइंडर क्लॉक ना, आई कैन एटलीस्ट डू दैट. तो याद रखिएगा कि आप बिल्कुल फ्लाई कर सकते हैं. सो बिग थैंक्स जिनके जरिए आपको ये टिकट्स मिल रही हैं, और वो हैं सोलोमन एयरलाइंस जो 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं. विजिट कीजिए इनकी वेबसाइट flysolomons.com के जरिए. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं. तो भाई कभी भी हम ये आपके लिए अनाउंस कर सकते हैं. ड्रीम डायरी का वक्त आ रहा है. स्टे ट्यून्ड.
1: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे.
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने.
1: गणराज गजानन जाऊंगा.
2: हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने.
3: कॉफी द यूजुअल.
4: हाउ अबाउट द अनयूजुअल.
5: कांट वेट फॉर कॉफी, देन डोंट. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है.
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
10: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
11: MediaWorks complaints. How can I help?
12: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
11: Nice.
12: And you talked me into creating this funny character.
11: Great.
12: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
11: Are you?
12: Yes.
11: Are you Bobby the Baker?
12: Yes.
11: What's that thing you do again?
12: Stop it.
11: You bring the mouth.
12: Stop it.
11: I'll bring the pie.
12: Stop it, please.
11: Okay.
12: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
11: So what's the problem?
12: My name's Bruce.
13: Advertise with
14: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: So I was talking to you and ek baat jo hai, mostly aapne puchha dreams aati kyun hai, common causes of getting at least bad dreams aapki, because you were stressing more on the bad dreams. It could be high anxiety, ki aapki emotionally ek strain aapki life mein kuch chal raha hai aur phir वो आपके स्लीप साइकिल में आपको रिफ्लेक्ट करने लगता है. कभी कभी सर्टन ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को ऑल्टर कर सकती हैं और फिर आपको कुछ सपने आने शुरू हो जाते हैं. इनफैक्ट सपने नहीं, नाइटमेयर्स कह सकती हूँ. इसके बाद इरेगुलर स्लीप का जो हमारा एक पैटर्न होता है या हमारी नॉर्मल स्लीप जो है डिसरप्ट हो जाती है, उससे क्या होता है कि वो रात को उसकी वजह से ये बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं. कभी कभी किसी की अंडरलाइन कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया, या फिर कोई एक और कोई डिसऑर्डर होता है जो क्रॉनिक होता है, उसी की वजह से ये सपने जो खास तौर पे बैड ड्रीम्स की जब आप बात कर रहे हैं तब आने लग जाते हैं. ऑलराइट, वी शुड स्टार्ट प्रेइंग बिफोर वी स्लीप आई फील, एंड शायद वो ड्रीम्स आपकी जो एंजल्स होती हैं आपकी वो प्रोटेक्ट करती हैं.
15: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: आज जिस हस्ती का जन्मदिन है वो है आशा भोसले। एंड एक बात तो है, मैं बहुत ही सौभाग्यवान हूँ या सौभाग्यशाली हूँ जिनकी मुलाकात हुई उनके साथ। काफ़ी अर्सा हो गया अब तो उस बात को, और मैं उन्हें एयरपोर्ट पे भी लेने के लिए गई थी। एंड जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मतलब दैट मोमेंट, दैट वन एंड हाफ आवर्स जब वो एयरपोर्ट पे उतनी थकी हुई थी और मुझे एक मौका मिला, एक सौभाग्य मिला उनको पकड़ कर ले जाकर बिठाने का, गाड़ी तक ले जाने का और फिर उनके पैर भी दबाने का, लाइक अ गुरु, लाइक आई हैड लर्न्ड हाउ टू सिंग फ्रॉम हर। तो आई फेल्ट दैट मैंने थोड़ा सा अपना एक शिष्य के रूप में कर्तव्य निभाया। एक बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग उन्हीं की आवाज़ में, जिन्हें सुनने के बाद उन्होंने शायद वो अमेरिका चली गई थी, लेकिन जब वो लौट के आई तो उन्हें पता चला कि उनके इस गाने ने कमाल कर दिया था।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है।
2: Yo, yo, Honey Singh.

0: ब्रेकफास्ट शो विद VJ एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
0: Showerdome.co.nz.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
7: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
10: थिंकिंग ऑफ एन ईवी? थिंक MG. थिंकिंग ऑफ फास्ट चार्जिंग? क्लेवर टेक, impressive range and electrifying performance. Think MG. Thinking of safety features like a 360 degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
11: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
12: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
0: Hum. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The Labour Party isn't reading into troubling poll results as election campaigning kicks into gear. MP Willie Jackson has described a recent taxpayers' union poll, which has the party at 25%, as nonsense on social media. Leader Chris Hipkins says the numbers bounce around a lot.
14: Their numbers are in the Taxpayer Union National Party poll are certainly different to other available public polls.
13: A British national is accused of punching two customs officers here as they tried to detain him for smuggling meth into the country. The 24-year-old arrived in Auckland from New York on Friday. A search of his bags uncovered nearly 17 kilos of the drug in vacuum-sealed packages. A personal locator beacon has been hailed for helping police find a hiking family in Hawke's Bay. A man reported his wife and three kids missing on Sunday evening after failing to return from Kaweka Forest. The group was airlifted out yesterday. The mother was injured. And a visible police presence is expected in Rotorua following a serious incident. Emergency crews were called to an address in Glenham last night. Police say there's no threat to the wider community. In sport, Leroy Carter is still feeling the pain from the weekend's third test defeat to the Springboks. The All Blacks winger missed a couple of tackles that led to tries in Johannesburg. Coach Dave Rennie was asked what he's going to do with Carter in Baltimore this weekend.
15: Give him a cuddle. Oh, he's such a good man, and I tell you, he was hurting. But, you know, it's part of the responsibility of him defending out wide, and I know he'll be better.
13: The match kicks off 9 a.m. Sunday morning, our time. Rugby with All Blacks, travel and hospitality.com.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Ann's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: Suchit kiya jata hai ke Mount Wellington ke electrical engineer Shailen Tatha, Rajan Royland, Krishi Shivlend, और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति नासोले सिक्स माइल्स नसीनो फिजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 021-814-900 पर आप संपर्क करें. सूचना दोबारा सुने, माउंट वेलिंगटन के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शैलेन तथा राजन रॉयलैंड कृषि शिवलेंद किता गीता के पिता कमलेश नारायण के पति नोसेली सिक्स माइल्स नसीनो फिजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 021-814-900 पर आप संपर्क करें. सूचित किया जाता है कि रॉड्रिक राम और शीमल राम के पिता उर्मिला देवी के पति विसारी लामी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार 11 सितंबर को 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 021-870-252 पर आप संपर्क करें. सूचना दोबारा सुने, रॉड्रिक राम और शीमल राम के पिता उर्मिला देवी के पति विसारी लामी फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के राम विजय की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार 11 सितंबर को शाम 4 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 021-870-252 पर आप संपर्क कर सकते हैं. एल्विस गोसाई और क्रिश गोसाई के पिता अरुणा देवी गोसाई के पति नावतू बा फिजी के भूतपूर्व निवासी पापाटोई के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. दर्शन के लिए आप 9 सितंबर को 7 से 9 बजे के बीच एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशन जा सकते हैं, जिसके बाद 10 सितंबर को शव को 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 021-0755-659 पर संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने, एल्विस गोसाई और क्रिश गोसाई के पिता अरुणा देवी गोसाई के पति नावतो बाव फिजी के भूतपूर्व निवासी पापाटोई के राजेश कुमार गोसाई की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. दर्शन के लिए आप 9 सितंबर को 7 से 9 बजे के बीच एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस पहुंच सकते हैं, जिसके बाद शव को 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे MMG में दफनाया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 021-0055-659 पर संपर्क कर सकते हैं आप.
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 15 overnight, temperature of 6. आज का फोकस्ट बताया जा रहा है, थोड़ी ठंड जरूर पड़ने वाली है. ये सदलीज जो हैं आपकी दोपहर तक कम होती चले जाएंगी. इट फील्स लाइक 15 डिग्रीज, 6-7 पर सनसेट बताया गया है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है
3: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:05 हो चुके हैं. आपका साथ मैं काशिका निभा रही हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा और ऐसे में आपके साथ बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करनी होती हैं. उनमें से कुछ बातें एक कोर्स नॉट टू फॉरगेट, ये आपके लिए घंटा कहीं पर भी बच सकता है, यानी कि बोर्ड करने का. तो कभी भी आपके लिए जब भी ये घंटा बजे याद रखिएगा. बाय द वे, हमारे रूवा ऐप के जरिए भी आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा वैसे जाने के लिए, हमारी कॉम्पिटिशन लिंक का. लेकिन हमारे रिवाइंड शो 80s के ट्रैक्स, जुक बॉक्स 80s के ट्रैक, हम रिवाइंड 60s और 70s के फिजी कीर्तन भजन और फिजी कीर्तन संग्रह, चढ़दी कला, पंजाबी हिट्स और राहत फतेह अली खान के इस अमेजिंग म्यूजिक को आप डेफिनेटली सुन सकते हैं. जब हम बात करते हैं अपने पॉडकास्ट के बारे में, तो परमजीत परमार जी जो है, इन्होंने विजय और पूजा के साथ बातचीत की, तो कुछ डिस्कशन जो था और पूरी बात, पूरा ऑडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो BF लिख के भेजें ऑडियो सुनने के लिए. इसी के साथ साथ किस तरह से आप जो भी है आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, NZ की रिकॉग्नाइजेबल वॉइस फॉर साउथ एशियन कम्युनिटी, इनका स्पेशल लव फिजी के लिए है. दिस इज अ क्रिएटर अभी जिनके साथ बातचीत की गई है और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गाइडलाइंस भी दी हैं फॉर पावरफुल बिजनेस मॉडल फॉर द फ्यूचर. 5599 पे आप बिल्कुल ड्राइव लिखकर भेज सकते हैं और आपको ये लिंक भी मिल सकता है.
0: बचाओ क्या,

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: What a beautiful song Asha Bhosle ji has sung. चलिए इस गाने को भी इंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पास वैसे सिक्स वर्ड स्टोरी कोई अगर आपके पास है तो बिल्कुल रेडी हो जाइए मेरे साथ शेयर करने के लिए. एंड वील टॉक लिटल अबाउट द फ्लू जो सबको परेशान किया हुआ है.

0: Matter.
1: तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट फ्लू. एंड इसी तरह से जीपीस के पास क्लिनिक में जब लोग आते हैं, कहते हैं कि पीपल शुड नॉट से दैट इन्फ्लुएंजा ए, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रेट पर यहाँ स्प्रेड कर रहा है. आफ्टर आवर्स भी लोग सेंटर में, हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स पर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेन है. व्हाट्स अनयूजुअल अबाउट दिस आउटब्रेक इज दैट ये बहुत इन्फेक्शियस है, और इसी की वजह से इसका वेरियंट जो है इट्स कॉल्ड सुबी सब क्लेड के, विच इज़ नोन एज हाईली इन्फेक्शियस, और बहुत ईजिली ये लोगों को इफेक्ट कर जाता है. सो इट्स क्रूशल डिस्टिंक्शन है ये कि एक रेगुलर फ्लू के बजाय दिस इज़ समथिंग एल्स. 100,000 से ज़्यादा लोग जो हैं न्यूजीलैंड में इससे इफेक्ट हुए हैं, और इस सीवियर एलनेस से 2,000 या 3,000 तो बहुत ही ज़्यादा अक्यूट केसेस में पाए गए थे. और ये इशू जो है विद द नंबर ऑफ पीपल, पता चल रहा है ये विंटर सीजन बिल्कुल ख़त्म होने के बाद ये प्रेशर हॉस्पिटल्स पर, जीपीस की क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा, और आफ्टर आवर्स मेडिकल सेंटर्स में बढ़ता ही चला जा रहा था. बट पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट पीपल, बच्चे, यंग चिल्ड्रन, और जिनकी अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं, फॉर देम इट हैड बीन डेविस्टेटिंग. ये कॉम्प्लिकेशन जो जीपी फियर करते थे, इट कुड हैव लेड टू निमोनिया एज वेल. एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो है डिहाइड्रेशन. ये अगर आपको उसके साथ, अगर वॉमिटिंग और डायरिया उसके साथ हो रहा है, तो देन डेफिनेटली हॉस्पिटल में आपको जाना ही जाना पड़ेगा. लेकिन द सिंपलेस्ट प्रोटेक्शन इज़, आपने वैक्सीनेशन लिया, फ्लू जैब लिया है, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर अ फ्री वैक्सीन, गो अहेड फॉर दैट. क्योंकि जो एजड केयर वर्कर्स होते हैं, दे सीम टू बी लिटिल बिट हेजिटेंट अबाउट इट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक मिथ है कि अगर आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो यू प्रॉबली माइट फॉल मोर सिक और समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस मिथ, बट मोस्टली देखा यह जाता है कि इट हेल्प्स यू प्रोटेक्टेड. तो बी वेरी केयरफुल एंड कोशिश कीजिए कि आप अपने सिस्टम को पीते रहें पानी, और जो अक्यूट सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गो टू द इमरजेंसी, बट डू लुक आफ्टर योर सेल्फ. या बिकॉज ये कहा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इजी नहीं है टू हैंडल.
0: Attention please, we are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: हैवान इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है
3: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है बेवकूफ होना
2: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी
4: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम
3: ये आखिरी
2: हैवान Releasing in cinemas on 11th September. Distribution partner, Forum Films. Rating TBC.
5: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Ladies and gentlemen,
7: got airplane tickets with your name on them.
6: This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
8: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
9: Six-word story.
10: Thank you, Dhaval. Ab aapki entry aayi hai. Thank you, aapne naam bhi likh ke bheja hai apna. और आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी है इवन इन साइलेंस देर इज अ केओस इजंट दैट सो ट्रू कहते एक चुप सौ सुख और यू नो साइलेंस कैन बी किलिंग एट टाइम्स सो इट्स सो राइट इवन इन साइलेंस देर इज अ केओस वेल सेड थैंक यू सो मच आपकी कहानी मैंने सुनी और बहुत बहुत मायने रखती है बाय द वे क्या आपने हमारी कहानी सुनी कि नहीं सुनी बोर्डिंग कॉल अनाउंस हो चुकी है जल्दी जाओ बोर्डिंग गेट की तरफ यानी कि आप पहुंच जाओ रोवा ऐप के जरिए हमारे लिए अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए लास्ट फ्यू डेज बचे हैं बस इसी हफ्ते की ये बात है बोर्ड नाउ क्लिक करिए और बिल्कुल एंटर कर लीजिए अपना नाम ड्रॉ में और साथ साथ अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा तो आप एक काम कीजिए आप बी सी ये लिख के भेजें और आपको 5599 पे ये लिंक आप जब टाइप करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा और आप बोर्ड कर लीजिए फ्लाइट 2112 दो टिकट हैं भाई मजाक नहीं है विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 कैश जीतने का सुनहरा मौका है आई विल नेवर मिस दिस चांस मैं तो अप्लाई नहीं कर सकती बट एनीवेज आप लोग को देख तो सकती हूँ आपकी फोटोज़ वगैरह तो देखूंगी ही देखूंगी तो 112 जाने के लिए आप तैयार हो जाइए जल्दी कीजिए बस लास्ट 2-3 days आई लेफ्ट और ये शायद गेटवे आपकी हो सकती है वैसे ये फ्लाई करते हैं 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू और इनकी वेबसाइट है solomons.com और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्टेस्ट की समझनी है तो हमारी वेबसाइट पर आप पहुंच सकते हैं इसी के साथ साथ फीजी कीर्तन में एक नई ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाने के लिए आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद और हम फीजी कीर्तन संग्रह ऑकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ में करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया तक पहुंच सकें ये रिकॉर्डिंग 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापा टोयोटो में होने वाली है अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए KR लिख के भेजे 5599 पे ऑटो रिप्लाई में आपको ये लिंक मिल जाएगा और लिंक पर क्लिक करते ही आप रजिस्टर कर सकते हैं याद रहे रजिस्टर कीजिएगा और ये एक बात बता देती हूँ कि रिकॉर्डिंग डज नॉट कन्फर्म कि आपको रिकॉर्डिंग का स्पॉट मिल गया हमें सिर्फ 20 artists की ज़रूरत है और ये कन्फर्मेशन जब आपकी आ जाएगी तो हम उसके बाद अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे 13th of September को यानी इसी संडे तक ये एंट्री आपकी मिल सकती है तो चलो एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप समझ लेना थैंक यू सोनाली फॉर बोर्डिंग द फ्लाइट इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग
5: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

वैसे एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के एक स्टूडेंट के बारे में एक बात थी, आई हैव रियली बीन वांटिंग टू शेयर विद यू. उन्होंने कुछ स्मार्ट ग्लासेस पहने थे अपने एक टेस्ट के दौरान, और ये कंसर्न बढ़ चुका है जहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं टू डू सम चीटिंग. ये मेटा ग्लासेस जो हैं ये स्मॉल बिल्ट इन कैमराज रखते हैं, और दिस कैन बी यूज फॉर फिल्मिंग वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ देम. और फिर जो आंसर्स हैं जो आउटसाइडर हेल्पर होते हैं और AI वो उनको हेल्प करते हैं. एग्जाम के सुपरवाइजर्स जो हैं वुड नाउ हैव टू चेक द स्टूडेंट्स जो ग्लासेस पहनकर एग्जाम्स देने के लिए आते हैं, सो दैट दे डोंट चीट. अब इस तरह की चीज़ जो है लोग स्मगल कर पहुँच ही जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है अपने नए तरीके इस्तेमाल करके ये यूज़ करते हैं, और एज अ यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड आउट. तो ये एक टेस्ट जो है, एक ये जो एक यू नो इनविजिलेटर्स जो होते हैं, इन्हें डेफिनेटली वो टेप करना पड़ता है कैमराज अगर नज़र आते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने पढ़कर आई हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. बट इसका एक रिटेल है बिटवीन $350 to $750 डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल. और ये मेटा की कंपनीज जो हैं दे ओन्ड बाय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक.

0: Klassiker.
1: Boah,
2: hau
1: an Rund.
3: वैसे कम्युनिटी में क्या हो रहा है ज़रूर हमें आप बताइए एंड हमें buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। श्री राम मंदिर गणेश उत्सव जो है इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस आने वाले मंगलवार से लेकर 20 सितंबर तक, तो आप पहुंच सकते हैं यहां पर जहां शाम को करीब 7:30 बजे से पहले तो 15 तारीख को गणेश स्थापना है, फिर कथा हर रोज़ की जाएगी और फिर गणेश पूजन 20 तारीख को होगा और फिर विसर्जन जो है वो भी किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली आप इस सामूहिक पूजा में पहुंच सकते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए वृंदावन से संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ब्रज रास रसिक डॉक्टर श्री कृष्ण किनकर जी पधार रहे हैं और ये 7 दिन की श्रीमद् भगवद गीता जो है 14 से लेकर 20 तारीख तक भारतीय मंदिर में करने वाले हैं 7:30 से 9:30 बजे तक। तो एक जर्नी जहाँ पे वृंदावन टू ऑकलैंड जो है श्री कृष्ण की लीला और कुछ इंस्पायरिंग कहानियाँ ये आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ जा सकते हैं। और मेरी एक प्रार्थना है कि अगर आप जा ही रहे हैं आपके कम्युनिटी में कुछ इवेंट हो रहा है तो हमें आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी आपके लिए आपके एक खूबसूरत इस मौके पर ज़रूर आपका साथ निभाएं और आपके लिए हम ये कभी भी चाहेंगे नहीं कि हम आपकी आवाज़ ना बने। तो buzz@hamfm.com पे हमें आप ईमेल कर सकते हैं।

0: Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
1: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल. अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
2: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver, or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Rescue me, recycle me.
5: So many, I think Friday ke din maine kaha tha ki glass bottles ko hum reuse kar sakte hain. Ek cheez aur hai ki in ग्लास बॉटल्स को हम, दे आर रीफिलेबल ग्लास बॉटल्स है ना, तो इनको वॉश कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट 50 टाइम्स जस्ट बिफोर इट नीड्स टू बी रिसाइकल्ड. तो घर में अगर आपके कोई एक ग्लास की बॉटल है जिसको आप रीयूज़ करना चाहते हैं, कहें कि इनडेफिनेटली इसको इस्तेमाल करना है, इंटैक्ट है, इट्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स, सो उसको थरली सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिएगा और फिर आप इसको डेफिनेटली रिसाइकिल कर सकते हैं. ग्लास इज़ 100% रिसाइकलेबल क्योंकि इसका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है ये डिग्रेड नहीं करता, वीक नहीं होता व्हेन इट मेल्ट्स डाउन एंड इट यू कैन रीशेप इट इनटू समथिंग एल्स. इजंट दैट ग्रेट, इजंट दैट इंटरेस्टिंग.
6: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है मंगलवार. आपके दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए आ रहे हैं केतन इनका साथ दीजिएगा. लेकिन जाने से पहले मेरी श्रद्धांजलि टुवर्ड्स आशा भोसले जी जिनका आज बर्थडे है बर्थ एनिवर्सरी है. और यस मी बीइंग अ वेरी बिग फैन ऑफ हर्स मी स्टार्टिंग माय सिंगिंग अलोंग विद सिंगिंग उनके गाने तो वॉज लाइक something but jab unki when she passed away this year to it came like a big jolt to me mujhe kafi arsa lag gaya tha usse nikalne ke liye but thank you so much aap sabne meri baat suni iske liye aur kal subah aapse 10 baje phir meri mulaqat hogi so kijiye swikar again kashika ka namaskar aaj ka din kehlata hai mangalwar meri mulaqat hogi din kehlayega humpwar ya budwar look after yourselves it's me signing off bye

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
6: Fresh deals on favorites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
8: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
9: Mirzapur ki gaddi pe jo baithega, wahi hoga sabse bada bahubali.